0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य शा

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की तिथि 4, तदनुसार 26 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की यह सभा। आज के सभा में आप सभी का स्वागत है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आई सुनते हैं हिंदी में समाचार अपने दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49

0: प्रतिशत रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए चिंतन के इन पलों को आत्मसात करते हैं, सुनते हैं ये विचार।

0: आज का युग प्रतियोगिता का युग है। सबके सब मानो दौड़ लगा रहे हैं और हर आदमी येन केन प्रकारेण दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भाग रही है और सबको मंजिल तक पहुंचने की भीषण हड़बड़ी है। नियम कायदे कर्तव्य की किसी को चिंता नहीं, बस गंतव्य तक पहुंच जाना है, चाहे जैसे भी हो। रास्ते की महत्ता तो खत्म हो गई, मगर यह सही दृष्टि नहीं है। कल्पना करें कि दो आदमी नदी में बहे जा रहे हैं, एक सिर्फ हाथ पैर फेंकने की धुन में है और जल्दी ही जल्दी किनारे तक पहुंच जाना चाहता है, जबकि दूसरा बहा भी जा रहा है और अगल बगल के परिवेश को देखता भी जा रहा है। उसके लिए मंजिल तक किनारे तक पहुंचना ही काफी नहीं है, रास्ते की भौगोलिक प्राकृतिक स्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त करना है। मगर आज के यांत्रिक युग में रास्ते को महत्व देने की न तो किसी को इच्छा है, न अवसर, न उतनी फुर्सत। बस दो चार हाथ मारे और किनारे लगे। यह आदमी सफल आदमी तो कहला सकता है, पर ज्ञानी नहीं। आज विद्या अध्ययन के क्षेत्र में यह अराजकता सबसे ज्यादा है। छात्रों को अध्ययन में कोई रुचि नहीं, वे तो जल्द से जल्द परीक्षा पास कर लेना चाहते हैं, गेस पेपर, प्राइवेट ट्यूशन आदि के शॉर्टकट से। शिक्षकों को भी न तो छात्रों को ज्ञान देने में कोई रुचि है, न फुर्सत। वे तो कोचिंग वगैरह के रूप में दुकान खोले बैठे हैं। हर तरह का इंतजाम है वहां छात्रों को शॉर्टकट से परीक्षा की वैतरणी को पार कराने के लिए। इसलिए महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों को अधिक से अधिक ग्रेजुएट उत्पादित करने वाली फर्म कहा जाए तो कोई गलती नहीं होगी। विद्या एक ऐसा धन है जिसकी तुलना संसार के किसी भी धन से नहीं की जा सकती है, पर इसे पाने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कहा भी गया है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना हिलाए ना डुले जो पंखे का पौन। पर डिग्री पाने की लालसा में भ्रमित छात्र अध्ययन जरा भी नहीं करना चाहते। ज्ञान से उन्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसे पाने का रास्ता शॉर्टकट नहीं है, लंबा है, परिश्रम की मांग करता है। महाभारत में एक बड़ी रोचक और प्रासंगिक कथा है। यवकृत नामक एक ऋषि कुमार बिना अध्ययन किए अनायास वेदों का प्रकांड ज्ञाता बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। आखिर इंद्र को उसके समक्ष आना ही पड़ा। उन्होंने उसे इस कठोर तपस्या का कारण पूछा और जब ऋषिपुत्र ने उन्हें अपनी अदम्य लालसा बताई तो इंद्र ने उसे बहुत समझाया कि विद्या वरदान से नहीं मिलती, उसके लिए तो अध्ययन करना चाहिए। पर वह तो तुरंत फुरंत बिना परिश्रम किए विद्वान होना चाहता था, उसे इंद्र की सलाह भला क्यों अच्छी लगती। वह तपस्या में लीन रहा। एक दिन यवकृत समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मुट्ठी में बालू भर भर कर समुद्र में फेंक रहा है। यवकृत के मन में बड़ा कौतूहल उत्पन्न हुआ। उसने बूढ़े के पास जाकर पूछा कि ऐ बाबा, तुम यह क्या कर रहे हो? बूढ़े ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, असल में मुझे समुद्र के उस पार जाना है। बालू इसीलिए समुद्र में फेंक रहा हूं कि यह भर जाए तो मैं पार कर सकूं। यवकृत को लगा कि यह बुढ़ा पागल हो गया है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारा मस्तिष्क तो खराब नहीं हो गया बाबा? मुट्ठी भर बालू से तुम समुद्र भर दोगे? बूढ़े ने, जो स्वयं इंद्र थे, छूटते ही कहा, हे ऋषिपुत्र, जब तुम बिना अध्ययन किए सिर्फ तपस्या करके चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता बन जाने का दुस्साहस पाल सकते हो, तो मैं मुट्ठी मुट्ठी बालू डालकर समुद्र क्यों नहीं भर सकता? ऋषिपुत्र को मानव ज्ञान का बोध हुआ। उस दिन तपस्या छोड़कर वह अध्ययन चिंतन में लग गया। कहने का तात्पर्य यह कि हर काम उचित तरीके से ही होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य डिग्री प्राप्त करने मात्र से पूरा नहीं हो जाता। बिना विषयों के गहन अध्ययन के डिग्री मिल सकती है, ज्ञान नहीं।
1: श्रोता भी सुन रहे थे आज का चिंतन एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं कहते हैं ना कि जग ढूंढा खुद को ढूंढ न पाया, सब कुछ ढूंढा खुद तक पहुंच न पाया। इंसान हर पल यहाँ कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, कुछ न कुछ खोजता रहता है और उसके भीतर की एक कौतूहल तब तक जारी रहती है जब तक वो खुद को ढूंढ नहीं लेता है, खुद तक पहुंच नहीं पाता है।

इंसान इस संसार में कुछ न कुछ ढूंढता रहता है, कुछ न कुछ खोजता रहता है, और उसकी इस तलाश में उसे संसार में बहुत कुछ मिलता भी है, लेकिन जो उसे प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट नहीं होता है, और उसकी ये संतुष्टि तब जाकर समाप्त होती है जब वो अंतिम सत्य को जान लेता है।

श्रोताओं कहते हैं कि इस संसार में जिसके पास सब कुछ है वो भी ना खुश है, वो भी परेशान है, और जिसके पास कुछ नहीं है, जो खाली हाथ है, वो भी परेशान है। जाहिर सी बात है, ऐसे में ये प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है कि सुखी कौन है। तो इस संसार में सुखी वही है जो अपनी संपन्नता को अपनी ऊपर हावी ना होने दे, और इस संसार में सुखी वो भी है जो अपनी विपन्नता को भी अपने ऊपर हावी होने ना दे।

श्रोताओं कहते हैं ना कि अज्ञानता में दुख है और ज्ञान में सुख है, लेकिन संसार के ज्ञान और अज्ञान से परे तत्व ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य संपूर्णता को प्राप्त करता है।

श्रोताओं, संसार की चीजों से सुविधाएं मिल सकती है, सुख नहीं। इसलिए तो यहाँ संपन्न व्यक्ति भी सुखी नहीं है, सुविधाओं में सुख की तलाश करता है। सच्चा सुख तो स्वरूप के ज्ञान में है। श्रोताओं, भक्ति गीतों के कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, डीजे पेश है श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी।

अवध नरेश दशरथ के घर जब चार पुत्रों का जन्म हुआ तो अयोध्या नगरी का स्वरूप इस प्रकार निखर आया जिसका वर्णन करना कठिन है। कुल गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को आनंद और सुख का भंडार बताते हुए उनका नाम राम घोषित किया। संसार का भरण पोषण करने वाले गुणों से युक्त द्वितीय पुत्र का नाम भरत हुआ। वो जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है उनका नाम शत्रुघ्न रखा और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम के अति प्रिय कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण कहलाए।

श्रोता भी सुन रहे थे मानस कान एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण आज के तहत जानते हैं अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक विज्ञान वार्ता। यह कार्यक्रम होगा सुबह 7:20 पर।

गीत संगीत गैर फिल्मी एल्बम पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर और सुबह 8:45 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

दिन में 11 बजे हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में। अब आइए एक नजर डालते हैं शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी। खेती बारी ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर।

शाम 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे युवा साथियों को संबोधित हमारा कार्यक्रम युवा वाणी। कानूनी सलाह, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 7:45 पर।

शाम को प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत झनकार, यह कार्यक्रम होगा 7:15 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आप सुनेंगे रात्रि 8:00। रजनीगंधा फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 10:00 और 10:30 पर हम आपको सुनाएंगे कार्यक्रम एक फिल्म से। और श्रोताओं आज के सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। कार्यक्रम विवरण श्रोता भी सुन रहे थे अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार अपने दिल्ली के।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं जी, पेश है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग।

0: गढ़ा द।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: धरती मोर सुना रे, धरती

श्रोता भी सुन रहे थे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। आज आप सुन रहे थे रंतु गिरी और सत्येंद्र मिश्र को। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान वार्ता। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं जी, पेश है कार्यक्रम विज्ञान वार्ता। आज आप सुनेंगे गोपाल कुमार सिंह की वार्ता साइबर क्राइम।
1: नमस्कार, मेरा नाम गोपाल कुमार सिंह है और आज मैं साइबर अपराध के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वैसे तो 1980 के दशक से ही यहाँ पे अपराध जारी है, लेकिन आज के जमाने में सबसे ज्यादा अगर आधुनिक अपराध हो रहा है तो वो है साइबर अपराध। और साइबर अपराध से हर वर्ग के लोग, हर किस्म के लोग बड़े ही परेशान चल रहे हैं। साइबर एक ऐसा चीज ही है जिससे हर लोग परेशान है। आखिर ये साइबर क्राइम आखिर है क्या? साइबर क्राइम वो अवैध गतिविधियों को कहते हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। इन अपराधों के माध्यम से अपराधी व्यक्तिगत जानकारी चुराने, वित्तीय धोखाधड़ी करने या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और खास करके जिनको कंप्यूटर में ज्यादा नॉलेज होते हैं वो लोग खास करके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। अब इसमें तरीके देखा जाए तो तरीके इसमें क्या क्या हैं साइबर अपराध को अंजाम देने का, तो वो है हैकिंग है, मालवेयर है, फिशिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, साइबर स्टॉकिंग है, साइबर टेररिज्म है, साइबर डिफामेशन है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, सॉफ्टवेयर पायरेसी है। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी जो चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा चीज है जिसमें लोग हैरैश हो रहे हैं, डिजिटली हैरैश हो रहे हैं। उनको बताया जा रहा है अगर उनके बच्चे यहां से बाहर पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं या फिर उनका फैमिली कहीं बाहर रहता है, बहुत दूर रह रहा है, उनसे अगर दूर रह रहा है तो उसमें साइबर अपराधी जो है उनको डिजिटली बताते हैं कि आपके बच्चे ने या फिर आपके परिवार वालों ने कुछ गलत किया है जिस वजह से वो जेल जाने की उनकी नौबत आ गई है। इन्हें बचाने के लिए आप तुरंत के तुरंत पैसे भेजें। और वो डिजिटली दिखलाते हैं कि उसमें एक पुलिस वाला कॉल करता है, घर के गार्जियन को दिखाया जाता है, घर के लोगों को दिखाया जाता है कि उनके बच्चों को एक कोर्ट में खड़ा किया गया है जहां पे पुलिस वाला भी है, जहां पे एक जज भी बैठा हुआ है, जहां पे एक वकील भी खड़ा है और सब चीज वहां पे प्रॉपरली फॉस्टर जो होते हैं वो लोग ये सब काम करते हैं। इससे बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं लेनी है। आप अपने मन को धैर्य में रखना है और तुरंत ही साइबर क्राइम का एक जो पोर्टल है cybercrime.gov.in उस पर आप जाके तुरंत शिकायत आप डायरेक्टली दर्ज कर सकते हैं। इन अपराधों से बचाव के लिए सतर्क रहना, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करना, अनजान स्रोतों से प्राप्त ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करना और नियमित रूप से अपने सिस्टम और सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना आवश्यक है। अब इसमें देखा जाए तो भारत सरकार ने भी कुछ कुछ इसमें इनिशिएटिव लिए हुए हैं, जैसे कि गृह मंत्रालय ने कुछ इनिशिएटिव लिए हुए हैं और उन्होंने शिकायत दर्ज करने के लिए दोनों ने पोर्टल बनाया हुआ है, एक ऑनलाइन बनाया हुआ है और एक हेल्पलाइन बनाया हुआ है। ऑनलाइन में जो बनाया है जिसको कहते हैं राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि है cybercrime.gov.in, और एक हेल्पलाइन भी जारी किया है उन्होंने जिसका नाम है राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930। अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी या फिर कोई भी साइबर अपराध अगर हो जाता है तो आप इसमें चिंतित ना हो, व्याकुल ना हो, आप 1930 या फिर cybercrime.gov.in पे आप इसको शिकायत कर सकते हैं। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि हाँ इसका उपाय क्या है बचने के लिए, तो सबसे पहला डायरेक्टली उपाय इसका यह है कि हमेशा अपने फोन का, लैपटॉप का या फिर कुछ भी डेटा हो तो उसका मजबूत पासवर्ड का हमेशा उपयोग करें। अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए जटिल और अद्वितीय पासवर्ड बनाएं जिसमें अक्षरों, संख्याओं और विशेष वर्णों का मिश्रण हो। अपने सिस्टम, ब्राउजर और सुरक्षा सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें ताकि नए सुरक्षा पैच लागू हो सके और संभावित खतरों से बचा जा सके। इंटरनेट सुरक्षा सुइट का हमेशा उपयोग करें। सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का हमेशा उपयोग करें। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय वीपीएन, जी हाँ वीपीएन का उपयोग करें ताकि आपका डाटा सुरक्षित रहे और साइबर अपराधियों से भी सुरक्षित रहे। हमेशा ध्यान दें कि एपीके फाइल को कभी भी अपने फोन में, लैपटॉप में या फिर किसी भी डिजिटल चीज में कभी भी डाउनलोड ना करें। ये साइबर अपराधियों की एक चाल होती है। हमेशा अपने फोन में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। सुरक्षित होम नेटवर्क का हमेशा सेटअप करें। हमेशा अपने डेटा का बैकअप रखें। महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप लें ताकि अन्य साइबर हमलों को दौरान डेटा की हानि ना पहुंचाया जा सके। साइबर सुरक्षा जागरूकता हमेशा बढ़ाएं। स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों को साइबर सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज की ऑनलाइन अननोन लिंक पे क्लिक कभी ना करें। इन उपायों को अपनाकर आप साइबर अपराध के खतरों से अपनी और अपने परिजनों को सुरक्षित सुनिश्चित कर सकेंगे। भारत सरकार में साइबर अपराध की वर्तमान स्थिति। गृह मंत्रालय की 2023 से 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 से मार्च 2024 के बीच में भारत साइबर धोखाधड़ी से संबंधित 2.16 करोड़ शिकायत दर्ज की गई है, जिनमें कुल 14,570 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि साइबर अपराधियों की गतिविधियां कितनी व्यापक हो चुकी हैं। साइबर अपराध की रोकथाम और समाधान के लिए सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने और नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसको हम लोग cybercrime.gov.in कहते हैं, यह पोर्टल पीड़ितों या शिकायतकर्ताओं को साइबर अपराध की शिकायतों ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह उपयोगकर्ता अनुकूल मंच हैकिंग, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग जैसे अपराध की रिपोर्टिंग में सहायक है। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए यह हेल्पलाइन उपलब्ध है। साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा स्थापित पोर्टल और हेल्पलाइन को उपयोग करके हम साइबर अपराधों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। साइबर अपराधी ज्यादातर करके अपना शिकार छोटे बच्चों या फिर महिलाओं या फिर बुजुर्ग को बनाते हैं। वह जानते हैं कि बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं और मोबाइल में ऐसा ऐसा एक गेम डालते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर डलवाते हैं, ऐसा उन्हें बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप 2 रुपए लगाओ, 4 रुपए कमाओ, ऐसा ऐसा करके बच्चों को ज्यादातर करके शिकार बनाते हैं। खास करके महिलाओं को भी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पे ठगी करने का मामला इसमें आता है। इसमें ज्यादातर के APK फाइल जो होता है उनमें क्लिक करवा के उनका सारा डेटा हैक कर लिया जाता है। धन्यवाद।
0: श्रोताओं सुन रहे थे गोपाल कुमार सिंह की वार्ता साइबर क्राइम। इसी के साथ ही विज्ञान वार्ता का हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, पेश है गैर फिल्मी एल्बम पर आधारित हमारा कार्यक्रम गीत संगीत।

0: money. His money.
1: God, I need your money.

0: श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत से गजल के साथ ही गीत संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए बाबा
1: समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण

0: विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
1: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
2: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
3: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीन विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, एनसीआर में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलमवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेट्स 1 year डेडलाइन फॉर 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 new क्रिमिनल लॉज। Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today, Keralites across the globe celebrating Tiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
6: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. During the meeting, ministries and states were asked to adopt an end-to-end approach and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits. Mr. Modi also called for fostering a proactive work culture across ministries and state governments with greater ownership at every level of project implementation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
5: Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference in New Delhi, Mr. Shah said the move will enable disposal of criminal cases up to the Supreme Court within 3 years and raise the conviction rate by 25%. More from our correspondent.
7: Mr. Shah said India must further strengthen its internal security to emerge as a leader in every sector. Home Minister said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047, and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, nexalism and the challenges in the northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear their brunt for decades. The Home Minister said government has eliminated the formidable challenges across these 3 internal security hotspots, and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum should analyze trends for the next 15 to 20 years to identify potential emerging issues and devise strategies to preempt them. He said over the past 8 months, he visited all states sharing land borders and shared a document outlining a quadrilateral border security approach with them. With Anupam's report, Komudi Parekh, Akashwani News, Delhi.
5: Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month, a report.
1: The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been finally submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. A provision of 5,110 crore rupees has been made for the scheme in 2026-27 Delhi budget. The objective of the scheme is to provide financial security to women and make them self-reliant. The Delhi government has also urged all eligible women to complete their online registration on time. Soumya Sharan for Akashwani News, Delhi.
5: Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on August 11th and the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Keralites across the globe are celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. Our correspondent has filed this report.
8: Thiruvonam celebrations began with Onapookalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary king Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of caste and religion. Special pujas are being held at temples, including the hill shrine of Shabarimala, Aranmula and Guruvayur. Onasadhya, the traditional Kerala feast, is another major attraction of Thiruvonam. Thousands of cultural programs and traditional games will be held across Kerala this afternoon, including official celebrations. Heavy rushes being experienced at temples across the state despite the rain. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
5: Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the countrymen on the occasion of Onam. Sharing a social media post, the Prime Minister said that the vibrant festival is celebrated all over the world with great enthusiasm. Mr. Modi wished that this festival further empower the spirit of happiness, togetherness and prosperity. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Doval highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Doval was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. In a statement, the External Affairs Ministry said that the two special representatives had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question. Canada has struck back at the United States with retaliatory tariffs on about $20 billion US dollar worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the two countries escalated sharply. A report.
9: The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics, and toilet paper. With some facing duties as high as 50%, the tariffs will be implemented from September 8, even as U.S. tariffs already came into place on Saturday. Canada's finance minister said Ottawa's tariff will match U.S. level. Canada's retaliation came after the Trump administration imposed 50% tariffs over the weekend on Canadian goods following the collapse of trade negotiations. Canadian Prime Minister Mark Carney accused Washington of trying to subordinate Canada. Vishal Kumar, Akashwani News, Delhi.
5: U.S. President Donald Trump has said that the U.S. Navy has removed or detonated all mines in the Strait of Hormuz, the vital waterway which Iran has largely closed since the beginning of the war in West Asia. In a post on his Truth Social platform, Trump said Iran has been notified that any ship or boat placing new mines will be immediately and systematically destroyed. There is no comment from Iran. Eid Milad un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is being celebrated with religious fervor in various parts of the country today. Milad mehfils and Seerat conferences will be held highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Milad processions are also being taken out to mark the occasion. Elaborate security arrangements have been made for the occasion. The Patra Devi Martyrs Memorial in Parneem will be unveiled today by Defence Minister Rajnath Singh. The memorial is a tribute to Goa's freedom struggle and seeks to preserve the memory of the sacrifices made during the liberation movement. More from our correspondent.
10: Chief Minister Dr. Pramod Sawant said the memorial will honor the 31 Satyagrahis who were killed by Portuguese soldiers in 1955 while trying to enter Goa with a demand for inclusion in India. The memorial has been designed to help visitors understand the history of Goa's Satyagraha movement in a simple and engaging way. It will feature sculptures, architectural spaces and landscape areas telling different stories from the freedom struggle. The project also includes pavilions and visitor facilities with spaces for recreation, retail and hospitality. The Patra Devi Memorial is expected to become a place of remembrance, learning and local pride while helping younger generations connect with Goa's history. Mahesh Chopra, Akashwani News, Panji.
5: Akashwani Kolkata today stepped into its 100th year of programming, marking a historic milestone in the journey of broadcasting in Bengal. More from our correspondent.
11: The station began its first official Bengali broadcast on 26th August 1927 and over the decades became an integral part of the cultural and social life of Bengal. From news and current affairs to music, literature, drama, education and public service programs, Akashwani Kolkata has connected generations of listeners and played a crucial role in shaping public discourse. Its contribution during the Bangladesh Liberation War further cemented its place in history. Today, under Prasar Bharati, Akashwani Kolkata continues to serve its audiences through modern broadcasting platforms while safeguarding its rich legacy. As it enters its centenary year, the station celebrates not merely a century of broadcasting, but a century-long bond with its listeners and the rich cultural heritage of Bengal. Sandeepan Dashgupta, Akashwani News, Kolkata.
5: Indian Grandmaster R. Pragyanan cruised into the finals of the Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer in St. Louis, U.S. Having won the second classical game, the Indian enjoyed a huge lead of 6 points coming into the final day, on which games of shorter duration were played. He defeated Keimer in back-to-back rapid encounters to nearly seal his spot in the finals, taking an unassailable 17-3 lead before another victory in the first game of Blitz took his points tally to 19. Pragyanan will take on pre-event favourite and defending champion Fabiano Caruana of the USA States in the event finale. The top three finishers will automatically qualify for next year's Grand Chess Tour. RSS Chief Mohan Bhagwat arrived in the US last night as part of the Sangh's Centenary Year Global Outreach Program. During his stay in the city, Mr. Bhagwat would participate in the Universal Oneness Program and address a gathering of around 5,000 people at the iconic Madison Square Garden on Saturday. The event carries a timeless and universal message, the world is one family. It calls upon us to look beyond artificial divisions and differences, recognize the bonds that unite humanity and embrace a spirit of mutual respect, harmony and oneness. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
12: Thank you, Shagun. Most of the dailies lead with NSA Ajit Dobhal's visit to China. The Tribune headlines, India-China eye political fix for boundary dispute, stress need for peace and tranquility along LAC. Newspapers also report Prime Minister reviewed 30,000 crore rupees infra projects. The Asian Age headlines, Modi flags digital arrest, pushes for strict surveillance. The Indian Express citing RBI's monthly state of economy informs, Indian economy resilient amid global uncertainties. The paper adds, India's robust macroeconomic fundamentals continue to provide cushion to the domestic economy. The Statesman writes, Defence Minister Rajnath Singh clears transfer of DRDO missile tech to Indian defence industry. Hindustan Times headlines, 98% flu cases this season due to H1N1 swine flu, says ICMR. And finally, Times of India informs Dolly Parton, Queen of Country Music, dies at 80. And with that, it's back to you, Shagun.
13: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets one-year deadline for 100% implementation of three new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiru Onam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
15: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
16: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गाँव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
15: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
17: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड कैबिनेट ने 100 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की दी मंजूरी। चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का फैसला। इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर सरकार सतर्क, निगरानी नेटवर्क से रखी जा रही नजर। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा ईद मिलाद उन नबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। राज्य के कई जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मंत्री परिषद ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 7,21,43,25,000 रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 67 से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव ने बताया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की भी स्वीकृति दी गई।
1: आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति एवं इस हेतु 7,21,43,25,000 रूपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।
0: सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर निगरानी रख रही है। आईएसएमआर के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस सामान्य मौसमी पैटर्न के अनुरूप है और किसी नए खतरे के संकेत नहीं मिले हैं। इन्फ्लुएंजा के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान और कमजोरी शामिल है। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के हजारीबाग पहुंचने पर छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निर्दोष छात्रों पर एफआईआर करना बंद किया जाए। महतो ने कहा कि छात्रों को डराने धमकाने की बजाय भर्ती व्यवस्था में सुधार और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा।
2: सरकार छात्रों पर एफआईआर करना बंद करे। अगर एफआईआर करना है तो देवेंद्रनाथ महतो के ऊपर करो। छात्रों को डराने का प्रयास न करे कि संवैधानिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सरकार को कह देते हैं कि किसी तरीके से इस बार आश्वासन से युवा समझने वाले नहीं है, इस बार ठोस निर्णय चाहिए।
0: रांची में भाजपा झारखंड प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात और छात्रों के खिलाफ सरकार के रवैये पर चिंता जताई गई। प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इसमें जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी।
3: जिस प्रकार से छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर भी इस कोर कमेटी ने चिंता व्यक्त किया है। साथ ही हमारे कई कार्यक्रम आगामी दिनों में तय हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देशव्यापी हर वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं चली है उसको भी लेकर के अब जन जन तक जाने वाले।
0: ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ के आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इसे शुरू किया था। पोर्टल पर अब तक 31,89,00,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यह 15 सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराता है। मतदाता सूची। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण के तहत कल 59 मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त मतदाताओं की सुनवाई हुई। इस दौरान मतदाताओं के दावों और प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सुनवाई में 12 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक के जरिए पात्रता प्रमाणित करने का अवसर दिया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज राज्य सहित देश के विभिन्न विभागों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसे लेकर राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। सरायकेला खरसावां जिले में यूपीआई रोजमर्रा के लेनदेन का अहम माध्यम बन गया है। बाजारों में सब्जी, चाय और अन्य सामान की खरीदारी से लेकर बड़े भुगतान तक लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे दुकानदार भी QR कोड से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। कारोबारियों के अनुसार UPI से लेनदेन आसान, तेज और सुरक्षित हुआ है तथा नकदी और खुले पैसों की समस्या कम हुई है।
4: UPI चालू होने से बहुत ज्यादा ही लाभ है, क्योंकि कभी कभी कैश का प्रॉब्लम होता था, वो सब सभी समस्या खत्म हो गई है। तुरंत हमारे अकाउंट में पैसा जाता है, हमें भी जिनको पेमेंट करना रहता है आसानी से उसको कर पाते हैं। इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सुविधा अब गाँव गाँव तक पहुँच गया है, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट जा रहा, बहुत ही सेफ है।
0: साहिबगंज के तलझारी वन क्षेत्र अंतर्गत केदम्बरिया गांव में वृक्ष रक्षा बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को वृक्षों के महत्व के प्रति जागरूक करना और वन संरक्षण का सामूहिक संकल्प दिलाना था। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन प्रसाद और वन क्षेत्र पदाधिकारी पंचम दुबे ने ग्रामीणों को वृक्षों के महत्व की जानकारी दी। अधिकारियों ने पर्यावरण संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की।
5: पेड़ ही एक परमार्थ चीज है, जो कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहता, वो जब भी रहता है तो अन्य जीवों के स्वार्थ के लिए रहता है। धरती धन करे पुकार, पुत्र एक और वृक्ष हजार, हजारों वृक्ष लगाए खाली जगह पर, यही संदेश ग्रामीणों को देते हैं।
0: चतरा में नाबालिग से कथित बाल मजदूरी और मारपीट के मामले में महिला थाना प्रभारी फिरदौस नाज और SI पति टीपू अंसारी को निलंबित कर दिया गया है। SP अनिमेश नैथानी ने CWC की शिकायत और STPO की रिपोर्ट पर कार्रवाई की। दोनों के खिलाफ FIR और विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया है। आज सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, चतरा और गिरिडीह में भारी बारिश की संभावना है। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। प्रज्ञानंदा ने रैपिड के दोनों मुकाबले और ब्लिट्स का पहला मुकाबला जीता। फाइनल में उनका सामना अमेरिका के मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने कैबिनेट की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। प्रभात खबर और दैनिक भास्कर ने लिखा है, गुरुजी क्रेडिट योजना में बदलाव, जमा फीस का भी मिलेगा रिफंड। दैनिक जागरण ने लिखा है, खुलेंगे 100 और उत्कृष्ट विद्यालय, बीबी रामजी योजना को भी मिली स्वीकृति। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खनन एक्ट पर शीर्ष कोर्ट जाएगी सरकार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड कैबिनेट ने 100 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय बनाने की दी मंजूरी। चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 67 से घटकर 65 वर्ष करने का फैसला। इन्फ्लुएंजा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर सरकार सतर्क, निगरानी नेटवर्क से रखी जा रही नजर। हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा ईद मिलाद उन नबी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। राज्य के कई जिलों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के अनुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने ग्रैंड चेस टूर के अंतिम चरण के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आपके साथ है आपका दोस्त।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए पेश है प्रोग्राम मॉर्निंग मेलोडी।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दादा कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैन है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
4: आज कहता है स्मार्ट बनो कूल।

जो पाली बहना इसको कुछ ना कहना इससे दूर ही रहना छेड़ो यूं ना छेड़ो छोड़ो पीछा छोड़ो बहना को न सताओ।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। 26 अगस्त एक ऐसी महान महिला का जन्मदिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानियत की सेवा के नाम कर दिया। मदर टेरेसा, जिनका असली नाम था अग्नेस गोंझा बोयाजीजू, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। भारत आकर उन्होंने गरीबों, बीमारों, अनाथों और बेसहारा लोगों की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। 1950 में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवता के प्रति समर्पण के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए एक ऐसी महिला के रूप में जिन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है किसी जरूरतमंद के काम आना, सुनते हैं ये गीत।

0: पुकार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे एआर रहमान का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

0: देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: चित्रलोक में वक्त है एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। अलका याग्निक और साथियों के स्वरों में इश्क विश्क फिल्म का गीत, समीर का लिखा, अनु मलिक का संगीत।

श्रोताओं, आज है जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर का जन्मदिन। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां देते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि आज के फनकार आज का कार्यक्रम ये

केंद्रित रहने वाला है फिल्मकार मधुर भंडारकर पर 9:30 पर और रात्रि पुनः आप सुन पाएंगे 9:30 पर। आलेख एवं स्वर अमरकांत दुबे का है, प्रस्तुति रमेश गोखले की, तो सुनना नहीं भूलिएगा। और गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हीरोइन फिल्म से बैनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाजें, नीलेश मिश्रा का लिखा गीत, सलीम सुलेमान का संगीत।

श्रोताओं, 26 अगस्त महिला समानता दिवस भी मनाया जाता है 26 अगस्त के दिन। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ महिलाओं की उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि बराबरी के उस अधिकार को समझने का दिन है जिसकी लड़ाई महिलाओं ने वर्षों तक लड़ी। 26 अगस्त 1920 को अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को मतदान का संवैधानिक अधिकार मिला। लेकिन महिला समानता का मतलब सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है शिक्षा, रोजगार, समान अवसर, समान सम्मान, सुरक्षा और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी। और भविष्य की बात करें तो असली समानता तब होगी जब किसी महिला को आगे बढ़ने के लिए अपने जेंडर की वजह से, लिंग की वजह से कोई अतिरिक्त बाधा ना झेलनी पड़े, क्योंकि बराबरी किसी एक दिन का उत्सव नहीं, हर दिन की सोच और व्यवहार का हिस्सा होनी चाहिए।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुश्छल की आवाज में। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा है और हिमेश रेशमिया का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पार्कर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहाँ भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसे लाइब्रेरी चलाता था। काफी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया, वीडियो कैसे घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसे देता था, कई फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं। तो वहां से तो पहले तो फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक, तो 5 साल का सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा। तो काफ़ी कुछ सीखने मिला, वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला और वहाँ से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है। क्योंकि जब पहली पिक्चर जो मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि ये जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह के आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद निहलानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्म में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए। तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए, अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रि शक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुनाजी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी के स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुनाजी तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चलेगी पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कोई स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक 1.5 साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहां पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूं, बोल के किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता ना लेडीज बियर बार है, तो वहां ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार वालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट की राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला, और उनको लगा कि पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधुर में बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सदाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया, और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना रहा था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी, और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से, गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर बढ़ेगा, और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए, तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरे कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते थे कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने दिखाया कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वही डिसीजन लिया। और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
0: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी अब पलटाइए पेज 3।
1: पेज 3 एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज 3 टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा बरस से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज 3 का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज 3 पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है।

0: मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कोई सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज 3 में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
1: जी।
0: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन तुम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज 3 समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
1: जी,
0: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज 3 होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज 3 उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, 2008 में फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: हेलो हजारीबाग प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार। नमस्कार।

श्रोताओं, आज के इस खूबसूरत सुबह खूबसूरत दिन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज के ताजे और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज के इस अंक में, आज के हेलो हजारीबाग के इस कार्यक्रम में करेंगे ढेर सारी बातें। करेंगे महिला समानता पर चर्चा, ममतामयी मदर टेरेसा के जीवन से जुड़े हुए प्रसंगों पर भी बातचीत करेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि अखबार के पन्नों में आज क्या छपा है, क्या खास है। ढेर सारी बातें होंगी, खूबसूरत गीत भी होंगे। और खूबसूरत गीत की अगर बात चली है तो एक प्रेरणादायी गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, हमें हर वो जगह पसंद आती है जहां समानता हो, आपसी स्नेह हो, एक दूसरे के प्रति सद्भाव हो। अगर भेदभाव परिवार के बीच भी हो तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। मनुष्य स्वभाव से ही स्नेह, प्रेम और समानता का पक्षधर होता है। वो ऐसी जगह टिकता ही नहीं जहां भेदभाव हो, चाहे वो भेदभाव किसी भी तरह का हो, लैंगिक भेदभाव हो या कोई दूसरा भेदभाव हो, वो अत्यंत ही पीड़ादायक है। इस दृष्टि से दुनिया भर में देखे तो महिला समानता पर जोर दिया जा रहा है। आज ऐसे भी महिला समानता दिवस है, ऐसे में इस पर चर्चा होनी ही चाहिए। महिलाओं के साथ भेदभाव घर के भीतर, परिवार, रिश्तेदार, कार्यस्थल में कई तरह के होते हैं। कई तरह की कहानियां रोज हम सुनते हैं। हालांकि इसमें तेजी से सुधार भी हुआ है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी है, लेकिन महिलाओं में लैंगिक भेदभाव दूर करके समानता लाने के प्रयास भी लगातार हो रहे हैं और हमें इस समानता के प्रयास में हमें अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। बहरहाल, इस बातचीत को फिर देते हैं थोड़ी देर विराम। जैसा कि हम आपसे वादा कर चुके हैं कि अखबार को पन्नों को पलटेंगे, इतिहास के पन्ने को में जानेंगे कि आज क्या खास है, तो शुरुआत करते हैं। हम आपको बता दें, दैनिक भास्कर का हजारीबाग पन्ना है और 3 दिवसीय खेलकूद से जुड़ी हुई एक खबर पर सीधे ध्यान आकर टिक रही है। उससे संबंधित एक खबर अखबार ने प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि 3 दिवसीय खेल महोत्सव को लेकर निकाला गया मशाल जुलूस। प्रतियोगिता में हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद से 1200 अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अखबार लिखता है कि 3 दिवसीय खेल महोत्सव को लेकर मंगलवार शाम शहर में विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। हजारीबाग वीर कुंवर सिंह स्टेडियम से DSO कैलाश राम ने ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की और उन्होंने खिलाड़ियों, विभिन्न खेल संघों से जुड़े पदाधिकारियों को रवाना किया। 2000 से अधिक संख्या में भागीदारी के कारण यह आयोजन अभूतपूर्व।

यहाँ खास बात यह रही कि विभिन्न खेलों के 12 नेशनल खिलाड़ियों ने भी पूरे रास्ते मशाल थामकर आगे बढ़े। शुरुआत स्टेडियम से ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हर्ष अजमेरा और मेयर अरविंद कुमार राणा ने कोर कमेटी के 11 सदस्यों के साथ की। यह रैली सरकारी बस स्टैंड से होते हुए शहर के विभिन्न स्थलों से घूमते हुए ये मुख्य स्थल पर ये बैंड वापस आया। और ये इसके अलावा अखबार ने तस्वीर भी प्रकाशित किया और दूसरी तमाम बातें भी जो इस खबर से जुड़ी हुई है उसे भी प्रकाशित किया है और ध्यान पूरी तरह से खींचती है। और इसके बाद हम आपको बताते कि दूसरी खबर है प्रथम पुरस्कार श्री राम सेना युवा के कांवरिया संघ पेपराडी को मिला। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को रजरप्पा से बुढ़वा महादेव मंदिर तक 105 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बुढ़वा महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। कांवरिया संघ द्वारा झांकी प्रदर्शन, साउंड लाइट प्रदर्शन और अनुशासित तरीके से प्रदर्शन करने वाले कांवरिया संघों को बुढ़वा महादेव शांति सह विकास समिति कर्णपुरा क्षेत्र के बैनर तले गुरु चट्टी कुशवाहा समाज द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। और इसके बाद कुछ खबरें हैं, और रेलवे को भी अब जमा करना होगा होल्डिंग टैक्स, नगर निगम जल्द करेगा जमीन का असेसमेंट। ये भी अखबार, इस खबर को भी अखबार ने प्रमुखता से तस्वीर के साथ प्रकाशित किया है। और एक दूसरी खबर है, नए साइकिलों में जंग और खामियों की होनी चाहिए जांच, विधायक ये चौपारण डेडलाइन की खबर है। तो ये थी कुछ खबरें, और भी खबरें लेंगे, दूसरे अखबारों की भी खबरें लेंगे, देश दुनिया की खबरें लेंगे, राज्य में जो खबर है, राज्य स्तरीय जो खबर है उसे भी हम आपको जरूर आपके साथ साझा करेंगे।

श्रोताओं, आज 26 अगस्त है, महिला समानता दिवस। और आपको पता है महिला समानता दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी? और कहें कि 1972 में अमेरिका से हुई थी, और यह दिन 1920 ईस्वी में अमेरिका की जो संविधान के 19वें संशोधन की याद दिलाता है, जिसमें महिलाओं को वोट देने का पूरा अधिकार दिया गया था। मतदान का अधिकार महिलाओं को मिला था अमेरिका में 1920 ईस्वी में अमेरिकन संविधान के 19वें संशोधन के द्वारा। अब इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान और कानून में भी महिलाओं को कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे समान वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, संपत्ति का अधिकार। और इसके अलावा कहें कि भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर और समान बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएँ चल रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर में हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी और चिकित्सा सहायता देने के लिए इस सेंटर का निर्माण किया गया। उज्ज्वला योजना, जैसा कि हम जानते हैं महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। और लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और विकसित दुनिया बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं की आबादी पुरुषों के समान आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक किसी भी देश का वास्तविक विकास संभव नहीं है। तो आज महिला दिवस है, और इस दिवस पर हम इसकी चर्चा थोड़ी कर रहे थे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज मदर टेरेसा को भी से जुड़ी हुई बातें भी हमने आपसे कही थी कि आप इसके साथ साझा करेंगे। तो ममता की मूर्ति कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, बीमारों, असहायों और अनाथों के निस्वार्थ सेवा में गुजारा है। उसे पूरी तरह से समर्पित कर दिया गया। उन्होंने बिना किसी लाभ या स्वार्थ के हर धर्म और जाति के लोगों की मदद की। जो लोग बीमारियों जैसे कुष्ठ और लाचारी के कारण समाज से बहिष्कृत थे, मदर टेरेसा ने उन्हें गले लगाया और उनके तन मन से सेवा की। निर्मल हृदय की स्थापना मदर टेरेसा ने की है। उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज और निर्मल हृदय जैसे संस्थानों की शुरुआत की, जहां बेसहारा लोगों को आश्रय और प्यार मिलता रहा है। प्रेम और करुणा की बात करें तो वह लोगों को सिर्फ दवा ही नहीं देती थी, बल्कि अपना प्यार और सहानुभूति भी देती थी, जिससे लोगों में एक माँ जैसा स्नेह उन्हें महसूस होता था। मानवता के लिए किए गए इन्हीं महान करुणामय कार्यों के कारण उन्हें ममता की मूर्ति, दया और करुणा की प्रतिमा भी कहा जाता है। तो ये थी मदर टेरेसा के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें।

श्रोताओं, आगे कार्यक्रम इतिहास से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर भी चर्चा करेंगे और अखबार के कुछ और खबरें हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, हेलो, हजारीबाग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जैसा कि शुरुआत से ही चर्चा कर रहे हैं महिला समानता के बारे में, महिला समानता आज दिवस भी है, और साथ ही हम चर्चा कर रहे थे अखबार के पन्नों की भी, कौन कौन सी जो खबरें हैं जो प्रमुखता से अखबारों ने प्रकाशित की। कुछ एक खबरें हम आपको, खेल से जुड़ी हुई एक खबर हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। इसके अलावा ये देखिए दैनिक जागरण का ये प्रथम पृष्ठ है, और कई खबर है जो जिसे अखबार ने बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और उसके बाद हम आपको बता दें कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, प्रथम पृष्ठ पर अखबार ने इसे प्रकाशित किया है, उसका शीर्षक हम आपके साथ साझा कर देते हैं। रील बनाने में ट्रेन की चपेट में आई युवती के दोनों हाथ कटे। अब इसके अलावा जो दूसरी खबर है, प्रथम पृष्ठ की जो लीड खबर है, बांके बिहारी के खजानों में जाए मंदिर में दान की पाई पाई सुप्रीम कोर्ट, और खुलेंगे 100 और उत्कृष्ट विद्यालय, बीबीजी राम योजना को भी मिली स्वीकृति। ये प्रथम पृष्ठ की खबर है। और जो राज्य स्तरीय खबरों में जो प्रमुख खबर है उसमें से एक खबर है, अखबार आगे लिखता है वो जो जो प्रमुख बातें हैं उसकी भी चर्चा हम आपके साथ आज इस बातचीत में हम आपके साथ कर देना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो खबर है आज के तारीख में, अखबार लिखता है कि झारखंड में 100 और उत्कृष्ट विद्यालय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे, जहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को निजी स्कूलों की तरह सुविधा प्रदान की जाएगी, सभी स्कूल सीबीएसई से संबंध होंगे, जहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की जाएगी, इस पर 721.43 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पूर्व में ऐसी 80 उत्कृष्ट विद्यालय विकसित किए गए हैं। यह मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति मिल गई है। झारखंड के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति अब 65 वर्ष की उम्र में ही हो जाएगी। तो इस तरह की जो महत्वपूर्ण खबरें थी वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, जैसे पटना में मुख्यमंत्री आवास जा रहे छात्रों से पुलिस की झड़प, पथराव में डीएसपी घायल, ये भी एक खबर है। सीमावर्ती इलाकों में शांति के साथ द्विपक्षीय संबंध बेहतर बनाने पर चर्चा, ये खबर भी अखबार ने लगाया है। भारत चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता संपन्न। तो ये कुछ प्रथम पृष्ठ की खबरें थी, और ये दैनिक जागरण ने इसे प्रकाशित किया है।

श्रोताओं, 26 अगस्त है और आज की तारीख के साथ कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 1303 ईस्वी की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने की कड़ी टक्कर के बाद चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा किया था। 1914 ईस्वी की बात कर ले तो बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता में ब्रिटिश बेड़े पर हमला कर हथियार और गोलियां लूटी। 1920 ईस्वी की एक खबर है जो आज ही की तारीख यानी 26 अगस्त से जुड़ी हुई है। अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन को प्रमाणित किया गया जिससे महिलाओं को मताधिकार मिला। थोड़ी देर पहले भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे। प्रमुख हस्ती का आज जन्मदिन है, उनसे जुड़ी हुई बातें भी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। 1910 ईस्वी में 26 अगस्त को गरीबों और असहायों की सेवा करने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का जन्म हुआ था यानी 26 अगस्त 1910 ईस्वी। प्रमुख भारतीय राजनीतिक और पर्यावरण कार्यकर्ता मेनका गांधी का जन्म भी 26 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ था। और हम चर्चा कर रहे थे कि 26 अगस्त 1920 ईस्वी को आधिकारिक रूप से अमेरिकी संविधान का 19वां संशोधन प्रमाणित हुआ था और इस संशोधन के द्वारा क्या मिला उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस संशोधन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं को पुरुषों के समान वोट देने का कानूनी अधिकार मिला, मैंने मतदान का अधिकार मिला। और अनुमोदन की तारीख की बात करें तो इसे 18 अगस्त 1920 ईस्वी को ही आवश्यक 3/4 बहुमत से मंजूरी मिल गई थी। और लागू होने की तारीख करें तो 2 तारीख जो अमेरिकी संविधान का 19वां संशोधन है उससे जुड़ी हुई 2 तारीख है महत्वपूर्ण, एक 18 अगस्त 1920 ईस्वी और एक 26 अगस्त 1920 ईस्वी। 18 अगस्त 1920 ईस्वी को इसमें सहमति बनी और अनुमोदन हुआ। इसके अलावा 26 अगस्त 1920 ईस्वी को तत्कालीन विदेश मंत्री बेनब्रिज कोलवी ने इसके प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसके बाद यह अमेरिकी संविधान का आधिकारिक हिस्सा बन गया। अब इसी तारीख से इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर साल 26 अगस्त को अमेरिका में महिला समानता दिवस यानी वुमेन इक्वलिटी डे मनाया जाता है। तो महिलाओं से जुड़ी हुई, महिला समानता से जुड़ी हुई ये बातें आपको जरूर जानकारी से परिपूर्ण लगी होंगी। कुछ और बातें करेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। अखबार में अभी कुछ और खबरें हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन इस जानकारी के बाद एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवाते हैं।

और ये श्रोताओं, प्रभात खबर का प्रथम पृष्ठ है और अखबार ने जो खबर प्रथम पृष्ठ की लीड खबर लगाई है उसके बारे में हम आपकी आपसे चर्चा कर दें। कैबिनेट के फैसले, प्रभात खबर मंच से सरकार ने किया था वादा, गुरुजी क्रेडिट योजना में राहत जमा फीस का एकमुश्त रिफंड। क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। विद्यार्थी द्वारा पूर्व में जमा की गई फीस के एकमुश्त रिफंड किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के प्रावधान में मार्जिन मनी भी समाप्त कर दिया है। प्रभात खबर के मंच से किए गए वादे को सरकार ने पूरा किया। 28 जून को राजधानी में आयोजित प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह में लव की छात्रा श्रुति प्रिया झा ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से आ रही परेशानी की और मंच पर मौजूदा वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का ध्यान आकृष्ट कराया था। श्रुति ने बताया कि अगर समय पर पैसा नहीं मिला और पहले वर्ष की फीस जमा कर दी तो वह रिफंड नहीं होता है। छात्रा के इस पीड़ा को सुनते हैं वित्त मंत्री श्री किशोर ने मंच से ही घोषणा की थी कि यह उनके विभाग से जुड़ा मामला है, सरकार इस समस्या को दूर करेगी। मंगलवार को कैबिनेट ने वित्त मंत्री श्री किशोर की घोषणा पर मुहर लगाते हुए राज्य के छात्रों की परेशानी को दूर कर दी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार अब केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों को भी इस योजना के तहत जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को इस सेलेक्ट कमेटी की कैबिनेट कमेटी की बैठक में 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड में प्रावधान में मार्जिन मनी भी की गई खत्म। धनबाद मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए आवश्यक संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा और 4,95,00,000,000 से ज्यादा की राशि मंजूर। जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में 3,93,91,00,000 की प्रशासनिक मंजूरी मिली। अनुसंधान नवाचार नीति के तहत मिलेगी राशि। बालिकाओं को मिलेंगे सैनिटरी नैपकिन तो सभी विद्यार्थियों को डायरी। और इससे जुड़ी हुई जो खबरें अखबार ने प्रकाशित की है और जो प्रथम पृष्ठ पर जो 2-3 खबरें और हैं वो, जैसे बांकी बिहारी मंदिर में दान राशि में गबन पर सुनवाई, चढ़ावे में हेरा फेरी नहीं होने देंगे, एक एक पाई कोष में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह खबर अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया है। और इसके अलावा JPSC और JSSC कर्मियों के लिए बनी कमेटी, और अखबार लिखता है कि राज्य सरकार ने JPSC व JSSC में पदाधिकारी व कर्मियों की नियुक्ति व सेवा शर्त तय करने के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे जबकि कमेटी में कार्मिक व वित्त विभाग के सचिव सदस्य के रूप में रहेंगे। कमेटी JPSC व JSSC की संवैधानिक व वैधानिक स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए वहां पदस्थापित पदाधिकारी व कर्मियों की सेवा शर्तों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया की समग्र समीक्षा कर सरकार को आवश्यक अनुशंसाएं देगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राज्य भाषा विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये जो प्रथम पृष्ठ पर जो खबरें थी उसके बारे में थोड़ी चर्चा शहर से जुड़ी हुई, और जो प्रभात खबर का जो अपना शहर पन्ना है उसकी खबरें भी हम थोड़ा लेते हैं। 30 अगस्त को सजेगा बाबा श्याम का भव्य दरबार, ये खबर अखबार ने प्रकाशित किया है। श्री श्याम अरदास कीर्तन परिवार के तत्वाधान में 30 अगस्त को मालवीय मार्ग स्थित अग्रसेन भवन में पंचम श्री श्याम मनोहार महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजक मंडल ने बताया कि इस महोत्सव को भव्य और यादगार बनाने की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अग्रसेन भवन में दोपहर 2:15 से बाबा श्याम का भव्य दरबार सजेगा, शुरुआत पूजा अर्चना से होगी। और इससे जुड़ी हुई दूसरी खबर अखबार ने प्रकाशित की है, और बद इंतजामी से जुड़ी हुई एक खबर अखबार ने बहुत ही तस्वीरों के साथ, बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ खबर प्रकाशित की है। बद इंतजामी, कहीं जल जमाव, कहीं कचरे का अंबार, शहर के 3 बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं का अभाव, बस स्टैंडों की बदहाली धूमिल कर रही है शहर की छवि, और तस्वीरों के साथ इस खबर को अखबार ने प्रकाशित किया है। राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में संत रॉबर्ट स्कूल प्रथम, शांतिनाथ महामंडल विधान में 13वें दिन हुआ विशेष पूजन, तस्वीर के साथ अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है। तो इसके अलावा ब्लड मैन निर्मल जैन सम्मानित किए गए, ठाकुरबाड़ी परिसर में 17 से 24 अगस्त तक आयोजित जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ब्लड मैन निर्मल जैन को सम्मानित किया गया। महादेव स्मारक खादी ग्राम उद्योग मंडल द्वारा आयोजित उत्सव में समिति के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर सामंत ने भी उन्हें स्मृति चिन्ह
प्रदान किया। इस दौरान महिला व जनजातीय उद्यमियों के स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण के केंद्र रहे। तो ये थी अखबार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। और इसके अलावा हम इतिहास के पन्नों पर भी हमने आज निगाह डाली कि आज की तारीख से कौन सी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें थी। तो अब थोड़ा समय बच रहा है, तो आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत से गीत का हम सब मिलकर आनंद उठाते हैं।

श्रोताओं, बरसात का मौसम और ऐसे मौसम में साफ सफाई अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, तो किस तरह से हम साफ सफाई का ध्यान रखें इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसे घर और आसपास को पहले नियमित सफाई व सूखा रखने का प्रयास करना चाहिए, जैसे फर्श को सूखा रखें, रोजाना फिनाइल या कीटाणुनाशक डालकर इसे पोछा लगाएं ताकि इसमें बैक्टीरिया और दूसरे कीड़े मकोड़े दूर रहें। जूते चप्पल बाहर रखें, गीले और गंदे जूते चप्पल घर के अंदर न लाएं, इन्हें मुख्य दरवाजे के बाहर ही रखें, और जिससे आपका अंदर बाहर से आने वाले जो कीटाणु हैं या फिर दूसरे कीड़े हैं वो आपके घर के भीतर नहीं पहुंचेंगे। छत के आउटलेट और ड्रेनेज पाइप को साफ रखें ताकि पानी जमा ना हो और सीपेज की समस्या ना आए। नमी के कारण कचरे में बदबू और मक्खी मच्छर जल्दी पनपते हैं और ये समस्या बड़ी होती है, इसलिए डस्टबिन को रोजाना खाली करें। और आजकल तो अपने शहर में भी घूम घूम कर लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, और तो अब नियमित रूप से आप जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे बाहर निकले और कचरा को तुरंत कचरे वाली जो गाड़ी होती है, जो कचरा ढोने वाली जो गाड़ी होती है, उसमें आप उसको डाल दें। इसके अलावा जैसे खान पान की स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी होती है, तो पानी को हमेशा उबाल कर अच्छी तरह फिल्टर करके ही पिए ताकि जल जनित बीमारियां होने की संभावना जो इस वक्त होती है उससे आप बचा कर सकें। और बाहर से आने के बाद और कुछ भी खाने से पहले साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोएं। घर में रहें फिर भी आप खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह से साफ करें और उसके बाद ही खाना खाएँ। खुले में बिकने वाली चीज़ें, आजकल देखिए बरसात में ज़्यादा समस्या आती है, खुले में बिकने वाली चीज़ें व कटे हुए फल खाने से बचें क्योंकि मौसम में संक्रमण का खतरा ज़्यादा होता है। घर के आसपास पानी बिल्कुल भी जमा ना होने दें। मच्छर भगाने वाली क्रीम या कॉयल का इस्तेमाल करें और पानी तो बिल्कुल उसको वहाँ से उसकी साफ सफाई करें। अगर कूड़ा वगैरह अगर कुछ जमा है घर का, जो भी पुराना जो फर्नीचर है ये सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ भी कचरा जमने की संभावना ज़्यादा होती है, और तो उसे भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें। तो कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो बरसात में हमें उसका फ़ायदा जरूर मिल सकता है। तो श्रोताओं, देखिए कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो गया, तो गाते गुनगुनाते इस प्रोग्राम से विदा लेते हैं। सुनते हैं खूबसूरत सी गज़ल।

तो श्रोताओं, साफ सफाई का बिल्कुल रखेंगे ख्याल। तो इसी संकल्प के साथ आज के इस प्रोग्राम से हेलो जारीबाग से सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोता भी सुन रहे थे हेलो हजारीबाग एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए समाद फरमाएं एक फिल्मी कवाली गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, मन्नाडे, एसडी बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन, फिल्म का नाम है बरसात की रात।

शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समाअत कीजिए गुलुकार तलत अजीज की आवाज में। मौसिकी तरतीब दी है फिदा हुसैन ने। एल्बम का नाम है ये मिलन ख्वाब सा।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध

आइए अब सुना जाए अगला गीत सुखविंदर सिंह, आनंद राज आनंद और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अजय अतुल का, फिल्म का नाम है अग्निपथ।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अगला एल्बम गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, गीत संगीत है ललित का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी एल्बम गीत सुनिए, गायक और संगीतकार अदनान समी की आवाज में। गीतकार हैं समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली गजल समाप्त कीजिए, गायक और संगीतकार चंदन दास की आवाज में। कलाम है इब्राहिम अश्क का।
3: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है,

हसरत बेवफा तू है कभी मैं न कहूँ।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। कलाम है इब्ने इंशा का।

0: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग
0: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में

0: गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देशभर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजनावकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

कार्यक्रम है यादों की महफिल और इस महफिल का झिलमिलाता हुआ अगला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: अरे आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम की अगली रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है गीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आज हम और आप मिलकर सुन रहे हैं कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी नगमात। तो अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत है आनंद बख्शी का। गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है उजाला।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। गीत के बोलों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

लीजिए सुनिए संगीतकार रोशन के संगीत से रोशन ये कवाली गीत, आवाजें हैं मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की। शायर हैं साहिर लुधियानवी, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक

ऐसे कम ही गाने जिनमें ये तीनों शब्द आते हों, लेकिन अगर आपको याद आए तो बताइएगा जरूर। बहरहाल आगे जरा पढ़ दूं तो दिल पूछ बैठता है कि ऐ संदली हवा तू कहां, ये बता इस नशीली रात में। तुम्हारे इंतजार में चंपा कली देखो जो कि जाए है, इस मौसम में कपट का कोई काम नहीं है। सजन रे झूठ मत बोलो, जब ऐसा लगे कि सजनवा बैरी हो गए हमार, तब भी वही पुरानी हंसी याद आ जाती है जो कभी लाल लाल होठों से छलकती थी, मतलब लाल लाल होठुआ से छलकती थी। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया आपको? कोई लोकगीत है, याद कीजिए, फिल्मी लोकगीत, तलत महमूद की आवाज है। हमने हिंट भी दे दिया, पर आखिर में जब मन थकता है तो भक्ति ही सहारा बनती है। हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो, ये आस हमेशा रहेगी कि गंगा मैया में जब तक पावन धार बहेगी प्रीत अमर रहेगी, मतलब गंगा मैया में जब तक, आगे बताइएगा। घाट पर ढलती शाम में जैसे कोई पुकारता है, नदी नारे न जाओ शाम, पर लहरों के सन्नाटे

ये कि किस नदी के किनारे आपका घर है, मतलब आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, आपके गांव में कौन सी नदी बहती है, ये भी बताते चलिए। और हाँ, ये जो बातें हैं गंगा मैया की बात भी इसमें है, गंगा मैया वाले कौन से गाने हैं वो जरा साझा कीजिए, और गंगा मैया से जुड़ी कौन सी याद है आपके भीतर। चलिए अब यादें और बातें साझा करते रहिए, लेकिन अब जरा सुनिए गाना और पहले भी बूझिए कि इस गाने में कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। फिल्म आंखें, जिन्हें हीरो हीरोइन का नाम नहीं पता वो बता दें गीतकार संगीतकार का नाम। आंखें फिल्म का गाना, फटाफट बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

आंखें फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत था और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गांव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा।

0: माँ हूँ न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में माँ नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है, शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से उबे या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहां तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नजदीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशभर के युवाओं को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत कल होगा खेलो इंडिया संवाद। कनाडा के वाणिज्य मंत्री ने जमशेदपुर एनएमएल में वैज्ञानिकों से किया संवाद। महत्वपूर्ण धातुओं के पुनर्चक्रण पर भारत कनाडा के बीच सहयोग पर चर्चा। परीक्षा विवादों के बीच जेपीएससी जेएसएसपी की सेवा शर्तों की होगी समीक्षा। 3 सदस्यीय समिति गठित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, खनन एक्ट संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। और दिसंबर में सरायकेला खरसावां में होगी चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल ने दिया न्योता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के बाद युवा प्रतिभागियों, माय भारत के स्वयंसेवकों, स्थानीय खिलाड़ियों और जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय स्तर पर संवाद होगा। कनाडा के उच्चायोग के वाणिज्य मंत्री एड जेगर ने आज जमशेदपुर स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का दौरा किया। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान महत्वपूर्ण धातुओं के रिसाइक्लिंग पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने प्रयोगशाला में नवीन तकनीकों का अवलोकन किया और युवा वैज्ञानिकों से संवाद भी किया। राज्य सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति में कार्मिक और वित्त विभाग के सचिव सदस्य होंगे। समिति दोनों आयोगों की संवैधानिक और वैधानिक स्वायत्तता बरकरार रखते हुए अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपेंगी। मुख्यमंत्री ने समिति गठन को मंजूरी दे दी है। भारत में डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका यूपीआई आज 10 वर्ष का हो गया है। इस अवसर पर जमशेदपुर के दुकानदारों ने यूपीआई की सुविधा पर खुशी जताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साक्षी के दुकानदार ललन कुमार गुप्ता के अनुसार क्यूआर कोड से कुछ ही सेकंड में भुगतान हो जाता है, इससे नकदी और खुले पैसे की समस्या कम हुई है।
2: मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है ना, हम जैसे छोटे दुकानदारों को इससे बहुत फायदा हुआ है। पेमेंट में पहले होता था, खुदरा में बहुत समस्या आता था, 5 रुपए 10 रुपए ऐसे कस्टमर चले जाते थे, जो अब है कि पेमेंट करके जाते हैं। उधारी का समस्या और खुदरा का सबसे बड़ा जो टेंशन था वो खत्म हो गया है, तो बहुत फायदा हुआ है।
1: भारत में यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर खूंटी के लोगों और कारोबारियों ने इसे डिजिटल भुगतान में बड़ा बदलाव बताया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सब्जी दुकानदारों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक क्यूआर कोड के जरिए भुगतान आसान हुआ है। इस अवसर पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया।
3: छुट्टे का प्रॉब्लम होता है तो यूपीआई के माध्यम से वो आसानी से हम भुगतान कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप सब्जी खरीदने जाएं या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, भारत में हर कोने में, सुदूरवर्ती गांवों में भी यूपीआई चल रहा है, तो ये काफी बड़ी उपलब्धि है। आम लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, खासकर जो दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, वो काफी खुश हैं।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी 18 प्रखंडों में सखी मंडलों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियों की बिक्री के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी की पहल से महिलाओं को अपने उत्पाद सीधे बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिला प्रशासन ने लोगों से स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां खरीदने की अपील की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlert और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड सरकार केंद्र के MMDR एक्ट में किए गए संशोधनों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के खनिज हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी और लोकतांत्रिक स्तर पर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि याचिका का मसौदा तैयार है और अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर सहमति जताई है। सरायकेला खरसावां आदित्यपुर में सरकारी जमीन पर कथित कब्जे और अवैध प्लॉटिंग की तैयारी के मामले में अंचल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। गम्हरिया के अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि निरीक्षण में कोई पक्का या अवैध निर्माण नहीं मिला, लेकिन जमीन की साफ सफाई किए जाने की बात सामने आई।
4: राजस्व निरीक्षक और अमीन को निर्देशित किया जाके स्थल निरीक्षण किया गया है। अभी वहाँ पे कोई निर्माण नहीं कराया गया है, लेकिन साफ सफाई जैसा दिख रहा है उसको विशेष जांच करके और उस पे सरकारी जमीन पे बोर्ड लगाने का काम तुरंत किया जाएगा।
1: रांची में SSP के निर्देश पर चलाया जा रहे ऑपरेशन मुस्कान 2.0 के तहत पुलिस ने गुम और चोरी हुए 111 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। नवीन पुलिस केंद्र में आयोजित समारोह में बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने बताया कि तकनीकी सेल और थाना पुलिस ने समन्वित कार्रवाई करते हुए तकनीकी विश्लेषण के जरिए मोबाइल फोन को ट्रैक कर बरामद किया।
5: पिछले एक महीने में 100 से ज्यादा टोटल 111 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। उसमें अलग अलग मीन्स का यूज किया गया है। जो रांची पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल है उसकी मदद लेते हुए टोटल 100 से अधिक लॉस्ट मोबाइल्स को रिकवर किया गया है। सबसे पहले जो हमारा अगर किसी का मोबाइल खो जाता है तो तुरंत ही आप लोग CIR पोर्टल पर रजिस्टर करिए, और पोर्टल पर रजिस्टर करने के साथ साथ आप दूसरा अल्टरनेटिव है कि आप पुलिस स्टेशन आके अपने लॉस्ट मोबाइल की रिपोर्ट आप लिखवा सकते हैं।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिलाजुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,52,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,52,000 रुपये प्रति किलो है। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के नोनीहाट में जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के घर रसोईया का काम करने वाले युवक की मौत के मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। युवक का शव पंखे से लटकता मिला। मृतक के चाचा के आवेदन पर विधायक समेत परिवार के 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने कहा कि मौत को अभी हत्या या आत्महत्या नहीं माना जा सकता। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सरायकेला खरसावां जिला शतरंज संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को दिसंबर में सरायकेला खरसावां में प्रस्तावित चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप के आयोजन की जानकारी दी। भारतीय शतरंज संघ और झारखंड शतरंज संघ के संयुक्त तत्वावधान में होने वाली यह प्रतियोगिता स्मृति शेष पद्मश्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जयंती को समर्पित होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश भर के युवाओं को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत कल होगा खेलो इंडिया संवाद। कनाडा के वाणिज्य मंत्री ने जमशेदपुर NML में वैज्ञानिकों से किया संवाद। महत्वपूर्ण धातुओं के पुनर्चक्रण पर भारत कनाडा के बीच सहयोग पर चर्चा। परीक्षा विवादों के बीच JPSC JSSP की सेवा शर्तों की होगी समीक्षा। 3 सदस्यीय समिति गठित। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा खनन एक्ट संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी झारखंड सरकार। और दिसंबर में सरायकेला खरसावां में होगी चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज चैंपियनशिप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल ने दिया न्योता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है।

तो भाई आप बताइए कि आवाज किसकी है, लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी वाली आवाज किसकी है? तो आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं?

लागी नहीं छूटे रामा फिल्म का गाना था। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था मजरूह सुल्तानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है, कोई बात नहीं। और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत है और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गांव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सोंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गांव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गांव या शहर इस नदी के किनारे। जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती है। तो जरा बताइए कि पिछले दिनों आप कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में हैं जहां पर नदी से घड़े घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं, वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहाँ पर एक ये संदेश भी देना जरूरी है कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत जरूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रखकर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम मां समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल। और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। ये गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

ओ बसंती पवन पागल फिल्म जिस देश में गंगा बहती है लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। ये सवाल भी हमने पूछा था और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था, पद्मिनी और राज कपूर। और ये भी हमने पूछा था कि कहां पर ये गाना फिल्माया गया है। सभी श्रोताओं ने क्या बहुत ज्यादा तादाद में श्रोताओं ने जवाब सही दिया, जबलपुर के भेड़ाघाट में फिल्माया गया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम के साथ ये नदियों की चाल भी बदल जाती है। जब बारिश आती है तो जमीन बदल जाती है, गर्मी से सूखे तालाबों में पानी का गलीचा बिछ जाता है। मौसम कोई भी हो वो अपने प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में रहता है, इसलिए मौसम के साथ छल छद्म करने का कोई काम नहीं। बारिश में नदी की लहरें अपने उफान पर रहती हैं और लहरों के वेग में भी संगीत का तरन्नुम हवाओं में तिरता रहता है। मौसम का जादू आधा आसमान में खिलता है और आधा जमीन में। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है।

0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि गांव दूर है शहर से 40 किलोमीटर, सड़कें आ गई इसलिए आते जाते रहते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि नदी की बातें आप सभी ने लिखी हैं, तो आप सब में से कौन वो लोग हैं जो अक्सर नदी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, घुमाते हैं और उनसे नदी के बारे में बातें करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात होती है तब मन चाहता है ऊपर के कमरे में खिड़की खोल दें, एकांत हो, रिमझिम बूंदे शरीर पर पड़े और भूतकाल में मन कहीं खो जाए, उन कभी न भुलाए जाने वाले पलों में एक बार फिर खो जाए। काश कि ऐसा होता कि उन पलों के समय ही हमें ये पता होता कि आने वाली जिंदगी के लिए ये ही पल अविस्मरणीय है, लेकिन हमारी जिंदगी वास्तविकता कुछ और ही है। जिंदगी में कभी भी समय एक सा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन बात नदियों की बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे श्रोता नदियों की बातें कर रहे हैं और नदी वाले गाने भी लिख रहे हैं, तो चलिए ये गाना सुन लिया जाए। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार और संगीतकार। फिल्म मुझे जीने दो।
1: नदी नारे, हाँ।

मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आज लंबे शीर्षक वाली फिल्मों के गाने शामिल किए गए हैं। अब ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो गाने लिख रहे हैं, आज हम वो गाने चुन चुनकर बजा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गाना शामिल हो तो आप लिखिए अपनी पसंद इस प्रोग्राम में। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आज तो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हम खूब मस्ती के साथ सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव आज भी बहुत भाता है, पर गांव में आज भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, खासकर अगर सीनियर सिटीजन है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी वगैरह बहती है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे शहर से जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी गुजरती है, जो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में लगभग 1380 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। एक श्रोता ने गानों की फरमाइश, बहुत सारे गानों की फेहरिस्त लिखी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब नदियों की बात चली है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम वाघ है। वहां के पानी में तांबा मिला हुआ रहता है, इस कारण वहां पर भारत का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का काम किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से करीब 10 साल पहले हम घूमने गए थे, जब वहां से लौट रहे थे तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी। हम वही घंटों इंतजार करने लगे कि पत्तों की ससराहट हो, बिजली का चमकना, पानी की बूंदें टप टप कर गिरी। जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो दिन याद आ जाता है। और मेरे शहर के पास गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नदी बहती है। और अब लेकिन हम यहाँ पर नदी का गाना तो लेकर आए हैं, और बहुत सारे श्रोता भी नदी वाला गाना लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाएगा। एक तरीका है, कुछ बातें माँ सिखाती हैं कि ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, और नैतिकता की बातें माँ पिता सिखाते हैं। लेकिन बचपन में एक जो कमाल की बात होती है वो झूठ बोलना। कोई इससे वंचित नहीं रह पाता है। कभी शक्कर चुरा के खा लिया तो झूठ बोलना पड़ा, कभी पाउडर वाला दूध चुरा लिया तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग चुपके से फिल्म देखने चले जाते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कहीं पैसे रखे हैं वो चुरा के आपने कुछ चाट चटपटे खा लिए। तो ऐसी कौन सी घटना है आपके जीवन में, आपके बचपन में, वो जरा बताइए बेबाकी से और ईमानदारी से बताइएगा कि कब, किस लम्हे में, किस घड़ी में आपने झूठ बोला। तीसरी कसम फिल्म का गाना है, झूठ मत बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ वाली बात जरूर बताइए। मुकेश की आवाज।

इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।

बोलो खुदा। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, मेरे बाबूजी का बहुत पसंदीदा गीत था, कहते थे कि ये निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सब जवाब सही दिया है, बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान है। और जरा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूं, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूं और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पौना राम नदियां हैं। अब बात गंगा जी के निहारने की चली है, तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन जरा पहली बुझिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन बचपन बड़ा भोला मासूम होता है, वहां ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी और ये हमारा सवाल था गंगा मैया ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब और अभी जो गाना आप सुन रहे थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है शैलेन्द्र और चित्रगुप्त और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलेक रखा रहता था जो चोरी करके मैं खा जाती थी मम्मी डांटती थी पर दीदी ने समझाया कि ये छोटू बेबी का है फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी और ये जो चोरी है दूध पाउडर या सेरेलेक तो मुंह पर लगा रह जाता था तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने पिताजी से बचपन में 1 रुपए के लिए झूठ बोला था वो मार पड़ी कि अभी तक याद है जीवन भर याद रहेगा और ऐसे ही जो बातें हैं वो आपको नैतिकता भी सिखाती हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं जो डांट पड़ती है मार पड़ती है उससे आप अपने को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ई वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है शीर्षक गीत है। इसे महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया था और बात शैलेंद्र की चली है इसी महीने में शैलेंद्र की जयंती आ रही है अगर आपको तारीख याद है शैलेंद्र की जयंती की तो आप जरूर बताएं इसी महीने में है। अब आगे बढ़े और आपको सुनवाए ये गाना जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम फिल्म है जिद्दी

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया। और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहाँ से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा कि जीवन में सुख दुख खुशी या गम खुद की किस्मत अब कुछ पहले से तय है, नियति के परे कुछ भी नहीं, तभी तो वो हमें किसी अनजान से मिलाती है और ऐसे कि जैसे कभी अलग थे ही नहीं। संवेदनाओं के अंबार उमड़ते हैं जब उसके करीब या ख्यालों में खोते हैं। दुनिया में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रतीत होता है, जो वियोग श्रृंगार के आध्यात्मिक भक्ति यानी लौकिक से अलौकिक की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ये भी इबारत से जुड़ी हुई बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन गानों को सुनते हुए मन बड़ा भावुक हुआ क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब जरा सुनिए ये गाना और बताइए कि कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म तेरे घर के सामने। इस गाने का भी जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

अभिमान फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था, जय भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया, कम समय में दिया, सही दिया सचिन देवबर्मन, ये भी सही जवाब था। आज का सुरीला सफर प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर बस इतना ही।

0: नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है घर पर। साथियों, घर केवल एक शब्द भर नहीं है, बल्कि ये तो भावनाओं का वो अनंत आकाश है जिसके नीचे जीवन अपने सबसे सुंदर रंग बिखेर रहा होता है। ये ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा भर नहीं, बल्कि स्मृतियों, संबंधों और संवेदनाओं का जीता जागता संसार है। घर वो जगह है जहां मन को सुकून मिलता है, आत्मा को अपनापन और हृदय को प्रेम का स्पर्श मिलता है। देखा जाए तो घर एक ऐसे वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें संस्कारों में, तना विश्वास में और शाखाएं रिश्तों में फैली होती हैं।
1: दो दीवाने शहर में

घर की छाया में व्यक्ति जीवन की तपती धूप से राहत पाता है। जब संसार की भाग दौड़ से थका हुआ मन लौटता है तो घर उसे उसी तरह अपने आगोश में समेट लेता है जैसे शाम ढलने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। घर की दीवारें निशब्द होते हुए भी बहुत कुछ कहती हैं। वो बच्चों की किलकारियों, बुजुर्गों की सीख, माँ की ममता और पिता के संघर्षों की साक्षी होती हैं। हर कमरा अपने अंदर एक कहानी समेटे रहता है। हर कोना किसी स्मृति का संरक्षक बन जाता है।

उसकी यादें मन के आकाश में चांदनी की तरह बिखर जाती हैं। घर एक भावना है, एक अनुभव है, एक अनमोल एहसास है। ये वो जगह है जहाँ हम दुनिया की हर भूमिका से मुक्त होकर केवल स्वयं बन जाते हैं, जहाँ जीवन की उथल पुथल के बाद मन को शांति मिलती है। अगर जीवन एक कविता मान ली जाए तो घर उसका सबसे मधुर छंद है। जीवन एक संगीत है तो घर उसकी सबसे सुरीली धुन है। ये वो जगह है जहाँ रिश्तों की सरगम गूंजती है और प्रेम की स्वर लहरियाँ वातावरण को मधुर बना देती हैं।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
1: India today stands as the fastest.
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
0: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
1: India Canada bilateral relations have seen
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
1: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
0: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
3: फूड इनसिक्योरिटी रिमेन्स
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
3: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सिलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिर दर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEA PG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: आकाशवाणी कोलकाता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में

0: प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार भारती के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरनमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट

पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुध ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी और नंदा की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है शिकार।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला सदाबहार गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान।
1: कौन है जो सब

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: कुछ दिल ने कहा,
4: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
4: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
5: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
4: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
4: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
4: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
5: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम
4: की। संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
5: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
4: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है ओपी नैयर का, फिल्म का नाम है हमसाया।

0: आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि उन्हें कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले या उसका संदेह होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचित करें। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई नहीं है, बल्कि बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए एक गंभीर आघात है। उन्होंने बेटियों के सपनों, अधिकारों और सुरक्षित भविष्य की रक्षा के लिए एकजुट होने और बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संसद द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को राज्य और देश हित में बताया है। श्री दास ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के सहयोग से चल रही राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित विधेयक का दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक से अवैध खनन पर शिकंजा कसेगा और वैध खनन से राजस्व में वृद्धि होगी।
1: मैं कोयला, आलू, पत्थर, सिंडिकेटों के द्वारा आज पूरे राज्य में लूट मच रहा।
0: भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत आज चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर से हुई। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने मां भद्रकाली का आशीर्वाद लेकर यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने छात्र और आम लोगों से भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए एकजुट होने की अपील की। साथ ही श्री महतो ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोबाइल से चंद सेकंड में होने वाला भुगतान न खुले

0: में पैसों की चिंता और न ही लंबी प्रक्रिया। भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने 10 वर्ष का सफर तय कर लिया है। जामताड़ा के दुकानदारों ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर न केवल खुशी जताई है बल्कि केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है।
1: पहले लोगों का लेन देन जो है नोट के माध्यम से हुआ करता था, लेकिन जब से यूपीआई चालू हुआ है आज 10 साल हो चुके हैं उसको। ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूपीआई की वजह से लोगों के साथ पैसे लेन देन में दिक्कत नहीं होती है। कहीं भी जाइए आप, अगर आपके पास पैसे ले जाने में तो संकट रहता है, लेकिन यूपीआई है तो आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख कहीं भी लेन देन कर सकते हैं। आपको कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं है।
0: राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने ईद ए मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। झारखंड समेत देशभर में आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने वर्ष 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और गरीब, बीमार तथा वंचित लोगों की सेवा को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बनाया। वर्ष 1979 में उन्हें मानवीय सेवा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूं या पूछना चाहती हूं।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया, आपके पिता का नाम

0: आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
1: हाँ, पता नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
0: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखियां सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
1: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाए, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
0: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खास तौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
1: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: और शब्द हमारा विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है। लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देख कर लगता है कि हम भी इसके इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
1: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल
0: सहज ईर्ष्या है
1: कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन,
0: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले,
1: विकराल रूप ले ले,
0: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो, ईर्ष्या तो बताएं।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं,
0: दूसरों के बारे में।
1: उनके क्या विचार है या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से, अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं जिसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन से, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना, तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी
0: हो सकता है। इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है, तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद मिलाद, तो ईद मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है।
1: और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है जो हर त्योहार पर की जाती है और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है,
1: उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा यह पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है।
1: और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है ममता जी। वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है।

0: होता है तो कितना स्वाद बढ़ जाता
1: बहुत
0: है,
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, और मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा,
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी
0: वो खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है
1: और भरना भी नहीं चाहिए।
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भरा किसी नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे,
1: जो ओणम का त्योहार है तो क्यों ना हम केरल
0: की बात करें। तो बताइए क्या खासियत है।
1: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है
1: GI Tag के
0: इस प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है
1: और उन्हें GI Tag मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है और राज परिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तुरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहाँ लाया गया था और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसके सादगी और सुनहरी किनारी के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते
1: हैं। और है ना वो ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और उसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर, वो
0: क्या बात है, वो आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्ति तो लगता है देखकर। अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्ष्या शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्ष्या मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्ष्या नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात बहुत सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की ईर्ष्या ना करें। एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में
0: हमारे हाथ जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं टिप्पणी?
0: जी जी।
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर राख बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देख कर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा घर, हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों को, दो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो कितनी अच्छी दोस्ती है, हमारे पास नहीं है। कि किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
0: लोग परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तो ये ईर्ष्या नहीं जलन होती है।
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहने हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के, लेकिन एक ब्रेक के बाद।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है
0: और अपना अच्छा कोई खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी, पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो अच्छा।
1: या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती थी, तब लगता था अरे ये हमारे टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और हमारा नहीं लेती। ये एक सहज ईर्ष्या होती है, बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए।
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जे ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते हैं कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई, ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: वही तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बुढ़ऊ अगर उसे आंगन में क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी ना हो। भाई तो गजब की ईर्ष्या, अच्छा ऐसी बहाने साफ सफाई
1: हो जाएगी।
0: एक सखी है जो लिख रही है कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है, और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं, ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है। क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतने ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
1: और अगर हम मेहनत करने लग गए
0: तो फिर वो सकारात्मक हो गए। और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक ही
1: हो गए। घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई।
1: और कई व्यंजन भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे
1: कि आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और बहुत सारी फिल्में इस पर बनी है,
1: इस विषय पर बनी है
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं, ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई सोनाली जी?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है।
0: और कर्मों का
1: और एक
0: नसीब के साथ साथ।
1: सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है, लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम खुद
1: के नाम से पहचान
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं है बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
1: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
0: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाए। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के पति के साथ, मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है, जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी सम्मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहां कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है न कि नाम, जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहां हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने की प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है
1: जी,
0: कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़े, नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभालने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपनी अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
0: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
1: पीछे
0: हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है जैसी परंपरा
1: जो चल रहा है वो अच्छा है
0: जी।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से, पिता के नाम से जानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: पेंगेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचाने भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
0: बिल्कुल। वो तो
1: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाएं, काजू को मिक्सी के जार में डालें, मिक्सी को लगातार ना चलाएं, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाएं ताकि काजू तेल ना छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीस कर छान ले। चाशनी तैयार करें, एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, यानी एक तार बनाना है, उसे चेक करें। अब मिश्रण पकाएं, गैस की आंच धीमी करें, छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाएं। इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठे ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है, मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्के हाथों से तब तक मसले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे। उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए।
0: क्या बात है। तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम, बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है। तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
1: आप सुनवा दे,
0: सुनवाते हैं।
2: नहीं, नहीं।

0: ये आनंद फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज, गुलजार के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। और अब जरा घड़ी की ओर देखिए कि हम अब कुछ बोले बतियाए नहीं, घड़ी यही कह रही है, ना ही हम गाना सुनवा सकते हैं। तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: संविधान में उनके विचारों को शामिल करना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत 3 दिवसीय आयोजन कल से शुरू होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजे गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संसद द्वारा पारित खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को राज्य और देश हित में बताया है। श्री दास ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद के सहयोग से चल रही राज्य सरकार केंद्र द्वारा पारित विधेयक का दुष्प्रचार कर रही है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक से अवैध खनन पर शिकंजा कसेगा और वैध खनन से राजस्व में वृद्धि होगी। राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान नाते पाक पेश की गई और पैगंबर हजरत मोहम्मद की जिंदगी, उनकी शिक्षाओं तथा इंसानियत, भाईचारे और अमन शांति के संदेश को याद किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि कुछ घंटों में चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले में गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: वो ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उसके इन्फ्लुएंस से ही, जिसे कहते हैं कि मेरे गहन मन में कई तरह की चीज़ों का उपज हुआ, चाहे वो हमारे क्लासिकल दौर हो, चाहे फोक का दौर हो, वो सब मुझे ऑल इंडिया रेडियो से ही मिला था। और नाटक, ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में एक जमाने में बहुत सारे रेडियो नाटक खेले जाते थे।
2: जी जी।
1: उसने जो मेरे सेंसेस पे जो काम किया था, वो नाटक सुन सुन के दोपहर को वो नाटक खास करके रविवार को सुनाते थे। मतलब उसके जरिए ही मैं कह सकता हूँ बचपन से मेरे इमेजिनेशन को जो है एक बहुत बढ़िया एक धक्का मिला।
2: जी, विविध भारती तो खैर सुरीली धड़कन है ही
1: जी।
2: और अच्छा लगा आप विविध भारती के साथ जो आपकी यादें हैं उससे शुरुआत हुई है। शुरुआत करते आपके बचपन की, कहां कहां शुरुआत हुई ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि हमने सुना कि आपके पिताजी की नौकरी के चलते काफी सारी जगह बदली है
1: जी,
2: तो कैसे शुरुआत हुई?
1: पैदा तो मैं कलकत्ते में हुआ
2: जी।
1: उस जमाने में मेरी माँ हर शाम को हारमोनियम निकाल के रविंद्र संगीत, नजरुल गीत प्रैक्टिस करती थी। मेरे पिताजी जोर से अपने कविताएं रिसाइट करते थे, चाहे वो बंगाली में हो चाहे इंग्लिश में, वर्ड्सवर्थ और कीट्स हो। घर में लोग जब आते थे तो बहुत डिबेट होते थे, चाहे वो माइथोलॉजी पे हो, रामायण महाभारत पे हो, या राजनीति पे हो, स्पोर्ट्स पे हो। चारों तरफ स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा सिलसिला था, उन दिनों बहुत स्पोर्ट्स खेला जाता था। और जैसे मैंने कहा, बाहर जो है जो चहल पहल, राजनीतिक चहल पहल, वो चली रही थी। तो उस दौर में मैं पैदा हुआ, वो सारे सेंसेस मेरे

0: बढ़िया, आपको संयम भी दिखता था वहां पे, पोइट्री का सिलसिला भी दिखता था, एक मिजाज था, वो पुरानी दिल्ली का कल्चर था। वो समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। पहले तो मैं अपने चारों ओर थोड़ा सा ये जो दिल्ली का जो टफनेस है ना, जो जो एक जिसे कहते हैं आपको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव होना पड़ेगा, वो दिखा मुझे। पुरानी दिल्ली का कल्चर में थोड़े बड़ा हुआ तो मैंने वो मेरा एक्सपोजर बढ़ा, जहाँ जिसे हम मीर गालिब का कल्चर कहते हैं,
1: जी
0: या लखनऊ से निकल के दिल्ली पहुंचने वाला खुसरो का कल्चर कहते हैं, वो कल्चर से भी मैं वाकिफ हुआ। तो मेरा बचपन ये दो स्रोतों में बहते हुए निकला।
1: फिर नेपाल भी कुछ
0: फिर
1: वक्त रहे
0: नेपाल, फिर
1: जी।
0: मैं जब क्लास 5 में था तो पापा का तबादला नेपाल हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस था,
1: जी
0: वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका काम ही था इकोनॉमिक एनफोर्समेंट के जरिए काम करना। तो
1: जी
0: नेपाल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, तो पापा का वहाँ तबादला हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको काम भी करना था। तो मैं वहाँ पे इंडियन एम्बेसी के स्कूल में पढ़ता था, जो कि सेंट्रल स्कूल कहते हैं। छोटा सा स्कूल था, एक क्लास में सिर्फ 18 बच्चे थे, तो संगत बहुत अच्छी हुई, क्योंकि बड़े स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में आप खो जाते हैं, यहाँ
1: जी
0: बहुत कम बच्चे थे। तो एक जो है अपनापन बन गया, टीचर्स का अटेंशन वो ज्यादा दे पाते थे हर बच्चे को, और यहां से मेरा नाटक का सिलसिला बहुत अच्छा शुरू हुआ। क्योंकि नाटक मैंने उससे पहले भी किया,
1: जी
0: मतलब मैंने लोअर केजी से ही शुरू किया था, जब मुझे एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा जो अंदर का जो एक शर्मीला जॉय है वो कहीं छूट जाता है पीछे, जब मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ, मुंह में कुछ रंग लगा लेता हूँ और स्टेज पे जाता हूँ। ये मुझे लोअर केजी से ही मुझे
1: एक
0: कुछ
1: ये
0: चढ़ गया।
1: स्कूल का प्ले भी मुझे कुछ सुना है मैंने,
0: जी
1: उस
0: जी
1: बारे
0: जी
1: में कुछ
0: जी
1: बताएं,
0: तो उस
1: दिलचस्प की
0: समय
1: बात है।
0: मैं कॉन्वेंट स्कूल में था, कलकत्ते में, दमदम में,
1: जी
0: हार्वर्ड मेमोरियल करके। तो वहां पे ऑब्वियसली क्रिसमस के आसपास नेटिविटी प्लेस होते थे, तो मुझे जिहोवा का किरदार दिया गया, मतलब जीसस क्राइस्ट के पिताजी का, कंबल पहनाया गया, दाढ़ी लगाई गई और सर पे साफा बांधा गया, लाठी दे दी गई। तो मुझे जहां तक याद है, मतलब मेमोरीज ही हैं, कि मैं जब वो सब कर रहा था तो टीचर्स मेरे मम्मी को कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी बच्चों को बताना पड़ता है, ये तो अपने आप ही बहुत चीजें कर जाता है। तो मुझे वो याद है वो वाक्या, कि मैं वैसे मैं बहुत शर्मीला था, क्लास में अगर मुझे कुछ प्राइज भी मिलता था और मेरा नाम लेते थे तो मैं खड़ा नहीं होता था, इस डर से, शर्म से, कि मुझे अपनी शक्ल दिखानी होगी सबको। इतना शर्मीला लड़का कभी नाटक कर सकता है? लेकिन मजे की बात यह है कि शायद जिनके अंदर झिझक हो वो वेट कर रहे हैं कि किसी मीडियम के जरिए वो अपने आप को खोल पाए। तो
1: बिल्कुल
0: नाटक मेरे लिए था वो एक्सपोजर जो है। और लेकिन हाँ, स्टेज पे जाके मैंने अपने मम्मी को सामने देखा तो शर्मा के मैंने अपनी जीभ बाहर करके मैं खड़ा हो गया। वो शुरुआत थी मेरी। लेकिन नेपाल में चल के, खास करके हमारे क्लास प्लेस भी होते थे, जो कि इंटर हाउस प्लेस होते हैं, क्लास के अंदर के प्रोग्राम्स होते थे, और एनुअल प्रोग्राम होता था। और इन दिनों मेरा जो है साहित्य के साथ बहुत अच्छा संबंध हो गया था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत छुटपन में मेरे हाथों में, बच्चों के ही सही लेकिन साहित्य दिया था, बड़ों के साहित्य को, मतलब जो लिटरेचर कहते हैं उसको भी, ट्रांसलेटेड वर्क्स मुझे पकड़ाए थे, चार्ल्स डिकेंस हो, या हमारे बंगाली में बहुत राइटर्स हैं, रहे हैं, बिमल मित्रा, बिमल कौर, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, इनके लिटरेचर हो, अंग्रेजी लिटरेचर हो, फ्रेंच लिटरेचर हो, ये सारे उन्होंने ट्रांसलेटेड मुझे दिया था
1: जी
0: बंगाली में। हाँ, मैं वो पढ़ता रहता था, बच्चों का शेक्सपियर मैं बचपन से पढ़ना शुरू किया। तो इससे मेरे अंदर का जो मेरी कल्पना शक्ति एकदम उजागर हो गई। मैं ये सब किरदारों को आसपास देखता था, मैं उनके साथ एडवेंचर पे जाता था, मैं पूरी दुनिया घूम लेता था साहित्य के जरिए। अगर मैं किसी वाइकिंग के ऊपर कोई किताब पढ़ रहा हूं तो मैं वाइकिंग के साथ उनके जहाज पे पूरी दुनिया घूम रहा हूं, एडवेंचर कर रहा हूं। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, किताब। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो था,
1: बिल्कुल
0: तो किताबें दोस्त बन गई, और फिर नाटक, ये लिटरेचर से नाटक की तरफ जिसे कहते हैं। मैंने खुद अपने हाउस प्लेस के लिए नाटक लिखे जो मैंने पढ़े थे किताबों में। तो अरेबियन नाइट्स में समझ लो कोई किस्सा पढ़ा, उसी में से मैंने कोई नाटक का रूप दिया बच्चों का, और उसको डायरेक्ट भी कर दिया मैंने। तो इस तरह से मेरा नाटक का सिलसिला स्कूल टाइम में, आप कहते हैं कि प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाके बहुत एक्टिव हो गया।
1: वहीं से एक दिशा मिल गई कि इस तरफ ही जाना
0: हाँ,
1: है।
0: और एनुअल डे में नॉर्मली सीनियर स्टूडेंट्स को मौका मिलता था, तो मेरे अंदर एक जिद थी कि मैं भी एनुअल डे में परफॉर्म करूंगा। तो मैं खुद ब खुद नाटक बनाने लग गया। मैंने कुछ नाटक उठाया, वन एक्ट प्ले, और एक दो दोस्तों को पकड़ा, मैंने डायरेक्ट किया, खुद ही परफॉर्म किया, और जाके मैंने वो दिखा दिया, हमारे जो कल्चर कोऑर्डिनेटर होते थे उनको जाके दिखाया। वो इतने प्रभावित हो गए, बोले कि हाँ, इस साल हम सेकेंडरी स्कूल का भी एक नाटक एनुअल डे में रखेंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ सेकेंडरी के स्टूडेंट्स का नाटक, जो मैंने डायरेक्ट किया, मैं एक्ट कर रहा था, रखा गया। वो इतना अच्छा लगा उन लोगों को एनुअल डे के प्रोग्राम में भी कि प्रिंसिपल ने कहा कि इसको हम अपने प्रेयर के ग्राउंड में भी इसको खेलेंगे, तो प्रेयर ग्राउंड में सब स्टूडेंट के सामने

0: ने उसको खेला, तो ऐसा शुरू हो गया। फिर मुझे याद है कि हम लोग घर घर जाके अपने SUPW के मोमबत्ती वगैरह जो बनाते थे वो बेचते थे।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: तो बेचने जाते थे तो कुछ लोग, मेरे फादर के कलीग थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले कि भाई मैंने तुम्हारा नाटक देखा नहीं, बोले हाँ मैं पागल हो गया, तुम एक काम करो पापा को मत बताना, जब बड़े होंगे तो सीधा मुंबई चले जाना, बॉम्बे बॉम्बे उसे बॉम्बे कहते चले। मैंने कहा अंकल ये क्या कह रहे हो, मुझे तो पता नहीं ये सब क्या है। कहते नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, याद रखना बड़े होंगे तो बॉम्बे चले जाना। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ, तो मेरे सर पे ये जो है बीज बो दिया
1: गया था।
0: तब मैं क्लास 8 में था शायद, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है कुछ, मतलब मेरे अंदर कुछ है जो मुझे काठमांडू से दिल्ली नहीं कलकत्ता नहीं मेरे बॉम्बे
1: बॉम्बे
0: ले जाएगी
1: चाहता।
0: तो ये एक और सिलसिला था।
1: बिल्कुल।
0: फिर मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में अब मैं सीनियर स्कूल में था, सीनियर स्कूल में भी मैं नाटक खेला, वहां पे भी मेरे इंग्लिश टीचर जो थे उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी खास जो टैलेंट है इसको तुम नजरअंदाज ना करो।
1: कोई नाटक जो है आपका पहला प्रेम कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन हाँ, फिल्म्स उसके आगे प्रायोरिटी आपकी जो रहती है वो शायद नाटक की रहती है।
0: ये मेरा जीवन भर का अगर कोई प्रेमिका या प्रेम है तो वो नाटक है, बाकी सब प्रेमिकाएं तो छूट जाती है, रह जाती है, टूट जाता है दिल, लेकिन इसने ना दिल मेरा तोड़ा है ना ही मेरा पीछा छोड़ा है, तो ये संबंध तो अभी तक चल रहा है।
1: चलिए यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, आपकी पसंद का कोई गाना आप सुनना चाहें बताएं।
0: शुरुआत अगर करें तो एक थोड़े खुशहाल गाने से करते हैं, जो मेरे एक ऑप्टिमिज्म का गाना, मेरे फिलॉसफी को दर्शाता है वो। देवानंद का मैं बड़ा फैन होता था, तो उनका एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसको अगर आप सुना दे
1: सुनवाते हैं गाना हमारे श्रोताओं को आपकी पसंद का।

0: गया।
1: बात चली है नाटकों की, तो यूनिवर्सिटी में ही आपने जन नाट्य मंच से आप जुड़े और उसके बाद थिएटर का जो सफर है थोड़ा सा और प्रोफेशनल हो गया। नाम आता है बहुत बड़े दिग्गजों का, जिसमें इब्राहिम अलकाजी साहब का नाम आता है और भी कई नाम आते हैं, तो उनके साथ जब आप जुड़े तो कैसा अनुभव, कुछ अलग अनुभव है वो,
2: कमाल,
1: उसके बारे में कुछ पता है? अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, अलग अलग तरीके कैसे हैं?
2: सबसे पहली बात तो ये है कि गुरुओं का बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में। एक गुरु आपके अंदर बीज बोता है, फिर उसमें पानी देता है, फिर फसल उगता है, फिर आप जाके जो आप सीखते हैं उस गुरु से उसको आप शेयर करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल।
2: जब वो शेयर करते हैं वो समाज में और आगे निकलता है, कुछ लोग और प्रभावित होते हैं और उस पथ पे चल पड़ते हैं। तो अगर आपके गुरु ने आपके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज डाले हैं, आपको सही मायने में एक अच्छे कल्चरल दिशा दिखाई है, तो आप भी उसी पथ पे चलेंगे और लोगों को दिशा दिखाएंगे और उस दिशा पे बाकी लोग भी चल पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज बहुत स्वस्थ हो जाता है। तो मेरे जिंदगी में जो गुरु आए, सफदर हाशमी हो, जिन्होंने मुझे जीवन दर्शन दिया कि दुनिया को कैसे देखना चाहिए, समाज को कैसे देखना चाहिए, किस नजरिए से देखना चाहिए, तो सबको समान तरीके से समझना और तोलने का जो गुण है उनसे मैंने सीखा। किसी इंसान और इंसान में कभी फर्क नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो चाहे उसकी चमड़ी अलग हो, दमड़ी अलग हो, धर्म अलग हो, उसका इनकम अलग हो, कुछ भी हो, कभी भी किसी इंसान में फर्क नहीं करना, सबको एक ही नजरिए से देखना, उसके बाद अपने आप को प्रस्तुत करना, उसके बाद उनसे जुड़ना, समानता के नजर से जुड़ना किसी के साथ भी, ये मैंने उनसे सीखा
1: जी।
2: तो वो बहुत काम आया मेरे, कि मेरे अंदर से जो विभाजनकारी जो एक पर्सनालिटी बन जाती है लोगों के अंदर, कभी वो घर से वैल्यू लेके निकलते हैं, कभी चारों ओर के इन्फ्लुएंसेस से लोग, हर कोई थोड़े विभाजनकारी बन जाता है, मेरी भाषा, हाँ, मेरी जात, मेरा धर्म,
1: मेरा कल्चर,
2: हाँ, मेरा शहर
1: जी,
2: मेरा कल्चर, मेरा खान पान, मेरी आदतें, मेरी तरह के लोग क्यों नहीं, दूसरे तरह के लोग क्यों, वो लोग और हम लोग, ये फर्क उसी से आता है, मेरा देश सबसे महान, उसका देश सब नीचे गिनेंगे, ये जो ऊंच नीच विभाजन, ये सारी चीजें, ये इन्फ्लुएंसेस होती हैं, बहुत सारी चीजें घर से निकलती हैं, बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर से आती हैं, मीडिया से भी आती हैं। अगर आपको बहुत पहले ये नजरिया आपको मिल जाए, ये दुनिया को देखने का दर्शन आपको मिल जाए कि आपको कोई फर्क नहीं करना है, जब आप किसी के सामने अपने आपको प्रस्तुत करो, किसी से बात करो, किसी से जुड़ो, तो पहले समानता से जुड़ो
1: जी,
2: उसके बाद फिर आप तोलो कि हाँ इसमें ये कमी है, कैसे मैं इस कमी को दूर करूं और इसे ऊपर उठाऊं। तो हमारी जिम्मेदारी है किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे गिराना नहीं। ये जो दर्शन है मैंने सफदर से पाया, और अलकाजी साहब ने मुझे दुनिया में खूबसूरती को खूबसूरत तरीके से देखना सिखाया कि आप कोई भी चीज को कैसे खूबसूरत बना सकते हो, उसके अंदर की खूबसूरती को कैसे निकाल सकते हो, निखार सकते हो, ये अलकाजी साहब से मैंने सीखा। चाहे वो साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे थिएटर हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे कुछ भी हो, जिसको हम एस्थेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, सौंदर्य दर्शन आप कह लीजिए, आपके चारों ओर सौंदरता है, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा सौंदरता का प्रतीक है, आपके अंदर का अंदरूनी मन सौंदरता का प्रतीक है, साहित्य सौंदरता का प्रतीक है, कविता, पेंटिंग, थिएटर, ये सब सौंदरता का प्रतीक है, इनको उजागर करना है हमको, इनको समाज के सामने लेके जाना है, प्रकृति और कला, और एक साइंटिफिक नजरिए से, मतलब एक वैज्ञानिक सोच के साथ, आप किसी को भटकाएंगे नहीं, वैज्ञानिक सोच में क्या होता है, भटकाते नहीं है, आप सही रास्ता दिखाते हैं। तो ये वैज्ञानिक सोच और ये कलात्मक सोच सफदर अलकाजी साहब के चलते मेरे अंदर बैलेंस बन गया था।
1: बिल्कुल।
2: और
1: कहते हैं ना, थिएटर का मतलब जो पहला सबक सिखाया जाता है, सबको साथ में लेकर चलना
2: जी,
1: सिर्फ अपना नहीं सोचना, एक टीम वर्क और सब कैसे संभले,
2: ये तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुश्किल ये होता है कि जब एक्टर होता है ना थिएटर में, तो वो ग्रुप में समा जाता है, ग्रुप थिएटर में वो फिलोसफी लेके चलता है कि सबको साथ लेके जाना है, लेकिन खुद जब वो खड़ा होता है तो एक्टर वो सिर्फ अपने आप को देखता है, और तब उसे सिर्फ अपनी पहुंच, अपना रुतबा, है ना
1: जी,
2: अपना माइलेज, अपनी रोशनी, ये चाहिए उसको। तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर वो थिएटर का जो फलसफा है वो भूल जाता है वो।
1: बिल्कुल।
2: कि सबको साथ लेके चलना है, किसी को नीचे नहीं गिराना है, बल्कि हाथ देना है, उठाना है, अगर दूसरों को उठाओगे तो आप खुद भी उठोगे। थिएटर में हम ये सीखते हैं कि अगर आपका बगल वाला एक्टर कोई सीन खराब करता है तो आपका सीन भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसी के साथ काम कर रहे हो, तो वो अच्छा करेगा तो आपका सीन अच्छा जाएगा,

0: तो आप अच्छा काम करोगे। तो इसीलिए एक दूसरे को आप कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते रहते हो थिएटर में, लेकिन दूसरे मीडियम में जाके वो बाजारू हो जाता है। तो बाजार में क्या है कि हर कोई जो है अकेला दिखना चाहता है,
1: बिल्कुल
0: अकेले खड़ा होना चाहता है,
1: मैं तो, सबसे अलग।
0: हाँ तो ये बाजार आपको सिखाता है कि आपकी अलग ब्रांडिंग है, आप ब्रांड हो, आप सब मिलके ब्रांड नहीं हो, आप अकेले ब्रांड हो। तो यहाँ जाके फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है।
1: यहाँ पर सुनते हैं आपकी पसंद का दूसरा गाना।
0: अब मैं थोड़ा जिसे गंभीर गाने की तरफ लेके जाता हूँ। आज का जो दौर चल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उससे जुड़ा एक गाना है, फिल्म प्यासा में, गुरुदत्त की फिल्म है, साहिर ने लिखी थी और SD बर्मन ने कमाल का जो है इसे सुर दिया था, वो है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है।
1: सुनते हैं गाना जी।

0: अभी थिएटर की जैसे हमने बात की
1: जी,
0: 80s 90s से आप जुड़े हैं,
1: हाँ,
0: नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, थिएटर अभी भी कर रहे हैं
1: जी, जी,
0: लेकिन अभी कुछ वक्त से, कुछ सालों से एक जो चेंज, एक परिवर्तन देखा है वो है कि मेगा प्लेज करके थिएटर आ गया है
1: जी, जी,
0: उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही साउंड इफेक्ट, एक लार्जर देन लाइफ अगर हम टर्म यूज करें
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: वो यूज कर सकते हैं, तो कितना फर्क आया तब में और आज में, या हर किसी के अपना अपना एक जगह है, अपना स्थान है,
1: हर किसी का स्थान है, क्योंकि ये तो पश्चिमी देश से आया है। होता यह है कि पश्चिमी देश में अगर आप देखें, खास करके इंग्लैंड और यूएस में अगर आप देखें, तो इंग्लैंड में जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्ट एंड कहते हैं
0: जी,
1: और यूएस में न्यूयॉर्क थिएटर कैपिटल है और वहां पे ब्रॉडवे कहते हैं
0: जी।
1: जब आप वेस्ट एंड या ब्रॉडवे कहते हैं तो आप बड़े नाटक की बात करते हैं, म्यूजिकल्स की बात करते हैं, जहां बड़ा होता है। जब उससे

0: हटके बात होती है, जो जिसमें थोड़ा सा अपनापन होता है, पर्सनल एलिमेंट होता है, उसको हम ऑफ ब्रॉडवे कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और जब वहां से और हटके बहुत एक्सपेरिमेंटल काम होता है, रिस्की काम होता है, चीजों को परखने का काम होता है, उसको हम ऑफ ऑफ ब्रॉडवे बोलते हैं। वही वेस्ट एंड में भी है, वेस्ट एंड है, ऑफ वेस्ट एंड है, ऑफ ऑफ वेस्ट एंड है। तो वेस्ट एंड ऑफ ब्रॉडवे में बड़ा काम होता है, वहां पर बड़े स्टार्स आते हैं जिनको फिल्मों में भी देखते हैं, वहां पे म्यूजिकल में चकाचौंध टेक्निकलिटीज आपको दिखती हैं, सीन्स ऐसे बदलते हैं आपको पता भी नहीं चलता, इस तरह के सेट्स आते हैं, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, आप जो है उड़ जाते हैं, एकदम होशो हवास उड़ जाता है आपका, और आप उसके लिए बहुत डॉलर्स और पाउंड्स खर्च करते हैं, ठीक है, उससे पूरी थिएटर इंडस्ट्री चलती है
1: जी।
0: तो उसका कुछ एक हिस्सा ऑफ ब्रॉडवे पे ऑफ वेस्ट एंड के पास भी आता है और कुछ हिस्सा ऑफ ऑफ वेस्ट एंड में भी आता है। तो बात करने का जरिया होता है, जैसे नुक्कड़ नाटक में आप सड़क पे बात करते हैं क्योंकि आप सोचते हैं ये बात मुझे सड़क पे ही मैं कर सकता हूं, ये हॉल में करूंगा तो कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो टिकट खरीद के देखेंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। तो सफदर कहता था कि अगर वो नहीं आते तो हमें उनके पास जाना चाहिए, तो आप वहां जाके ये करते हैं
1: जी।
0: फिर एक्सपेरिमेंटल हमारे यहाँ पे भी थिएटर होता है, जैसे दिल्ली में ताशीराम सेंटर बेसमेंट, यहाँ पे भी है, पृथ्वी है, एनसीपीए है। तो एक्सपेरिमेंटल स्पेस में कम दर्शक होते हैं लेकिन वो दर्शक बड़े ही रोचक दर्शक होते हैं, वो सोच और समझ के साथ आते हैं कोई बात को सुनने। तो आप जब वहां पे मंटो का नाटक करते हैं, मतलब मंटो की बात को रखते हैं, प्रेमचंद की बात को रखते हैं, अंधा योग करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो बड़े रोचकता के साथ उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आप बड़े हॉल में जाते हैं, यहाँ पे जमशेद भाभा ऑडिटोरियम है या एनएमएससीसी में बड़ा वाला हॉल है, तो वहां पे जो लोग आते हैं वो वित्तवान लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट चाहिए, वो वेस्ट की तरह चाहिए उनका एंटरटेनमेंट। तो वहां पे चकाचौंध दिखता है, अगर उस चकाचौंध के अंदर कुछ अच्छी बात भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना मिले तो कम से कम वो इस बात के लिए खुश है कि मैंने जो पैसा खर्च किया है उसके बदले में मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है और मेरे सारे सेंसेस को इन्होंने एंटरटेन किया है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं,
1: अपनी अपनी जगह,
0: अपनी अपनी जगह है। आप बड़े चीज के जरिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, जैसे ला मिजराबल करके एक बहुत फेमस म्यूजिकल होता है वेस्ट एंड ब्रॉडवे में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, लेकिन म्यूजिकल है, उसमें कमाल कमाल के गाने हैं, क्रांति के बारे में है, तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। लायन किंग बहुत बहुत फेमस म्यूजिकल है जो वहां पे चलता रहता है, तो लायन किंग में भी तो आप बात क्या कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं, आप फलसफा दे रहे हैं ट्रेडिशन के बारे में, एथिक्स के बारे में, है ना। तो आप बड़ी चीजों के जरिए भी अच्छी बातें कह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप संस्कृति की बात करते हो तो संस्कृति सिर्फ मनोरंजन पे निर्भरशील नहीं होता, मनोरंजन एसेंशियल होता है, मनोरंजन के बिना संस्कृति नहीं है, मनोरंजन तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, उसके अंदर से कोई बात निकल के आती है जो आपकी सोच और समझ को या तो बदलती है या उसको और उजागर करती है, तो आप के अंदर एक नई चेतना भर देती है, चाहे छोटे तौर पे हो लेकिन भर देती है कि आप हॉल से बाहर आए तो थोड़ा सा सोचे और कहीं आपका नजरिए में थोड़ा सा फर्क आए, आप थोड़ा सा साफ देखने लगे, आप चीजों को थोड़े संयम के साथ, संतुलन के साथ देखने लगे, ये अच्छी संस्कृति की जो है सीख है।
1: जी जी। म्यूजिकल ड्रामा की बात चलिए तो उसमें भी अपने ताज एक्सप्रेस करके कुछ म्यूजिकल ड्रामा से आप रिलेटेड हैं।
0: जी जी जी। अभी भी चल रहा है ना, अभी 23-24 को पृथ्वी में शो है लेडी संगीत करके।
1: अच्छा।
0: वो भी म्यूजिकल ही है।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो उसमें कहने को तो लेडी संगीत है तो लोग लेडी संगीत सुनने आते हैं। बहुत शुभा मुद्गल का म्यूजिक है उसमें, बहुत बढ़िया म्यूजिक आता है, फोक और क्लासिकल म्यूजिक आता है उसके अंदर, लेकिन उसके जरिए हम बात करते हैं जेंडर इश्यूज के ऊपर।
1: अच्छा।
0: हाँ, नारी, नारी की जगह, शादी, समाज में शादी की क्या जगह है उस पर बात करते हैं, और हमारे अपने अंदर के अवचेतन मन के बारे में, हमारे अंदर जो नारीत्व छुपा हुआ है उसको भी हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बढ़िया नाटक है लेकिन म्यूजिकल है। और ताज एक्सप्रेस जो है उसे आप कहते हैं बॉलीवुड म्यूजिकल, जैसे बॉलीवुड म्यूजिकल होता है ना कि एक लव स्टोरी होती है, उसके अंदर आइटम्स की तरह एक एक गाना आता रहता है, और वो जैसे वो स्टोरी आगे जाती है, लड़का लड़की भाग जाते हैं और गाने आते हैं, फिर पुलिस आ जाती है और गाने आएंगे, फिर अंडरवर्ल्ड या विलेन आएगा तो और गाने आएंगे, फिर वो बिछड़ेंगे, फिर मिलेंगे, कैसे गाने आएंगे, जो बॉलीवुड में का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का वो म्यूजिकल था ताज एक्सप्रेस।
1: रेडियो ड्रामा से भी अब जुड़े, बीबीसी के लिए आपने रेडियो ड्रामा किया, कितना अलग है वो और थिएटर पे करना?
0: देखिए, ग्रामर अभिनय का तो एक ही रहता है, इमोशंस, करेक्ट, इमोशंस और आइडियाज को आपको प्रोजेक्ट करना है
1: जी,
0: लेकिन प्रोजेक्शन में आपका जो तकनीक है वो थोड़ा सा बदल जाता है। जब आप नुक्कड़ में करते हैं यानी कि सड़क पे करते हैं तो आवाज का प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, आप लोग जब देख रहे हैं उस चकाचौंध रोशनी में, इतनी भीड़ में, इतने शोर शराब के बीच में, तो आपका शरीर का खेल कमाल होना चाहिए, और आवाज कमाल होनी चाहिए। जब आप एक हॉल के अंदर करते हैं जैसे प्रोसिनियम थिएटर करते हैं तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन होता है स्टेज के ऊपर, स्टेज लाइट होता है, ऑडियंस अंधेरे में होती है तो आप साफ दिखते हैं, तो शरीर का बहुत ज्यादा प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आवाज का एक प्रोजेक्शन होता है लेकिन नुक्कड़ की तरह नहीं, वो कम हो जाता है, तो उसके अंदर गांभीर्य आ जाता है। जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है। तो बहुत बड़े बड़े अभिनेता सिनेमा में रहे हैं जो बहुत कम बोलते हैं। दिलीप कुमार को अगर आप फिल्मों में देखें तो उनकी आंखें बोलती थी। अमिताभ बच्चन डायलॉग के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी आंखें बोलती थी,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो आंखों से आप पकड़े जाएंगे। ओम पुरी ने आक्रोश में किरदार किया था जिसमें पूरे फिल्म में उनका कोई एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है। वो जेल में पड़े हुए सड़ रहे हैं, उनपे अपने बीवी को मारने का इल्जाम है जबकि वो निर्दोष है एक्चुअली, तो लॉयर उससे जब भी मिलने आता है वो एक बात नहीं करते, लेकिन उन आंखों से उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी आंखें बता देती है। अब तो सिनेमा में ही है और रेडियो में पूरा ही वाचक, सब कुछ ही ऑडियो है, सिर्फ आवाज से आपको समझना पड़ेगा कि ये आदमी कहां है, किस परिप्रेक्ष्य में है, किस मूड में है, कहां से आया है, कहां जा रहा है, जो बातें कर रहा है उसके पीछे क्या अवचेतन मन में क्या चल रहा है, सब टेक्स्ट सब कुछ उसकी आवाज से निकलनी चाहिए। तो आवाज पे ही पूरा काम करना पड़ता है, फिर सारे इमोशंस को आवाज के जरिए, पिच के जरिए, और आपको एक अंदाजा देना पड़ता है आवाज के जरिए कि आप किस स्पेस में हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस स्पेस में हैं। तो वो सब जो है, किरदार का क्लास क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब आवाज से होता है। तो सोचिए जब आप आंख बंद करके भी आप सुनेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये रेडियो प्ले की खासियत है।
1: बिल्कुल, यहां पर आपकी पसंद का गीत जो आप सुनवाना चाहते हैं।
0: जी, एक बढ़िया गाना है जिसमें क्रांतिकारी सोच भी है लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। एक फिल्म थी राज कपूर की, ये सुबह कभी तो आएगी, वो जो है दोस्तोवस्की की फेमस कहानी क्राइम एंड पनिशमेंट पे बेस्ड थी। उसमें एक ही गाने को दो तरह से गाया गया था। ये सुबह कभी तो आएगी पहले दुखद तरीके से गाया गया था, जब वो सोचते हैं कि ये सुबह शायद कभी नहीं आएगी, फिर अंत में जब वो लड़की रोती है तो वो गाते हैं कि ये सुबह हम ही से आएगी। तो ये जो ये सुबह कभी तो आएगी, ये सुबह हम ही से आएगी, ये गाना जो है मुझे बेहद पसंद है।
1: बिल्कुल, और गीतों के साथ जो आप डिटेलिंग दे रहे हैं वो सुनने में और मजा आ रहा है।

ये आकाशवाणी का हजारी बाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 4:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
3: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
4: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
3: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
4: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
4: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
3: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जाने में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
4: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह सर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
3: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
4: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
3: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
4: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गांव है
3: जी।
4: लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ न शोर है, न ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
3: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गांव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
4: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी, कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?
3: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
4: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ विशेषकर हनले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
3: जी।
4: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
3: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
4: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हंदले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
3: जी जी जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हंडले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हंडले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
4: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
3: श्रोताओ, जैसा कि हमने बताया, हंडले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
4: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोर, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
3: जी,
4: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
3: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हंडले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
4: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
3: जी,
4: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
3: जी,
4: हंडले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है। बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
3: श्रोताओ, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हंडले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
4: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
3: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
4: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
3: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
4: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
3: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
6: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं, समझ में आया बच्चों?
7: यस मैम।
6: हाँ क्या बात है
8: मैम।
6: हाँ बेटी,
8: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
6: बिल्कुल कहा।
8: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
6: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
8: जी पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं

0: ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
3: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
4: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम,
5: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
2: हाँ, जी मैम।
5: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
5: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
0: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
0: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
0: ओह।
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना। इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
0: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
0: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
6: धन्यवाद मैम।
7: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
0: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
7: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा

0: मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी दोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे, किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है, इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ हाँ, ठीक है।
5: समझे? और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ, तैयार है। ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है,
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका? कौन सा तरीका? बताओ।
13: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
5: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
7: सिंचाई टैंक?
5: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े, इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
12: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
6: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव

0: हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें।
1: के मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत, माई भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से दो दो कॉलेजों के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में भी राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल खेलेगा भारत जीतेगा भारत विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यालयों में 27, 29 और 30 अगस्त को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर पत्रकारों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पत्रकारों की सरकारी संस्थानों में एंट्री को लगातार सीमित किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजधानी समेत विभिन्न जिलों में भव्य जुलूस निकाला गया। इस दौरान नाते पाक पेश की गई और पैगंबर हजरत मोहम्मद की जिंदगी, उनकी शिक्षाओं तथा इंसानियत, भाईचारे और अमन शांति के संदेश को याद किया गया। झारखंड समेत देशभर में आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के बास केंद्रीय पंचायत के राजापुर स्थित सेंट टेरेसा पब्लिक स्कूल में मदर टेरेसा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान लोगों ने स्कूली बच्चों से मदर टेरेसा की जीवनी से सीख लेते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने की अपील की। मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि कुछ घंटों में पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में गरज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 5:02 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में।

दोस्तों, भी आपने सुना कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म गोपी किशन से। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों भी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी हमारे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

और दोस्तों भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे ग्रामीण भाइयों को संबोधित करता कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के नसीब के देने से आदाब जोहार नमस्कार। और भाई आज हमने देखा कि हर दिन की तरह आज भी हमें अपन ये कार्यक्रम खेती बाड़ी में ढेर सारी जानकारी लान ले है। ओकर में जरूरी संदेश भी है, गीत संगीत के भी हमें आनंद उठेबे और एक महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें साझा करबे किसान भाई बहन के साथ। एक किसान हथिन रूबिया परवीन, ओकर से बातचीत हमीन कर ली है भिंडी और फरसबीन की उन्नत खेती कैसे करल जाए है। और फिर हो बात करबे हम इनकी जल संरक्षण और आधुनिक खेती पर ड्रॉप मोर क्रॉप के महत्व का है, इस सब पर आज हम इन चर्चा करबे भाई। तो सबसे पहले हम इन शुरू करो ये कि गन्ना में आमतौर पर जो है कौन कौन से बीमारी लगो है एकर बारे में, और मक्का में कौन कौन से बीमारी लगो है, इस सब के बारे में आज हम इन विस्तार से जानबे। तो सबसे पहले देखा कि गन्ना में आमतौर पर तना छेदक जकरा स्टेम बोरर भी बोलल जाए है, जब पौधा छोटा रहो है तभी पौधा के बीच वाला पत्ता सूख जाए है, एकरे बाद में तना में छेद दिखाई दे वो है और पौधा के बढ़वार जो है वो रुक जाए है। तो ये बीमारी से रोके खातिर हम किसान भाई बहन के का उपाय करना चाहिए, सबसे पहले ये कि बढ़िया स्वस्थ और कीट मुक्त बीज गन्ना के चुनाव करे के चाहिए, वैसन गन्ना लगावे के चाहिए, खेत में सूखल और टूटल फूटल पौधा के निकाल देवे के चाहिए, खेत के बराबर देखभाल करना ज़रूरी हो जाए है। और जब ऐसा महसूस हो कि कीट ज़्यादा लग रहा है तो कृषि विज्ञान केंद्र से देखा कि जो हर ज़िला में है आज, तो संपर्क करके कीटनाशक के इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फसल जो है वो सुरक्षित रहे। दूसरी जो बीमारी जो लगल है लगो है वो है दीमक। देखा कि कैसनों फसल के ही बर्बाद कर दे है, दीमक लगे से गन्ना अंदर से सूख जाए है और आसानी से उखड़ भी जाए है। एकर से बचे खातिर खेत में पर्याप्त नमी, एकदम सड़ल गोबर खाद के इस्तेमाल करे के चाहिए और बुआई के समय अनुशंसित दीमक नियंत्रण के उपचार अपनाना चाहिए। अगर हम इन बराबर अपन खेत में सड़ल गोबर के इस्तेमाल करबे तो देखा कि ओकर से हम इनके मिट्टी भी मजबूत होते हैं, बढ़िया होते हैं, उपजाऊ होते हैं और हम इनके फसल जो है वो बचा रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तीसरा जो बीमारी लगो है वो है सफ़ेद मक्खी की बीमारी है, पत्ती से जो है जो रस वो है सब चूस ले है मक्खी, पत्ती पीला पड़ जा है और चिपचिपा पदार्थ और बाद में काली फुबंदी दिखाई देवो लगो है। तो ये बीमारी के लक्षण है, अगर किसान भाई बहन के ऐसा लगे कि ये बीमारी लग रहा है तो एक तुरंत जो है उपचार करना चाहिए और एक रोकथाम के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि जहाँ भी पौधा जो है सूख रहा है सड़ रहा है ओकरा जो है तुरंत निकाल के फेंक देवे के चाहिए। और साथ ही साथ देखा कि खेत में खरपतवार हमेशा नियंत्रण रखे के चाहिए, अत्यधिक नाइट्रोजन देवे से बचना चाहिए। किसान भाई बहन अपन फसल के बढ़िया करे के चलते फसल में चमक पैदा करे के चलते नाइट्रोजन के इस्तेमाल करो थी, जेकर से क्या हुआ कि फसल भी जो है वो बर्बाद हो जाए और ये सब जो है ये एकर प्रमुख बीमारी है। और फिर यह कि लाल सड़न, एकर पहचान ये है कि पत्ती पीला होकर सूखो लगो है, गन्ना के चीर पर अंदर से लाल रंग दिखाई देवो लगो है। जब किसान भाई बहन गन्ना के चीरो होते हैं तो देखबा कि ओकर में लाल धारी धारी जो है निशान बन जाए है, तो समझा कि जो है ओकर में लाल सड़न जो है वो बीमारी लग रहा है और एकर से बदबू जो है आवो लगो है। जब तू गन्ना के काटबा देखो और ओकरा सुनबा तो ओकर से कहा है कि बदबू आवो लगो है, तो समझा कि वो लाल सड़न जो है हम फसल में लग रहा है। एकर से बचाव के जो उपाय है वो ये है कि रोग मुक्त गन्ना लगाना अच्छा हो वो है, और दूसरा है कि ऐसन पौधा जेकर में बीमारी लग गया है ओकरा उखाड़ के फेंक देना चाहिए तीसरा उपाय ये है कि एक ही खेत में गन्ना बार बार लगावे से बचना चाहिए, ये खातिर फसल चक्र अपनाना जरूरी हो जाए। किसान भाई बहन देखा कि कोई भी फसल अगर तो फसल चक्र अपने बा तो हर फसल तो हर जगह अच्छा हो, तो साथ ही साथ मिट्टी के जो उर्वरा शक्ति है वह बनल रह। तो दूसरी बीमारी है स्मट, एकर पहचान ये है कि गन्ना के बीच में बीच से काला कोड़े जैसन ढांचा निकल जाए, पौधा कमजोर और पतला हो लगो है। एकर से जो बचाव के उपाय है वो ये कि इस बीमारी से बचे खातिर अच्छी बीज के प्रयोग करना चाहिए। जे पौधे में बीमारी लगल हो ओकरा उखाड़ के फेंक देना चाहिए और खेत से पानी की आसानी से निकले खातिर जगह होना चाहिए। देखा कि अगर हम इन खेत में पानी निकासी की व्यवस्था अगर करो ये तो देखा कि हम इनके हर फसल जो है वो सुरक्षित रहते हैं। और तीसरी जो बीमारी है वो ये है कि ग्रासी शूट रोग, एकर पहचान ये है कि एकर ढेरे मनी पतला तय निकलो है, पौधा घास जैसे दिखाई दे वो है और गन्ना के जे बढ़वार हो वो है वो धीरे धीरे जो है वो रुक जाए है। एकर उपाय है कि जे पौधा रोगग्रस्त है ओकरा उखाड़ के फेंक देना चाहिए और अच्छी बीज का इस्तेमाल जो है वो करे के चाहिए। तो ये तो हो गया गन्ना के बीमारी और ओकर कीट के बारे में और ओकर जो है कैसे बचाव करना चाहिए ओकर बारे में। अब हमें थोड़ा सा मक्का की खेती पर भी और ओकर बीमारी पर और ओकर जो है कीट है ओकर पर भी हमें बात कर लिया कि देखा कि मक्का में लगे वाले कीट में फार और मिर्स वार्म तथा छेदक तना छेदक दीमक, ये तीन बीमारी प्रमुख है। रोग में है कि एकर में तना सड़न स्टाल्क रोग, दूसरा है पत्ती झुलसा रोग लीफ ब्लाइट और तीसरा है कि रस्ट। ये तीन बीमारी जो है मक्का में खास करके लगो है। अगर इन तीन बीमारी के अगर हमें पहचान कर लीजिए तो हमें के फसल जो है वो सुरक्षित रहते और हमें के आमदनी भी कहे कि आय भी जो है वो मजबूत होते हैं। कोई भी कीट या रोग के पहचान करे बिना दवा के इस्तेमाल से बचना चाहिए। और अगर जहाँ समझ में ना आवे हुमा जो है कृषि विज्ञान केंद्र से या जो विशेषज्ञ हथे इन खेती बाड़ी के उनखर से सलाह लेना जो है वो जरूरी हो जाए है। अगर हम इन ऐसा करो तो हम इनके फसल जो है वो सुरक्षित रहते हैं। तो देखा कि हम इन तो अभी गन्ना और मक्का की खेती के बारे में ओकर बचाव के बारे में और कीट नियंत्रण के बारे में हमें बात कर लिए। हम इन आगे भी बात करबे लेकिन पहले सुनो ये कुछ संदेश और गीत संगीत के आनंद लीजिए।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अभी हमने जरूरी संदेश सुन लिया और साथ ही साथ गीत संगीत के भी हमें आनंद ले लिया। अब हमें चलो ये एक जानकारी की तरफ, और जानकारी है कि भिंडी और फ्रसबीन के उन्नत खेती जो है कैसे करल जा थी। एक महिला किसान हथिन, युवा किसान हथिन, और अभी खेती शुरू कर ले उनका ज़्यादा दिन ना भले, वो अपन अनुभव जो है हम इनके साथ साझा करते थे ताकि जो किसान हम इनके सुन रहे थे कार्यक्रम, वो भी एक से प्रेरित होके वो भी खेती की तरफ आए थीं और बढ़िया खेती करके अपन आमदनी के जो बढ़ा सको थीं। तो आज बात कर रहे हम इनकी भिंडी की उन्नत खेती और साथ ही साथ फरसबीन की खेती जो है वो कैसे करल जाए। जानकारी दे रही थी रुबिया परवीन हथिन, और इनका से जो बात कर रही थी वो हथिन नसीम अहमद फलाही। तो सुनी जाइए बातचीत।
1: आज हम कंडेर पंचायत के दरहा बेड़ा गांव आए हुए हैं, और हम बात करेंगे एक युवा महिला किसान से जो अपने खेत में भिंडी, फरसबीन, मक्का और धान की अच्छी खेती कर रही है। नाम है इनका रुबिया परवीन। तो रुबिया परवीन, सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, साथ ही आदाब, जोहार, नमस्कार।
2: जोहार, आदाब, और हमारी तरफ से सभी भाई बहनों को जोहार।
1: हमारे श्रोताओं को सबसे पहले आप अपना परिचय दें।
2: मेरा नाम रुबिया परवीन है, कंडेर पंचायत के दरहा बेड़ा की रहने वाली हूँ।
1: आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है?
2: मेरी शिक्षा बीए पास हूँ।
1: आप बीए पास हैं और आप जो है खेती कर रही हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये आप जो है ऐसी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक साबित होंगी जो घर में बैठी हुई है कि आप भी जो है वो खेती करें। आप जो है अभी आप अपने खेत में जो है भिंडी की फसल आप लगाए हुए हैं, फ्रसबीन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि खेत की तैयारी आप कैसे करती हैं।
2: भिंडी की खेती के लिए खेत की जुताई 2 से 3 बार करते हैं। पहले जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करते हैं, दूसरी बार मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए कल्टीवेटर से करते हैं। जैसे मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाती है और आखिर में पाउडर चलाकर मिट्टी को और महीन करते हैं, इससे फसल लगाने में आसानी होती है।
1: बीज का चुनाव आप कैसे करते हैं?
2: भिंडी की अच्छी फसल के लिए बीज का चुनाव महत्वपूर्ण है। अच्छी फसल के लिए प्रमाणित बीज का ही इस्तेमाल करते हैं और प्रमाणित बीज भंडार से ही खरीदते हैं।
1: आप जो है पुराने बीज का इस्तेमाल नहीं करती हैं, उससे क्या होता है उसका उसकी पैदावार जो है वो कम हो जाती है। आप जो है प्रमाणित बीज ही का इस्तेमाल करते हैं,
2: प्रमाणित बीज भंडार से खरीदते हैं।
1: कौन सी बीज आप लगाती हैं?
2: भिंडी की खेती और बीज का चुनाव मौसम के अनुसार करने से अच्छा रहता है, इससे फसल अच्छी होती है। इधर की जलवायु के अनुसार अर्का अनामिका सबसे अच्छी होती है। वैसे और भी बीज हैं, जैसे अर्का अभय, प्रभानी क्रांति, पूसा सवानी है जो अच्छी उपज देती है। देखिए, इधर की जलवायु के अनुसार अर्का अनामिका ही लगाते हैं, कम समय में अच्छी उपज देती है और फसल भी अच्छी होती है।
1: आप कौन सी बीज आप इस्तेमाल करती हैं?
2: अर्का अनामिका ही इस्तेमाल करते हैं।
1: ये क्यों आप इस्तेमाल करती हैं? इसलिए कि जो है ये बीज अच्छी होती है, इसकी पैदावार अच्छी होती है, इसकी फसल अच्छी होती है।
2: हाँ, इसकी फसल अच्छी होती है, इसलिए इसका प्रयोग करते।
1: खेत तैयार करते समय कौन सी खाद आप डालते हैं?
2: खेत की जुताई करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद और कम्पोस्ट डालते हैं। अगर आप 1 एकड़ में भिंडी की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 टन गोबर की खाद डालने से अच्छा रहता है। इसके बाद मिट्टी इनकी जांच के बाद फास्फोरस और पोटास भी डालते हैं। इसके खाद डालकर 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को और भुरभुरा करते हैं।
1: भिंडी की बुआई का सही समय क्या है?
2: देखिए, भिंडी का फसल तो किसान सालों भर कर लेता है, लेकिन सही सही जो है वह गर्मी के लिए फरवरी मार्च में और बरसात के लिए जून जुलाई में लगाते हैं।
1: अभी जो आप फसल लगाई है वो कब लगाए हैं? मई में लगाए हैं कि जून में लगाए हैं कि जुलाई में लगाए हैं? कब लगाए हैं आप?
2: जुलाई में।
1: इससे आप जो है कितनी फसल अभी तक आप तोड़ चुकी हैं?
2: 2 बार तोड़ चुके हैं।
1: जब आप बीज लगाते हैं तो बीज की दूरी क्या होती है?
2: कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए, इससे पौधा अच्छी तरह फैलता है।
1: यानी पौधा से पौधा की दूरी कम से कम जो है 20 से 30 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी जो है वो 45 से 60 सेंटीमीटर और
2: हाँ, कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए ताकि इससे पौधा अच्छी तरह फैल सके।
1: कितनी गहराई में आप इसको लगाते हैं पौधा को?
2: 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा करते हैं।
1: सिंचाई की क्या व्यवस्था आपके पास है?
2: बुआई के बाद पहले हल्की सिंचाई करते हैं, गर्मी के दिन में कुआं से पानी पटाते हैं और बरसात में तो ऐसे ही नमी रहती है, बाकी ठंडा में भी कुएं का इस्तेमाल करते हैं।
1: गर्मी के दिनों में जो है आप इसमें 4 से 5 सिंचाई आप करते हैं?
2: हाँ, 4 से 5 बार करते हैं।
1: तुराई कब करते हैं? कौन कौन सी कीट इसमें लगती है?
2: भिंडी में ज्यादातर तना छेदक सफेद मक्खी लगती है, इसके लिए खेत को बार बार देखभाल करते हैं। जहाँ लगता है कि यहाँ कीड़े लग रहे हैं तो उसको तोड़कर फेंक देते हैं और पीले चिपचिपे ट्रेप लगाते हैं, और इसमें सफेद मक्खी जिसमें पत्तियों के नीचे छोटे सफेद कीट लगते हैं, माइट जिससे पत्तियों पर पतला जाल और पत्तियां पीला पड़ने लगती है, इसके लिए इमिडाक्लो क्रीड या थाइमोथोकसाम एबामेकिटन भी डालते हैं।
1: इसकी तुराई कब करते हैं?
2: भिंडी बोने के 45 से 60 दिन में तुराई शुरू कर देते हैं, और भिंडी जब नाजुक होती है उसी वक्त तोड़ना अच्छा होता है, बड़ा होने से उस कठोरता और रेशे आ जाते हैं।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो है भिंडी कब तोड़नी चाहिए, यानी भिंडी किस हाल में हो तो उसकी उसकी तुराई होनी चाहिए, ताकि जो है उसकी मार्केट में बाजार में जो है अच्छी कीमत मिले। तुराई का सही समय क्या है?
2: तुराई का सही समय सुबह या शाम का समय ठीक होता है।
1: तुराई इसकी कब करते हैं?
2: भिंडी बोने के 45 से 60 दिन में तोड़ना शुरू कर देते हैं, और भिंडी जब नाजुक होती है उसी वक्त तोड़ना अच्छा होता है।
1: तोड़ने का कोई तरीका भी, कैसे भिंडी को तोड़ा जाता है?
2: सबसे पहले तो जो नाजुक और छोटे होते हैं उसकी तुराई होती है, तोड़ने के लिए चाकू या कैंची का प्रयोग करते हैं और हाथ में प्लास्टिक पहनकर तोड़ते हैं।
1: ये तो भिंडी की खेती के बारे में जो है बात हम कर रहे थे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं फ्रेशबीन की खेती के बारे में। तो फ्रेशबीन की खेती की खेत की तैयारी कैसे करते हैं?
2: फ्रेशबीन की खेत की तैयारी, इसके लिए सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरह जोतते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद सड़ी हुई गोबर का खाद डालते हैं, फिर उसको अच्छी तरह बराबर करते हैं ताकि पानी आसानी से निकल जाए।
1: फ्रेशबीन की बुआई का सही समय क्या है, कब इसको बोना चाहिए ताकि वो अच्छी फसल मिले?
2: फ्रेशबीन आम तौर पर अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च में लगाते हैं, ये बुआई का सही समय है।
1: बीज से बीज की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी क्या होनी चाहिए?
2: सबसे पहले तो प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करते हैं, कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए, और जो लतेदार होती है उसको सहारा दिया जाता है।
1: अभी आपने कहा कि कतार से कतार की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर वो होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि पौधा को फैलने में आसानी होती है, जितना दूरी होगी पौधा उतना आसानी से फैलेगा और उसकी फसल भी अच्छी होगी। इसमें आप कौन सी खाद आप देते हैं?
2: जब खेत तैयार करते हैं तो जोतते हैं उसी समय जैविक खाद देते हैं। इसमें जितना हो सके जैविक खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए, रासायनिक खाद के ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए।
1: इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और कौन सी कीट का प्रकोप होता है?
2: इसमें ज्यादातर माहू, सफेद मक्खी, फल छेदक, लाल मकड़ी जैसे कीट लगते हैं। बीमारी में रस्ट है, जड़ गलन है, मोजेक वायरस है।
1: निराई गुड़ाई आप कैसे करते हैं?
2: जब पौधा छोटा होता है तो इसकी निराई गुड़ाई जरूरी होती है, 2 से 3 बार इसकी निराई गुड़ाई करते हैं।
1: निराई गुड़ाई नहीं करने से क्या होता है कि यह घास फूस जो भी होता है वो फसल को जो है दबा देता है, और जितनी तेजी से जो है फसल को बढ़ना चाहिए, पौधे को बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाता है। बोने के कितने दिनों के बाद जो है इसको तोड़ते हैं?
2: पहली तुराई फसल बोने के 45 से 60 दिन के बाद से शुरू कर देते हैं।
1: कौन सी मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी होती है?
2: फ्रेशबीन की खेती के लिए दोमट मिट्टी जिसमें पानी आसानी से निकल जाता है अच्छी होती है।
1: और अंत में हमारे श्रोताओं को कुछ आप संदेश देना चाहती हैं?
2: हम यही कहना चाहेंगे कि जो महिला खेती करती हैं वह जागरूक हों, अपनी खेत के बारे में पूरी जानकारी रखें और नई नई मशीनों का ही इस्तेमाल करें।
1: तो ये थी रुबिया परवीन जो हमारे श्रोताओं को फ्रेशबीन और भिंडी की उन्नत खेती के बारे में बता रही थी। हमें आशा विश्वास है कि हमारे श्रोता जो हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं इनकी बातों को अच्छी तरह से सुने होंगे और जिस तरह से ये खेती करती हैं या जिस तरह से इनका अनुभव जो है हमारे सामने आया है, महिला किसान भी उसी तरह से जो है इनके अनुभव से फायदा उठाते हुए इस तरह खेती करने की कोशिश करेंगे। रुबिया परवीन, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए और हमारे श्रोताओं को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: तो ये हथियन रुबिया परवीन जे अपना अनुभव साझा करोल थीन हम इनके साथ और बतावल थीन कि जे भिंडी की खेती और फरसबीन की खेती जो है कैसे करल जाए और हम इनके जे गांव में जो है महिला किसान हथिन वो कैसे खेती करके अपन आमदनी जो है वो बढ़ा सको थीन। अब देखा कि एक चर्चा बातचीत हम इन करबे कि जल संरक्षण और आधुनिक खेती में ड्रॉप मोर क्रॉप के महत्व का है। तो सबसे पहले तो हम इन किसान भाई बहन के ये बता दिए कि ये जो है ड्रॉप मोर क्रॉप जो है का हो वो है। एक मतलब ये है कि ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जो है एक बोलल जाए। आज देखा कि खेती के क्षेत्र में नई नई तकनीक आ गया है और किसान भाई बहन खासकर जो बड़ किसान हथिन वो अभी आधुनिक तकनीक के जो है इस्तेमाल करके खेती में जो है बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर रहे थे और अपनी आमदनी भी जो है बढ़िया कर रहे थे। तो एक में ये कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि ड्रिप सिंचाई जो है जगह हमें ड्रिप इरिगेशन बोलो ये तो ओकर से भी किसान भाई बहन खेती करके बहुत कुछ जो है वो बचा सको थे। पहले तो ये कि पानी की बचत हो है, दूसरा ये कि खरपतवार की आशंका जो है वो कम हो जाए है, ओकर से निकालने कोड़ाई जो हमें करो ये ओकर से हमें बच जाइए और तीसरा फायदा ये है कि जो ड्रम पानी के जो ड्रम हुए ओकरे में कीटनाशक दवा डाल दा तो वो दवा का है कि सीधा सीधा जो है वो पौधा के जड़ तक जाए और जो हमें ऊपर से छिड़काव करो ये ओकर से हमें बच जाइए। तो एकर में जो है लेबर जो किसान के लेबर चार्ज भी बच जाए और देखा कि एक साथ किसान भाई बहन जो है कितना सारा काम जो है वो कर सको थीन। तो एकर में ये पानी की बचत भी वो है, पानी सीधा पौधा की जड़ तक पहुँचो है, दूसरा फायदा ये है कि उत्पादन बढ़ो है, फसल की ज़रूरत पर पानी मिले से उपज बढ़ो है, जितना पानी की फसल के पानी की ज़रूरत हो वो है, पानी की बर्बादी भी ना हो वो है, ये अगर पद्धति हम इन किसान भाई बहन अपना वो ये। तो तीसरा फायदा ये है कि पानी की बर्बादी कम हो वो है, चौथा ये कि किसान की लागत जो है वो कम हो वो है। देखा कि एकर में हर तरह से न मजदूरी की ज़रूरत पड़ो है न अपन से उतना खटे की भी ज़रूरत ना हो, एक बार जो है तो मेहनत कर देला सिंचाई करे में पानी की बर्बादी भी ओकर में ना हुआ है, खर पतवार भी कम हुआ है नए के बराबर। और एकर में ये कि भूजल संरक्षण भी एकर में हुआ है और छठा ये है कि उर्वरक की बढ़िया उपयोग एकर में हुआ है, जो हमें उर्वरक डालो ही है तो पानी में डाल दा वो धीरे धीरे करके जो है वो टपक सिंचाई के माध्यम से पौधा की जड़ तक जाए और वो धीरे धीरे जो है ओकर में असर करो है, एकर से क्या है कि बर्बादी भी कम हुआ है। तो ये तो हल है भाई ड्रॉप मोर क्रॉप के महत्व के बारे में। हमरा उम्मीद है कि जो किसान भाई भी हम इनके अपन कार्यक्रम खेती बाड़ी सुन ले हथिन, ड्रॉप मोर क्रॉप पद्धति से जो है खेती करते थीन और अपन हर तरह से जो है वो पैसा के बचाव करते थीन, समय के बचाव करते थीन और एकर में मेहनत भी कम लगो है। देखा कि एक साथ जो है किसान कई सारा काम जो है वो कर सको थीन कि इन्हें तो मशीन चला देला पानी जो है टपक सिंचाई के माध्यम से सिंचाई भी हो रहा लो और तो अपन दूसर काम भी करा। तो ये तो होल है ड्रॉप मोर क्रॉप के महत्व के बारे में। अब हम इनके पास जो समय बचल है थोड़ा मोड़ा ओकर में हम इन किसान भाई बहन के बता दिए कि आज के मौसम की जानकारी और बाजार भाव का रहल है। तो सबसे पहले तो ये है कि देखा कि लाल आलू जो है 20 से 25 रुपये प्रति किलो, सफ़ेद आलू 15 से 20 रुपये प्रति किलो, प्याज जो है 50 से 60 रुपये प्रति किलो, फूलगोभी 70 से 80 रुपये प्रति किलो, पत्ता गोभी की बात करिए तो 40 से 45 रुपये प्रति किलो, पटल 35 से 40 रुपये प्रति किलो, भिंडी 20 से 25 रुपये प्रति किलो, नेनुआ 20 से 25 रुपये प्रति किलो, कद्दू 20 से 25 रुपये प्रति किलो, हरा मिर्चा जो है 60 से 70 रुपये प्रति किलो, शिमला मिर्च 80 से 90 रुपये प्रति किलो, गाजर 35 से 40, बीट 45 से 50, बीन्स 30 से 35, मूली 25 से 30 रुपये प्रति किलो, धनिया पत्ता 90 से 100, अदरक 100 से 130, खीरा 35 से 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर की बात करिए तो 35 से 40, लाल साग 25 से 30 और पालक साग 25 से 30 रुपए प्रति किलो, ये है बाजार भाव। अब चलते चलते हमें जो है आज के मौसम और कल के मौसम की जानकारी भी किसान भाई बहन के दे दिए। देखा कि आज के जो तापमान रहा अधिकतम है वो 31 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम जो है कम से कम वो है 25 डिग्री सेल्सियस। नमी में मौसम में जो नमी है आर्द्रता वो है 82%, और कल के जो है अनुमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम जो है 24 डिग्री सेल्सियस, और मौसम में जो नमी है आर्द्रता वो है 95%। और मौसम पूर्वानुमान में देखा कि गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, तो किसान भाई बहन मौसम के देखते हुए अपन खेती बाड़ी के काम करते थे। तो यह साथ है जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से हमारा नसीम की अनुमति द जोहार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य

समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। मेरा युवा भारत माई भारत झारखंड के निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के 16 महाविद्यालयों में युवाजन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में युवाओं को विकसित भारत और 2036 ओलंपिक को लेकर अपने सुझाव देने का मौका मिलेगा। युवा QR कोड के जरिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परीक्षा सुधार समिति से JSSC के प्रभारी अध्यक्ष प्रशांत कुमार को तत्काल हटाने और उनकी भूमिका की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। श्री मरांडी ने सरकार से परीक्षा सुधार समिति में स्वच्छ छवि वाले पारदर्शी और ईमानदार सदस्यों को शामिल करने और भर्ती परीक्षाओं में

तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्या आपके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है? क्या आपके अंदर प्रतिभा है लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल रही? क्या आप सोचते हैं कि आखिर आज के समय में सफलता के लिए क्या चाहिए, डिग्री, अनुभव या स्किल? तो दोस्तों, इन तीनों शब्दों का सही संतुलन ही सफलता की असली चाबी है। आज का जो समय है वह काफी तेजी के साथ बदल रहा है। नई तकनीकें आ रही हैं, रोजगार के नए क्षेत्र बन रहे हैं और काम करने के तरीके आज बदलते जा रहे हैं। ऐसे समय में आज वही युवा साथी आगे बढ़ेगा जो केवल पढ़ेगा नहीं बल्कि सीखेगा, अपनी स्किल को निखारेगा और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को तैयार करेगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है वर्तमान समय में युवाओं के व्यक्तित्व एवं करियर विकास में स्किल मैनेजमेंट की भूमिका। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जानते हैं कि स्किल मैनेजमेंट क्या है और यह हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है। दोस्तों, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा

दोस्तों, अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्किल मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, स्किल मैनेजमेंट का सीधा अर्थ है अपनी क्षमता को पहचानना, सही कौशल को सीखना, उसे लगातार बेहतर बनाना और सही समय पर उसका उपयोग करना। मान लीजिए हमारे

0: दो युवा हैं, दोनों के पास एक जैसी डिग्री है, लेकिन एक युवा प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकता है, कंप्यूटर और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल जानता है, टीम में काम कर सकता है, समस्या का समाधान निकाल सकता है और सही समय का प्रबंधन करता है, तो रोजगार की दुनिया में उसकी संभावनाएं निश्चित रूप से बेहतर हो सकती हैं। इसलिए आज सवाल केवल यह नहीं है कि हमने क्या पढ़ा है, बल्कि यह भी है कि हम कर क्या सकते हैं। दोस्तों, व्यक्तित्व केवल सुंदर दिखने या अच्छी अंग्रेजी बोलने का नाम नहीं है। एक मजबूत व्यक्तित्व का अर्थ है आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, अनुशासन, प्रभावी संवाद, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व और दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार। जब कोई युवा कम्युनिकेशन स्किल सीखता है तो उसके विचारों में अस्पष्टता आती है। जब वह टाइम मैनेजमेंट सीखता है तो वह अपने समय को बर्बाद करने के बजाय लक्ष्य की ओर लगाता है, और जब वह लीडरशिप स्किल सीखता है तो उसमें जिम्मेदारी लेने और दूसरों को साथ लेकर चलने की क्षमता विकसित होती है, और जब वह प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है तो कठिनाइयों से भागने के बजाय उसका समाधान खोजता है। दोस्तों, आज करियर चुनने का अर्थ केवल डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या सरकारी नौकरी तक सीमित रहना नहीं है। आज डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, कंटेंट क्रिएशन, ई कॉमर्स, उद्यमिता और अनेक क्षेत्र युवाओं के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं, लेकिन अवसर उन्हीं के लिए उपयोगी बनते हैं जो उनके लिए तैयार होते हैं। इसलिए युवाओं को अपने करियर के लिए 3 बातें समझनी होंगी। पहली, मैं क्या करना चाहता हूं, दूसरी, मैं क्या कर सकता हूं, और तीसरी, मुझे क्या सीखना चाहिए। इन 3 सवालों के जवाब आपको अपने करियर की दिशा तय करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में युवाओं को विशेष रूप से इन कौशलों पर काम करना चाहिए या सीखना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप और जैसे कार्य। दोस्तों, आज स्मार्टफोन केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही मोबाइल सीखने, प्रशिक्षण लेने और करियर बनाने का माध्यम भी बन सकता है। युवा ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, शैक्षणिक वीडियो, डिजिटल पुस्तकों और विभिन्न प्रशिक्षण संसाधनों के माध्यम से अपनी कौशल को लगातार विकसित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ इंटरनेट होना पर्याप्त नहीं है, इंटरनेट का सही उपयोग होना जरूरी है। दोस्तों, स्किल मैनेजमेंट से संबंधित हम और सारी ढेर सारी जानकारियां आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उसके पहले इसी से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर आइए सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है, तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की क्या भूमिका होती है, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारी ओर से अशोक कुमार।
1: कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ
2: नमस्कार सर। नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने कहा सर कि कंप्यूटर एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसी से संबंधित हमारा आज का जो टॉपिक है इसी विषय पर आधारित है कि तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की क्या भूमिका है। जाहिर से बात है कि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था तो लोग समझते थे पता नहीं इसमें काम करना आसान होगा या कठिन होगा, है ना, तो लगा कि मैनुअल से सीधे वो कंप्यूटर की ओर जा रहे थे तो लग रहा था कि जो है बहुत टफ है, बहुत दिक्कत है। लेकिन जब उस कंप्यूटर से काम करना शुरू किया तो लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा है, जहाँ बहुत सारे ढेर सारे हिसाब किताब रखने पड़ते थे, है ना, कागज, ये सारा आप कंप्यूटर में आपका सेव रहता है, एक क्लिक के साथ सारा सब कुछ आप देख,
2: सब कुछ मिल जाता है,
1: सब कुछ मिल जाता है जी, तो बहुत ही आसान है। तो अभी क्या है कि तकनीक में परिवर्तन आ रहा है, बदलते युग में, तो कंप्यूटर जाहिर से बात है पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, तो क्या क्या संभावनाएं हैं कि और बदलाव हो रहा है कि बदलाव, और उसको किस प्रकार से जो है एडजस्टमेंट हमारे साथ होगा जी, इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से।
2: एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कंप्यूटर, हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो एक बात आती थी कि कंप्यूटर का एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, प्रयोग कहाँ कहाँ है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद दुनिया का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कंप्यूटर के बगैर किया जा सकता हो।
1: जी बिल्कुल,
2: आज
1: सही,
2: आज इसका हर चीज में उपयोग है, हर चीज में इसका एप्लीकेशन है। तो हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे अविष्कार, मीन्स जो हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर, आज का जो कंप्यूटर का प्रयोग है बदलते तकनीकी युग में या टेक्नोलॉजी युग में, तो हम लोग कहें कि ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कि ऐसे 9 टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं जिसने दुनिया के पूरे परिदृश्य को बदल करके रख दिया। जैसे हम लोग सुनने के लिए सुनते हैं कि सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि टेलीफोन हुआ,
1: हाँ जी,
2: प्रिंटिंग प्रेस हुआ,
1: हाँ जी,
2: इसके बाद स्टीम इंजन हुआ, बल्ब हुआ, एरोप्लेन हुआ, इसी कड़ी में एक कंप्यूटर आया। ठीक है, तो कंप्यूटर जब आया तो उस समय लगा था कि ये एक अलग फील्ड है, जैसे हम लोग बात करते थे कि ये भौतिकी का, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र है, ये रसायन विज्ञान का क्षेत्र है, लेकिन जब कंप्यूटर आया तो लगा कंप्यूटर विज्ञान एक अलग क्षेत्र है, लेकिन आज के समय में आप देखिए तो शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग नहीं है।
1: बिल्कुल,
2: और अभी जो रिसेंट समय चल रहा है जिसमें कि कंप्यूटर में एक और एडवांस स्टेज में जा करके जो हम लोग आए दिन सुनते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो ऐसा किया कि कंप्यूटर के पूरे, मतलब कंप्यूटर के द्वारा पूरे दुनिया के परिदृश्य को ही बदल दिया।
1: सही है,
2: मतलब मनुष्य की जो हम लोग बोलते थे कि मनुष्य का एक अपनी जो कृत्रिम बौद्धिकता जो हम लोग बात करते हैं कि उसका अपना इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर ने एक टर्म उसमें आर्टिफिशियल ऐड करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के उस बौद्धिक क्षमता को भी खुद से एनालाइज करने लगा, खुद से बनाने लगा, खुद से अब समझने लगा और खुद से मनुष्य को ही उसका समाधान भी देने लगा, सॉल्यूशन भी देने लगा।
1: लेकिन ये हमें चाहिए जो AI पद्धति का यूज कर रहे हैं वो उसका उपयोग करे, बहुत को उसका दुरुपयोग भी कर देते हैं, कहां का फोटो किसको अटैचमेंट करके उसको बदनाम कर देते हैं, तो ये भी थोड़ा सा है, परेशानी का सबब है।
2: उसमें क्या है कि हर चीज का ना, जैसे हर टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी आइंस्टाइन ने मान लीजिए कि एटम को दिया था, न्यूक्लियर एनर्जी को दिया था, तो ये सोच थी कि एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया को इतनी ऊर्जा देगी कि बिजली की कमी, ये सारी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, ठीक है, जो पूरा विनाश का कारण हो सकता है। ठीक उसी तरह AI का बहुत उपयोग है, अगर उसको रचनात्मक तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से अगर यूज किया जाए तो यूज है, लेकिन जैसा कि आपने कहा अगर उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से लोग सोचने लगे तब तो उसका बहुत ही बड़ा दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं आज यहाँ हजारीबाग में, ठीक है, और आपको AI के थ्रू क्या अभी आपका फोटो, आपका वीडियो बना दिया कि नहीं, तो व्यक्ति जो है थे और ये काम कर रहे थे,
1: यही दुरुपयोग,
2: ये उसका दुरुपयोग है। किसी के भी फोटो को मॉर्फ कर लेना, व्यक्ति नहीं है उसको वहां पे प्रेजेंट कर देना, जो व्यक्ति नहीं कुछ कर रहा है उसको उस चीज में इन्वॉल्व करके दिखा देना, कुछ दुरुपयोग है, लेकिन अगर इसका रचनात्मक तरीके से यूज किया जाए तो AI वरदान साबित हो सकता है समाज के विकास में, देश के विकास में और पूरे विश्व के विकास में।
1: अच्छा, AI की तो बात हो गई, अब कुछ और भी ऐसा तकनीक, ऐसा लगता है कि कुछ और भी आने वाले हैं AI के अलावा, या फिर प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके बारे में
2: क्या है? जैसे हम लोग प्रेजेंट देख रहे
1: हैं AI, अभी AI
2: बहुत सारे स्टेज हैं। AI अभी चूंकि हम लोग एक बेसिक वे में कहें, अगर बहुत डीप में नहीं जाते हैं तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि AI का बहुत सारा जो अलग अलग स्टेज से गुजर रहा है उसमें अभी जो है हम लोग AI के बेसिक्स पे हैं जिसका यूज किया जा रहा है। अभी आया है जैसे जेनरेटिव AI, जेन AI की बात है, मतलब वो क्या है कि खुद आप, मतलब आपको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है, वो आप ही के द्वारा दिए गए डेटा से या आपके द्वारा किए गए कार्य से खुद को ट्रेन कर रहा है, आप नहीं ट्रेन कर रहे हैं उसको। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज सिस्टम पे इंटरनेट पर आप बैठे, जैसे कंप्यूटर के बाद जब इंटरनेट आया 1969 में, पीसी आया, पर्सनल कंप्यूटर की बात आई, पर्सनल कंप्यूटर के बाद जब धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते 1969 में पहला नेटवर्क बना अर्पानेट, उसके बाद जब इंटरनेट का विकास हुआ लार्ज स्केल पर, ठीक है, तो इंटरनेट के यूज से क्या हुआ, आज भी हम लोग बैठते हैं, जैसे आप सिंपल सोचिए अमेज़न फ्लिपकार्ट ये सब पे कुछ ऑर्डर

0: करते हैं। आपने जो चीज ऑर्डर किया, जिस चीज को देखा, नेक्स्ट टाइम से जब आप ओपन करेंगे तो देखेंगे उसी तरह की चीजें आपके सामने आना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। ठीक है,
1: ये तो प्रचलन है,
0: ये तो आप नहीं खोजे फिर।
1: हाँ,
0: ठीक है, सही। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो समझा कि ये व्यक्ति इन चीजों को लाइक
1: इंटरेस्टेड है,
0: तो इनको इस तरह का चीज दिखाया जाए।
1: और जैसे एक छोटे से अपने डिवाइस पर भी किसी चीज को सर्च कर रहे हैं,
0: सर्च कर रहे हैं,
1: एक बार आपने खाने का कोई रेसिपी अपने
0: देखिए उसका खोज किया, रिलेटेड
1: फिर उसी से रिलेटेड सारा आ गया। एक बार आपने किसी रोग से संबंधित किया, फिर उसी रोग से संबंधित सारे आ गए।
0: अभी अभी का जो सिचुएशन है, आप अगर स्मार्टफोन लेकर के बैठे हैं तो आप नहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं ना आपस में, अपने मित्र के साथ, अपने परिवार में,
1: तो उसको भी
0: घर में, उसको भी वो सुन रहा है। और जैसे ही नेक्स्ट आप खोलेंगे कोई वैसा साइट, ठीक है, आप फेसबुक पर जाइए तो देखिएगा कि उसी से रिलेटेड चीजें आपके सामने आना प्रारंभ हो गया। तो हम लोग को लग रहा है कि अरे मोबाइल तो मेरा बस, अभी हम बात थोड़े ही कर रहे हैं या हम इस पे सर्च थोड़े कर रहे हैं, हम तो सिर्फ रखे हुए हैं, बंद है,
1: लेकिन उसको वो
0: सुन रहा है हर कुछ। तो है क्या कि अभी एआई इस स्टेज, अभी एडवांस स्टेज तो बाकी है, फिर तो सोचिए कि अभी आपके द्वारा बात किए गए हर चीज को सुन करके, देख करके और खुद से खुद को ट्रेन कर रहा है वो, उसको ट्रेनिंग भी आप नहीं दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ट्रेन कर रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है, कैसे करना है, इन व्यक्ति को क्या चीज दिखाना है। मान लीजिए कोई चीज आपके सामने आ रहा था, आप उस पे ज्यादा देर नहीं रुके, आया सामने और आप उसको पास कर दिए, स्क्रॉल कर दिए, हटा दिए, एआई खुद से समझ गया कि इस व्यक्ति को इस तरह की चीजें नहीं पसंद है, तो इनको ये चीज नहीं दिखाना है। कोई चीज आया आपके सामने, उस पर आप 2-4-10 सेकंड रुके, देखे, क्लिक किए, वो समझ गया, वो इनको इस तरह का चीज पसंद है, इनको आगे इसी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना है, तो यह इस स्टेज पे काम कर रहा है।
1: तो अब क्या है सर कि अभी जो है यूनिवर्सिटी में आपके डिपार्टमेंट पे कौन कौन से ऐसे बदलते तकनीक के समय में कौन कौन ऐसे नए कोर्सेस आरंभ हुए हैं जिसमें हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं इंटरेस्टेड है, वो कोर्स को करके उसके ड्यूरेशन बताएं, उसके फी बताएं, उसके करने से उनका भविष्य संवर जाएगा और आगे जाके वो बेहतर
0: विश्वविद्यालय में बहुत सारे पाठ्यक्रम को, बहुत सारे कोर्सेज को पहले से चला रहा है
1: जी,
0: लेकिन नए भी कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। प्लस क्या है कि हमेशा जैसे हमारा जो एमसीए विभाग है, एमसीए विभाग में हमारे यहाँ दो कोर्सेज जो चल रहे हैं, जैसे एक तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो AICTE अप्रूव्ड है, और 2 साल का कोर्स है, ठीक है। दूसरा एक BCA कोर्स भी चल रहा है 3 इयर्स का, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, ये 3 इयर्स का है, वो भी AICTE अप्रूव्ड है।
1: अच्छा।
0: तो इसमें जो एडमिशन के लिए है, मान लीजिए कि जो बच्चे BCA, तो प्लस टू के बाद जो बच्चे आते हैं वो मैथमेटिक्स के हों या प्लस टू में कंप्यूटर साइंस रखे हों, तो वो BCA में आते हैं। BCA करने के बाद लोग MCA में जाते हैं, मास्टर्स डिग्री करते हैं। आए दिन जो चेंजे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, इस टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण हमेशा हर साल हम लोग अपने कोर्स को भी, सिलेबस को, जो विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल है या विश्वविद्यालय का जो सिलेबस कमिटी है, वो कमिटी डिमांड को देखते हुए कि आज सोसाइटी में या देश में इंडस्ट्रियल रिस्पेक्ट से, इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव के अनुसार किस चीज का डिमांड है, किस सारे प्रोग्राम का डिमांड है या किस सॉफ्टवेयर का डिमांड है, कौन सा सॉफ्टवेयर मार्केट में नया आया है, उसके अनुसार कार्यक्रम पाठ्यक्रम को चेंज किया जाता रहा है, अपडेट किया जाता रहा है, इम्प्रूव किया जाता रहा है
1: जी। ये बहुत बेहतर,
0: बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उसमें उस जो कमिटी है उसमें इंडस्ट्री के भी कुछ लोग होते हैं जो ये बताते हैं कि अभी मार्केट में इन चीजों का हमको डिमांड है, इनकी जरूरत है, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम को फिर से रिवाइज कर दिया जाता है।
1: सर, इस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्रता क्या है, जैसे
0: किसी भी संकाय के लोग BCA में है, मान लीजिए तो BCA में क्या है, किसी भी संकाय से आए, लेकिन अभी एक रिस्ट्रिक्शन है कि प्लस टू में उनका मैथमेटिक्स होना चाहिए या
1: अच्छा या फिर
0: या वो एक पेपर, जैसे प्लस टू में बच्चे रखते हैं कंप्यूटर साइंस या रखते हैं इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, मतलब कंप्यूटर का एक पेपर है, तो पेपर को रखे हो
1: जी,
0: आ सकते हैं। जहां तक MCA में आने का प्रश्न है, तो MCA में कोई भी ग्रेजुएट जो 50% कम से कम मार्क्स लाया हो वो आ सकता है, लेकिन वहां भी एक कंडीशन है कि प्लस टू में मैथमेटिक्स उसका।
2: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तकनीक के बदलते युग में कंप्यूटर की भूमिका, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारी ओर से अशोक कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करें स्किल मैनेजमेंट के बारे में। तो आपको बतला दे कि डिग्री केवल आपको पहचान दे सकती है, लेकिन आपकी स्किल को आपको आपकी स्किल आपको अवसर दिला सकती है, ज्ञान आपको रास्ता दिखला सकता है, लेकिन कौशल आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ने

दोस्तों भी आप सुन रहे थे हमारे युवा साथियों को संबोधित करता कार्यक्रम युवाणी FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:30 होने को हैं।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में, जिसे हमने लिया फिल्म राज से।

दोस्तों, ये आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में फिल्म राज से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे लिया है हमने फिल्म कसूर से।

दोस्तों, भी आपने सुना फिल्म मर्डर से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार और फिर जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

का विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत तारावत, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
6: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कल खेलो इंडिया डायलॉग को करेंगे संबोधित। राज्य के 16 महाविद्यालयों के युवा प्रतिनिधि वर्चुअल संवाद में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा खनन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा का प्रशासन पर आंदोलनकारी छात्रों को परेशान करने का आरोप। भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पहुंची कोडरमा। राजधानी रांची समेत राज्यभर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकला ईद ए मिलाद उन नबी का जुलूस। हजरत मोहम्मद के संदेशों को किया गया याद। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का राज्य में दिख रहा असर, गढ़वा और पलामू समेत 6 जिले में कल भारी बारिश की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के तहत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महाविद्यालयों के युवा हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को भारत की खेल यात्रा से जोड़ना, उनकी आकांक्षाओं को समझना और युवा नेतृत्व के जरिए विकसित भारत के निर्माण में उनके विचारों को शामिल करना है। मेरा युवा भारत माई भारत झारखंड के निदेशक ललिता कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य के 16 महाविद्यालयों में युवाजन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में युवाओं को विकसित भारत और 2036 ओलंपिक को लेकर अपने सुझाव देने का मौका मिलेगा। युवा क्यूआर कोड के जरिए अपने सुझाव साझा कर सकेंगे।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का जो थीम है, हम 100 दिन उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। स्पोर्ट्स में युवाओं को इन्वॉल्व करके कैसे उनको नशा मुक्त किया जाए, इस विषय पे युवाओं को आइडियाज को लिया जाएगा। हमारे झारखंड में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मुख्यतः IIM रांची, संत जेवियर्स कॉलेज रांची और BIT मिश्रा रांची और IIT धनबाद और NIT जमशेदपुर, इसमें भी कार्यक्रम हो रहे हैं।
0: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। श्री दास ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में राज्य में डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने खनन प्रभावित जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के अलॉटमेंट को अतिरिक्त 30% बढ़ा दिया है, इसके बावजूद खनन प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
2: उसमें अभी भी राज्य के खाते में 7,915 करोड़ रुपए की राशि बची, बाकी की राशि में भी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की राशि में उसमें भी घोटाला हो।
0: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की आंदोलनकारी छात्रा अमीषा प्रसाद ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आज रांची में प्रेसवार्ता में आंदोलनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे मुकदमे दर्ज कर छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। अमीषा ने झूठे मुकदमे में छात्रों को फंसाए जाने की निंदा की है।
3: 250 काम संख्या के अंतर्गत मुझे कहें कि मैंने आपको इसलिए उठाया। सबसे पहले सवाल मैं करना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें विदाउट नोटिस किए विदाउट वारंट दिए आप किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना कि आप हमारे उस सपने को रौंदने का काम करते हैं, युवाओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं।
0: भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के तीसरे दिन की शुरुआत आज चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर से हुई। यह यात्रा चतरा से हजारीबाग होते हुए कोडरमा पहुंची। इस दौरान हजारीबाग के पद्मा, इटखोरी, चौपारण, बरही, सिंहवारा होते हुए कोडरमा पहुंची, जहां कई स्थानों पर छात्रों ने स्वागत किया और प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार की मांग का समर्थन किया। कोडरमा से देर शाम यात्रा गिरिडीह के लिए रवाना होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची में उम्र से संबंधित विसंगतियों की सुनवाई और निष्पादन नियमानुसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। श्री कुमार ने कहा कि कोई विदेशी नागरिक हथियान अथवा वंशावली में छेड़छाड़ कर स्वयं को भारतीय नागरिक अथवा किसी परिवार का वंशज दर्शाकर मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना संबंधित ईआरओ को अवश्य दें। उन्होंने एक ही माता पिता की एक से अधिक संतानों के जन्म और उम्र से संबंधित दस्तावेजों की विसंगतियों को भी दूर करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मोबाइल से चंद सेकंड में होने वाला भुगतान न खुले पैसों की चिंता और न ही लंबी प्रक्रिया। भारत के डिजिटल भुगतान व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने 10 वर्ष का सफर तय कर लिया है। सिमडेगा चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव दीपक अग्रवाल रिंकू ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर खुशी जताई है और केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
4: सरकार के द्वारा यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी

0: जुलूस निकाला गया। इस दौरान पैगंबर मोहम्मद के संदेश को याद किया गया। मौलाना आजाद कॉलेज रांची के प्रोफेसर अब्दुल्ला कासमी खातिब ने बताया कि हजरत मोहम्मद के बताए मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है।
1: 40 साल में आपने अपने नबी होने का ऐलान किया और अल्लाह के आदेश से आप मक्का छोड़कर मदीना चले आए। इस तरह 23 साल में इस्लामी तालीमात को कंप्लीट किया, लेकिन सबसे बड़ी जो तालीम है हुजूर की वो अखलाक है, मानवता है। तब आप पूरी इंसानियत के लिए मोहसिन कायनात कहे गए। हमको इस सीरत के इस पहलू को फॉलो करना चाहिए।
0: ईद मिलाद उन नबी के मौके पर गिरिडीह में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर के विभिन्न इलाकों से मोहम्मदिया जुलूस निकाला गया, जो नगर भ्रमण करते हुए बरवाडी मैदान पहुंचा। जुलूस में नगर विकास मंत्री सुधीर कुमार भी शरीक हुए और लोगों को ईद मिलाद उन नबी की शुभकामनाएं दी।
2: गिरिडीह के लोगों को तमाम बहुत सारी शुभकामनाएं। जुलूस से मोहब्बत ही है, घरवाड़ी करबला में तमाम जमा हो गए और आज के दिन नबी की तमाम हिदायतें हैं उनको याद करते हुए आने वाले दिन को और बेहतर करने की कोशिश करें।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में रक्षाबंधन पर्व के सिलसिले में आज पुलिसकर्मियों और समाज के बीच भाईचारे तथा विश्वास का एक खूबसूरत संदेश देखने को मिला। चक्रधरपुर थाना परिसर में गैर सरकारी संगठन एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन करंजो की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर विश्वास और भाईचारे का संदेश दिया। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आगामी 30 अगस्त तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग और कोडरमा जिले में कहीं कहीं पर गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 28 अगस्त को चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल खेलो इंडिया डायलॉग का करेंगे संबोधित। राज्य के 16 महाविद्यालयों के युवा प्रतिनिधि वर्चुअल संवाद में होंगे शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने डीएमएफटी फंड के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा खनन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा का प्रशासन पर आंदोलनकारी छात्रों को परेशान करने का आरोप, भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा पहुंची कोडरमा। राजधानी रांची समेत राज्यभर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकाला गया ईद मिलाद उन नबी का जुलूस। हजरत मोहम्मद के संदेशों को किया गया याद और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का राज्य में दिख रहा असर। गढ़वा और पलामू समेत 6 जिले में कल भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे बोकाखाड़ गांव में सशस्त्र सीमा बल द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान 18 परिवार के मुखिया के बीच कृषि उपकरण का वितरण किया गया। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा कि
2: वहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया हम लोगों ने स्वास्थ्य की थोड़ी चिकित्सा व्यवस्था की थोड़ी कमी थी वहाँ, तो वहाँ मेडिकल सिविक एक्शन कैंप लगाया गया था जिसमें हमारे डॉक्टर साहब ने लगभग आज 100 मरीजों का इलाज किया है। उस गांव के तो लोग थे ही, आसपास के गांव के भी कुछ लोग थे जिसको मिला के इतनी ज्यादा नफरी हुई।
1: भारत सरकार द्वारा खान खनिज विनियोग संशोधन विधेयक का लातेहार जिले में भी विरोध जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला कमेटी ने इसे काला कानून बताया है। इसके विरोध में आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। 27 अगस्त को धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया गया है। राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ

0: नाथराम ने कहा कि
1: भारत सरकार के द्वारा जो खान खनिज विनियोग विधेयक संशोधन विधेयक लाया गया और जिस प्रकार से हड़बड़ी में इसको बिना चर्चा किए हुए लोकसभा से 5 मिनट के अंदर पारित कर दिया गया, दूसरे दिन 13 तारीख को राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया, लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से ये बिल पारित हुआ, इसके लिए भारत सरकार ये आवश्यक भी नहीं समझी कि हम इस पर विस्तृत चर्चा कराएं।
0: इस मुद्दे पर कांग्रेस ने आंदोलन की बात कही है। मनिका विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह ने इसे झारखंड को कमजोर करने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि
2: खनिज संपदा पर जो उन्होंने बिल पास किया है एकदम संघीय ढांचा पर कुठाराघात है, क्योंकि लोकतंत्र में सब लोगों का अधिकार है, छोटा से छोटा इकाई बना करके उनको अधिकार शक्ति दिया गया है, लेकिन इन्होंने शक्ति को सेंट्रलाइज कर दिया है जो एकदम लोकतंत्र के लिए खतरा का संकेत है। क्योंकि मान लीजिए किसी भी राज्य को करने के लिए उनका अपना अधिकार था, लेकिन अदब किस्म का इन्होंने जो किया है इसके विरुद्ध में हम लोग जो हैं 27 तारीख को जिला मुख्यालय में धरना देंगे, इसके बाद राज्यपाल के हम लोग चलेंगे, इसके बाद प्रखंड मुख्यालय में, और इसी तरह क्रमबद्ध हम लोग का चलता रहेगा जब तक कि वह बिल वापस नहीं लेंगे।
0: लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध नियमित रूप से सघन जांच अभियान चलाना जरूरी है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड स्थित ITI का लाभ युवाओं को नहीं मिल रहा है। 10 करोड़ की लागत से बना यह संस्थान आज शोपीस बनकर रह गया है। यहां प्रशिक्षकों की कमी के कारण 120 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया बंद कर दी गई है। इस संस्थान में कार्यरत 10 कर्मचारी सीयू प्रोटेक्शन फोर्स NGO के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें भी पिछले 3 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
3: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओ, संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार।

दोस्तों भी आपने सुना फिल्म वेलकम टू द जंगल से लिया गया ये गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म धमाल फ्लोर से लिया गया ये गीत। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार FM 102.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

दोस्तों, ये आपने सुना सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म अभिमान से लिया गया ये खूबसूरत सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 7:45 होने को हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम कानूनी सलाह के अंतर्गत भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण। आज की भेंट वार्ता का विषय है बाल श्रम अधिनियम 1986। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद होंगे भैया मुकेश कुमार एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रियंका कुमारी। तो दोस्तों आइए सुनते हैं बाल श्रम अधिनियम 1986 से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को। नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे समाज और देश के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है, और वह मुद्दा है बाल श्रम। बचपन सीखने, खेलने और सपने देखने का समय होता है, लेकिन आज भी अनेक बच्चे शिक्षा और अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। बाल मजदूरी न केवल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है, बल्कि यह उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। इस विषय के कानूनी, सामाजिक और व्यवहारिक पहलुओं को समझने के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं हजारीबाग के जाने माने अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार। तो वकील साहब, आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, थैंक यू।
0: वकील साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि बाल श्रम है क्या और इसे कानून किस प्रकार परिभाषित करता है।
1: देखिए, बाल श्रम का अर्थ हुआ कि बच्चों के द्वारा लिया गया श्रम, और बच्चों को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, बच्चे जिनका उम्र 18 साल से कम हो। हमारे यहाँ बच्चों को जिसका उम्र 14 साल से कम हो उनसे किसी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता है, और अगर 18 साल से कम के बच्चे हैं तो विशेष जगह पर ही उनसे कार्य लिया जा सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं बाल श्रम, और इसी संदर्भ में बाल श्रम कानून बनाया गया है।
0: वकील साहब, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन से प्रमुख कानून लागू हैं?
1: बाल श्रम को हमारे संविधान में भी अपराध माना गया है, और इसी के तहत में हमारे संविधान के आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि बच्चे जिसका उम्र 14 वर्ष से कम है उनसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया जा सकता है। संविधान में इस तरह की बात लिखी हो तो अवश्य की संदर्भ में कानून बनने चाहिए, और 1986 में बाल श्रम को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया, पहला कानून वो था। और आज 2016 में भी इसमें विशेष रूप से अमेंडमेंट करके इस कानून में और भी सुधार किया गया है। तो ये कानून बनाए गए हैं बाल श्रम को रोकने के लिए।
0: वकील साहब, जैसा कि भी आपने बतलाया कि भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए संविधान में कानून बनाए गए हैं, और 2016 में उन कानूनों में संशोधन भी किया गया है। इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधान क्या है जो बाल श्रम के उन्मूलन के लिए मुख्य रूप से लागू किया गया है।
1: चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत में बच्चे जिनका उम्र 14 वर्ष से कम है उनका समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में और उनके विकास में होना चाहिए, इसलिए ये इस कानून की व्यवस्था की गई है। इसके तहत में ये तय किया गया है कि बच्चे किसी प्रकार के कार्य में वो न लगे, और अगर उनका उम्र 14 साल से ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है तो वो ऐसे कार्य में लग सकते हैं जहां पर उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके मानसिकता पर कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े। इस तरह की बात की गई, जैसे कि किसी भी एक्सप्लोसिव इंडस्ट्रीज में उनको हम नहीं लगा सकते हैं, माइंस का काम जहां चल रहा हो वहां नहीं लगा सकते हैं, जहां पर भी कोई खतरनाक कार्य चल रहा हो जिससे उनके शरीर पर, उनके मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां पर वो नहीं कार्य कर सकते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया है कि उनके काम करने का समय क्या होगा और कितने बजे तक वो काम कर सकते हैं और कितने बजे तक काम नहीं कर सकते हैं। इसके तहत में ये लिखा हुआ है हमारे कानून में कि उनसे अधिकतम 6 घंटे तक कार्य लिया जा सकता है, और इस 6 घंटे के कार्य में भी उन्हें 1 घंटे के लिए बीच में छूट दी जाएगी जिसमें वो आराम कर सकेंगे और ऐसे जगह कार्य कर पाएंगे जहां पर उनके मानसिक दुष्प्रभाव न हो और शारीरिक दुष्प्रभाव भी न हो, ऐसी जगह पर वो काम कर पाएंगे। साथ साथ ये भी कहा गया है कि बच्चे अगर कोई इंटरटेनमेंट का जगह है, जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन पर या फिर पिक्चर्स में वो काम करते हैं, तो उनसे काम वहां पे लिया जा सकता है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाएगा उनसे काम लिया जाए लेकिन लगातार काम नहीं लिया जाए। इन सारे चीजों की व्यवस्था हमारे कानून में की गई है, और ऐसा नहीं करने पर जो भी इस कानून को न मानेगा उसके लिए हमारे यहाँ दंड का प्रावधान है।
0: तो वकील साहब, बाल श्रम करने वाले नियुक्ता के लिए कानून में किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है?
1: देखिए, जैसे ही यह मालूम होता है कि कोई भी व्यक्ति बच्चे से काम ले रहा है और जो हाईली प्रोहिबिटेड है, जहां ऐसा करना प्रतिबंधित है, तो वैसी हालत में नियोक्ता को पहले ये सूचना दी जाएगी, नोटिस दिया जाएगा कि आपने ये गलत किया है, और उस नोटिस पर उन्हें न्यायालय में उपस्थित होना होगा। अगर ये सही पाया गया और उनका यह प्रथम अपराध है तो वैसी हालत में सजा का प्रावधान है जो 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक है, और अगर यह दोबारा से किया गया तो इसमें सजा का प्रावधान 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक है। साथ ही साथ इसमें 10,000 रुपया पहले अपराध में और दूसरे अपराध में 20,000 रुपये तक का फाइन की भी व्यवस्था की गई है। ये सजा का प्रावधान उनके लिए है जो ऐसे बच्चे को इम्प्लॉयमेंट देते हों जिनका उम्र 14 वर्ष से कम है या फिर 18 वर्ष से कम है, लेकिन उन्हें ऐसे जगह पे रखा गया है जहां पर उनके शरीर को और उसके मानसिकता पर दुष्प्रभाव पड़ने की आवश्यकता है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, आपको जानना चाहिए, जिसमें MC मेहता वर्सेस तमिलनाडु का था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ आदेश दिया कि अगर इम्प्लॉयर ऐसा काम किसी से लेता हो तो उस इम्प्लॉयर को 20,000 रुपया प्रति चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के आधार उसको कॉम्पनसेशन देना होगा, ये व्यवस्था की गई है। और साथ ही एक और PIL फाइल किया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और इसके तहत विशेष रूप से ये कहा गया था कि बच्चे अब कभी भी किसी सर्कस में काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां पर बच्चे को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। तो इन दोनों जजमेंट के द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि बच्चों का बचपन कैसे बचाया जाए।
0: वकील साहब, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाना है, तो इस दिवस के अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम सब मिलकर बच्चों को सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक बचपन दे सकें?
1: देखिए, ये जो बाल श्रम है वो सिर्फ भारत के लिए ही एक परेशानी का विषय नहीं है, सिर्फ भारत में ही बाल श्रम नहीं हो रहा बल्कि पूरे विश्व में बाल श्रम हो रहा है। और हम जब भी बात करते हैं बच्चों की तो पूरे विश्व के बच्चों की बात करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में 138 मिलियन बच्चे हैं जो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। उन सभी को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमारे समाज का, हमारे देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बच्चों के साथ एक तरह का अपराध हो रहा है। यही कारण है कि विश्व स्तर पर इसे 12 जून को हम लोग मनाते हैं, जिससे अलग अलग तरीके से हम लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सके, लोगों को जागरूक कर सके और बच्चों का जीवन हम बचा सके। इससे हमारे समाज का और हमारे देश का दोनों का ही कल्याण होगा। और हमारा आग्रह होगा हमारे सभी श्रोताओं से कि एक सच्चे नागरिक होने के नाते अगर आपको कहीं पर भी बाल श्रम दिखलाई दे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आप तुरंत नजदीकी थाना में इसकी सूचना दें या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर इसकी सूचना दें और वैसे बच्चों को इससे बचाएं जिससे कि उनका हमारे समाज का और देश का कल्याण हो सके।
0: तो वकील साहब, बाल श्रम अधिनियम और बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपने महत्वपूर्ण संदेश हमारे श्रोताओं के बीच आपने साझा किया, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हजारीबाग की प्रियंका कुमारी। आइए इनसे हम जानते हैं कि बाल श्रम को दूर करने के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं। मैडम, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि ये चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
2: 1098 टोल फ्री नंबर है। कोई भी बच्चा जो प्रॉब्लम में है, जैसे कि किसी भी पब्लिक को, कोई बच्चा होटल में या किसी औद्योगिक परिवेश में कहीं पे काम करता हुआ दिखे या किसी के घरेलू वर्क काम करता हुआ दिखे और बच्चा छोटा है, 14 साल से कम उम्र का है, तो 1098 में कॉल कर सकते हैं। इसमें हम लोग बच्चा का हेल्प करते हैं। पहले तो जो श्रम अधीक्षक हैं उनको हम लोग सूचित करते हैं कि ऐसा हो रहा है, सारा बताते हैं उनको। एक टीम बनाई जाती है और बच्चा को रेस्क्यू किया जाता है।
0: तो शिकायत मिलने के कितने देर के बाद ये जो है आप लोग की कार्रवाई पूरी हो जाती है?
2: हम लोग तो उसी दिन मतलब इन्फॉर्म कर देते हैं श्रम अधीक्षक को, लेकिन उनके द्वारा थोड़ा टाइम लगता है टीम बनाने में। टीम बना करके सब जाते हैं, DCPO सर जाते हैं और भी मेंबर्स रहते हैं और बच्चा को रेस्क्यू करते हैं, CWC में प्रस्तुत करते हैं, बाल कल्याण समिति में।
0: मैडम, ये जो हेल्पलाइन तैयार किया गया है 1098, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है?
2: बच्चा का हेल्प करना। बात है कि कोई भी कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करेगा? डायरेक्ट थाना में जाएगा, थाना शिकायत लेगा या नहीं लेगा? लेकिन यदि 1098 में कॉल किया जाता है तो हम लोग थाना को इन्फॉर्म करते हैं, तो थाना काम करती है।
0: आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाल श्रम की शिकायत दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया होती है?
2: आप किसी बच्चे को कहीं पे काम करते हुए देख, आप 1098 में कॉल कीजिए और सारा डेटा बता दीजिए कि इस होटल में या इस एक घर में या कहीं उद्योग कहीं कुछ चल रहा है, यहाँ बच्चा काम कर रहा है, हम देखे हैं, इतना उम्र का बच्चा है। यदि आप फोटो लेकर के सेंड कर सकते हैं तो सेंड कर दीजिए। और सारा डेटा देना होगा कि प्लेस कहाँ है, कौन सा होटल है, कितना बड़ा बच्चा है, सारा चीज बता देना है। फिर हम लोग ढूंढते हैं, पहुंचते हैं वहाँ।
0: जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारा किसी के व्यक्ति के साथ जो है वह दुश्मनी हो जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो क्या उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है?
2: जी सर, पूरा गोपनीय रहता है। हम लोग को खुद उसका नंबर पता नहीं रहता है। अच्छा। वो सिस्टम है ना, इससे हम लोग कॉल करते हैं, इसमें नंबर हम लोग को भी नहीं दिखता है। हम लोग इस सिस्टम से कॉल करते हैं, हम लोग कैसे बताएंगे किसी को? हम लोग का तो यही काम है गोपनीय रखना। हम लोग डायरेक्ट कॉल चला जाता है और हेल्प करते हैं, उसका बिल्कुल गोपनीय रहेगा।
0: तो श्रोताओं को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं कि अगर आप कहीं भी बाल श्रम की स्थिति को पाते हैं, 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक उद्योगों या अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य करते हुए देखते हैं, तो निसंकोच आप 1098 पर कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय होगी। आगे मैडम, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि बाल श्रमिक बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था है?
2: जब बच्चा को हम लोग रेस्क्यू करते हैं टीम बना करके, तो बाल कल्याण समिति में बच्चा को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट मैडम लोग रहती हैं, वो लोग निश्चित करती हैं कि बच्चा को आगे किस स्कूल में डालना है, कहाँ बच्चा पढ़ सकेगा, या कोई आश्रय में रखना है, या फिर बच्चा का जो रियल उसका घर है उसका पता लगाया जाता है, अपना घर बच्चा पहुँच जाता है। ऐसा अक्सर होता है कि बिहार से या कहीं दूर से बहुत बच्चा लोग आकर यहाँ, बहुत ऐसा केस आया है, काम करता है, तो बच्चा को उसके घर पहुँचा दिया जाए या फिर कोई अच्छा स्कूल में डाला जाता है।
0: मैडम, 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाना है, तो इस दिवस आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
2: मैं कहना चाहूंगी कि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है, इसको अच्छे से मनाने के लिए हम लोग प्रण लें कि हम लोग के एरिया में जहां हम आते जाते रहते हैं, कोई भी बच्चा बाल श्रम, छोटा बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का है या 14 से अधिक का भी है, पढ़ाई करते हुए थोड़ा बहुत वो काम कर सकता है, स्कूल जाते हुए इतना रहे, बिजनेस तो थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन उससे कम का है तो कोई बच्चा काम न करे, किसी बच्चा का पढ़ाई न छूटे, हम लोग सब कोई मिलकर हेल्प कीजिए ताकि हर बच्चा स्कूल जाए, काम में फंसकर जिंदगी अपना आगे बर्बाद न करे। 1098 में कॉल कीजिए यदि ऐसा कोई मामला देखते हैं तो। बस मैं यही चाहूंगी जो कोई भी आप लोग सुन रहे हैं, 1098 टोल फ्री नंबर है, इसमें कॉल कीजिए। चाइल्ड हेल्पलाइन 24/7 आप लोग का हेल्प करने के लिए तैयार।
0: तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े और बाल श्रम से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के बीच आपने साझा की, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी सर, धन्यवाद आपको भी।
0: दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने बाल श्रम की समस्या, इसके दुष्परिणामों तथा इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। बाल श्रम केवल बच्चों के बचपन, शिक्षा और स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि देश के भविष्य को भी कमजोर करता है। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि वह सुरक्षित वातावरण में रहे, शिक्षा प्राप्त करे और अपने सपनों को साकार करे। दोस्तों, 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और यह दिवस हमें। दोस्तों, भी आप सुन रहे थे बाल श्रम अधिनियम 1986 पर आधारित भेंट वार्ता का पुनः प्रसारण। इस विषय पर जानकारी दे रही थी अधिवक्ता भैया मुकेश कुमार एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्रियंका कुमारी। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाल सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बजरंगी भाईजान से। और इस गीत को सुनना चाहा है पंचमंदी रोड हजारीबाग से कला मोहम्मद आरजू, नीलोफर परवीन आरजू, एहसान अहमद आरजू, हबीबा खातून आरजू, इरफान अहमद आरजू, शबाना परवीन आरजू, फिरोज अहमद आरजू और शमा परवीन आरजू ने। इस गीत की फरमाइश आई है मालीटोला खिरगांव से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, ऋषि और राहुल की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है रेलवे स्टेशन हजारीबाग से शमीम अहमद, शगुफ्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद, एहसान अहमद, आरजू परवीन और नसीम अहमद ने। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है जमा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनिस फातमा और शहनाज फातमा ने। तो आइए इन तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं ये फरमाइशी गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना अदनान सामी की आवाज़ में फिल्म बजरंगी भाई से लिया गया ये फरमाइशी गीत। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत, जिसे हमने लिया फिल्म नाम से। और इस गीत को सुनना चाह है चिपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका ने। इस गीत की फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया की ओर से। इस गीत को सुनना चाह है मगनपुर से अमजद अली, अब्बास आलम और आलम अली ने। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा धनतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने।

दोस्तों ये आप सुन रहे थे मन्ना रुदास और मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म नाम से लिया गया ये फरमाइशी गीत। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, भी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में ये फरमाइशी गीत। और इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम सिंघानी कुर्रा हजारीबाग से लक्ष्मी रानी, सृष्टि रानी, रूबी देवी, श्री प्रसाद, आशा देवी और सुमन कुमारी ने। इस गीत की फरमाइश आई है बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा तथा ढेर सारे साथीगण की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है झुमरी तिलिया से जगन्नाथ प्रसाद साहू ने। और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है लेवई से गुलाम दास, माणिकपुरी रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी ने। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गाया ये खूबसूरत फरमाइशी गीत।

प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। इस गीत को सुनना चाहा है प्रका काना से भानु पासवान, अशोक पासवान, वकील नागेश्वर, शांति, शोभा और दिलदार ने। इसी गीत की फरमाइश आई है जीटी रोड परे से सीताराम मालाकार, वासुदेव मालाकार, इंदु देवी, कैलाश भगत, पूनम कुमारी, नूतन कुमारी, कुसुम और आर्यन की ओर से। इसी गीत को सुनना चाहा है रेलवे स्टेशन रोड हजारीबाग से शमीम अहमद, निखत परवीन, एहसान अहमद, तहसीन बानो, आरजू परवीन, नशीम अहमद, खलील अहमद, निसार अहमद और नूरजहां बेगम ने। इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है सौदागर मोहल्ला रामगढ़ से महबूब आलम, मकसूद आलम, पाकिजा बेगम, महमूद आलम, महफूज आलम और शमसाद बेगम ने। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में गाया ये गीत।

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे और इस गीत को सुनना चाहा था बड़ा बॉम्बे गांव सुपाही साही से देवेंद्र ताती और राकेश ताती ने। इस गीत की फरमाइश आई थी आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और मैंडी शर्मा की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा था कोल सिटी बरकाकाना से अब्जालताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और शाहिनी ने। अब आई सुनते इस कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत और इस गीत की फरमाइश आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है बरकाकाना से तस्नीम कौशर, शाहिन सुल्ताना, इब्जाल ताज और एम ए मलिक ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और फिर रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोसी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779701075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है, उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
5: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति कल रायपुर में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
6: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
7: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेइचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. Onam and Eid Milad celebrated with joy and festive spirit. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo Test as hosts Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. We have a desk report.
9: The sudden rise in water levels caused widespread destruction in Timore in Raswa district of Nepal near the Tibet border and the nearby Siafrubesi area, washing away vehicles, goods and other property. Preliminary reports suggest that the flash floods may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhotekoshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. The Nepal Tourism Board has advised people in the affected areas to remain calm, follow official safety instructions and stay updated through verified channels. Swati Rakheja for Akashvani News, Delhi.
8: Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands. Nepal Prime Minister Valendra Shah reviewed the situation and rescue and relief efforts with officials and federal parliamentarians from affected districts including Rasuwa, Nuwakot, Thading, Gorkha and Chitwan. Meanwhile, India has expressed solidarity with the people of the Himalayan nation and assured all possible humanitarian assistance to the neighbouring country following the devastating flash floods. In a social media post, President Draupadi Murmu conveyed sympathies to her Nepalese counterpart Ramchandra Podel and the people of Nepal. Vice President C.P. Radhakrishnan also expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences in a social media post. Mr. Modi said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. The Prime Minister said our teams are coordinating closely on rescue and relief efforts. The Indian Embassy in Kathmandu said it has remained engaged with the relevant authorities of the government of Nepal for early rescue and relief for Indian nationals affected by the flash floods. The embassy has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal today. The embassy said the people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500 and +977 981 031 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance, disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said India stands with Nepal and its people in the face of this challenge. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Our correspondent has the details.
2: Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Meanwhile, Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation.
10: A high-level team
11: has been constituted to look into the matter. The Chief Secretary and the DGP are monitoring the situation. If required, I will personally visit Valmiki Nagar.
2: Deputy Chief Minister and Water Resources Minister of the state, Vijay Kumar Chaudhary, said that the present water level of the Gandak River is relatively low, which is a positive factor. However, considering the possible water flow, authorities are prepared for the possibility of releasing up to 250,000 cubics of water from Valmiki Nagar barrage to keep the situation under control. Savita Parikh, Akashwani News, Patna.
8: Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in the neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. The flooding could lead to a rise in water levels in the Gandak and Naraini rivers in the two districts. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. The National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 9 teams in Bihar and 11 teams in Uttar Pradesh to deal with the emerging situation following the flash floods in Nepal. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh stated this while talking to media in New Delhi.
12: Home Ministry is monitoring the situation and the state government has also assessed the situation. Accordingly, we have deployed 2 of our teams in the Gandak River Basin. In Uttar Pradesh, we have deployed our teams in the area likely to be affected, particularly in the Kushinagar region.

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार, हमारा आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मधुर भंडारकर के बारे में बहुत सी बातें हम उन्हीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बातें कर लें। जाहिर है ये बातें भी मधुर भंडारकर के बारे में ही होंगी। मुंबई में ही पले बढ़े मधुर अपने करियर की शुरुआती दिनों में एक वीडियो लाइब्रेरी चलाया करते थे। जी हाँ, वहां भी वो फिल्मों से ही घिरे रहते थे। तो क्या मधुर, आपको फिल्मों का शौक बचपन से ही था?
1: बचपन से ऐसा था कि पिक्चर का बहुत शौक था, थिएटर में जाके पिक्चर देखना। और खास करके मुझे याद आता है कि हमारे वो टाइम पे रोड पे पिक्चर बहुत दिखाया करते थे, जैसे गणेश उत्सव होता था या गोविंदा या सत्यनारायण की पूजा होती थी, तो काफी पिक्चर देखी, हर टाइप की पिक्चर देखी, ब्लैक एंड व्हाइट देखी और अलग अलग प्रकार की पिक्चरें देखी। तो सिनेमा का एक जुड़ाव जब से रहा है हमेशा, बचपन में एक नॉर्मल था लेकिन फिल्म से काफी जुड़ाव था कि पिक्चर में जाके शूटिंग देखना, लोगों को मिलना। रोड पे जब पिक्चर देखते थे हम लोग, मुझे याद है कि जब पिक्चर देख रहे और बीच में कोई गाय आ जाती थी तो काफी भागम भाग होती थी।

एक वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाता था। काफ़ी साल मुझे उसमें, 4-5 साल मैंने स्ट्रगल किया। वीडियो कैसेट घर घर जाके पहुंचाता था। मैं खार में रहता था तो वर्सोवा जुहू एरिया इलाके में जाके वीडियो कैसेट देता था। कहीं फिल्म वालों को भी कैसेट दिया करता था मैं तो। वहाँ से तो पहले से फिल्म का तो था शौक, लेकिन एक ऐसा हो गया कि जब वीडियो कैसेट देते देते फिल्म वालों से बहुत ही काफ़ी करीब आ चुका था मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहीं से मौका मिलना चाहिए मुझे। तो मैंने वीडियो कैसेट्स के बाद मैंने कुछ और जॉब्स किए बॉम्बे में, जैसे छोटे मोटे क्लैप देना, कंटिन्यूटी लिखना छोटे मोटे डायरेक्टर के साथ। मेरी कोई एकदम डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बड़ा डायरेक्टर अपना असिस्टेंट रख लेगा। तो काफ़ी एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद मेरी मुलाकात मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी से हुई है, तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा 91 से लेकर 95 तक। तो एक 5 साल का सफ़र उनके साथ जुड़ा रहा, तो काफ़ी कुछ सीखने मिला। वो एक अलग टाइप के डायरेक्टर है और काफ़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव किस्म के डायरेक्टर है, तो बहुत उनसे सीखने मिला। और वहाँ से एक जर्नी मेरी शुरू हुई है, क्योंकि जब पहली पिक्चर जो मैं बनाने निकला था तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कमर्शियल फिल्म बनाइए, क्योंकि ये जो कमर्शियल फिल्म चलती है, तो मैं जिस तरह की सब्जेक्ट्स और जिस तरह के आइडिया थे मेरे पास, तो कहीं लोगों ने बोला कि तुम बहुत ही इंटेलेक्चुअल सोचते हो और तुम बहुत ही श्याम बेनेगल गोविंद निहलानी टाइप सोचते हो, तुम आप कमर्शियल फिल्में बनाओ। तो मुझे लगा कि रंगीला पिक्चर में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी का, तो उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। मुझे लगा कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनानी चाहिए, तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम एक्सपेरिमेंटल सिनेमा या अलग टाइप का सिनेमा मत बनाओ, क्योंकि जो पहली पिक्चर होनी चाहिए वो कमर्शियल फिल्म होनी चाहिए। अगर कमर्शियल फिल्म चलेगी तो आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा दूसरे प्रकार की फिल्म बनाने का। तो मैंने शायद दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिया और सोचा, और इस सबसे मैंने एक कमर्शियल फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की, जो दूसरों को पसंद था वो बनाया, जिसका नाम था त्रिशक्ति, जो पिक्चर थी जिसमें अरशद वारसी, मिलिंद गुना जी, शरद कपूर थे। तो वो पिक्चर बनने में ही 2.5 साल लग गए, और बाय द टाइम रिलीज हुई उसको 3 साल के बाद पिक्चर रिलीज हुई। तो जब बॉक्स ऑफिस से पिक्चर लगी तो किसी की स्टेटस वहां पे नहीं थे, क्योंकि अरशद, शरद, मिलिंद गुना, ये तीनों के बॉक्स ऑफिस स्टेटस भी खत्म हो चुके थे। तो बड़े ही जद्दोजहद से वो पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन वो ऐसी पिक्चर थी जिसकी खबर भी नहीं छपी, वो आई और चले गई, पता नहीं चला किसी को। तो मेरे माथे पे एक होता है वो लग गया कि फ्लॉप डायरेक्टर बोल के, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक इंसान को फ्लॉप डायरेक्टर का जब टैग लगता है, खास करके आपकी पहली पिक्चर नहीं चले, और खास करके जो पिक्चर जिसमें कुछ स्टारकास्ट भी नहीं थे, जो बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था, तो वहां से उठकर इस पोजिशन में पहुंचना बहुत संघर्ष करना पड़ा।

0: चांदनी बार, जिसने न सिर्फ अपने झंडे गाड़े बल्कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिला दिया, उसका आइडिया आपको कैसे आया?
1: देखिए, त्रिशक्ति जब नहीं चलने के बाद एक डेढ़ साल ऐसा मेरी लाइफ में आया कि जहां पे मुझे लगा कि मैं क्या काम करूं, बल्कि किस तरह की, मुझे एक ही लगा कि ये जो पिक्चर मैंने बनाई थी त्रिशक्ति, ये मेरी फिल्म नहीं थी, ये मेरे दिल से निकली हुई फिल्म नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी और के हिसाब से फिल्म बनाई है, तो मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जिसमें मेरा काम नजर आए। तो इसी तरह से मैंने चांदनी बार का सब्जेक्ट, एक बार मेरा एक दोस्त था जो मुझे बार में ले गया, मुझे पता ना लेडीज बियर बार है, तो वहां ले गया और उसने बार को जब मैंने देखा, मुझे लगा यार ये कैसा कल्चर है, यहाँ पे लोग लड़कियां डांस कर रहे हैं और लोग पैसे फेंक रहे हैं, तो वहां से जो आइडिया जनरेट हुआ मेरे से, तो वहां से ही मुझे लगा कि ऐसी फिल्म बनानी चाहिए। तो बहुत तो लोगों को मैंने सब्जेक्ट सुना है इसका, तो सब लोगों ने रिफ्यूज किया, बोला नहीं ये तो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, या जिनको समझ में आया तो वो अश्लील बनाना चाहते थे, तो मैं अश्लील फिल्म नहीं बनाना चाहता था। मुझे लगा कि मैं अपने हिसाब से एक फिल्म बनाऊंगा बोल के, जिसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी बोल के। तो तब जाके मैंने मिस्टर आर मोहन, जो मेरी पिक्चर गलती से त्रिशक्ति देखे हुए थे, तो उनको लगा कि मधुर ने ऐसा टेक्निकली काम अच्छा किया था पिक्चर में त्रिशक्ति में, तो मैंने उनको सब्जेक्ट सुनाया चांदनी बार का, और उन्होंने बोला बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने एक रिसर्च किया, 6 महीने के ऊपर रिसर्च किया, बार में जाके लोगों से मिलके, बार बालों से मिलकर, वेटर से मिलकर, कस्टमर से मिलकर, तो काफी रिसर्च करके 6-8 महीने में मैंने उसकी स्क्रिप्ट किया।

0: राइटरों के साथ बैठकर उसको डाला
1: और उनको लगा कि ये पिक्चर में स्पार्क है और ये बन सकती है अच्छी पिक्चर, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है मधु मैं बनाऊंगा। और तब्बू जी उनके साथ काम कर चुकी थी सदाए कालापानी पिक्चर में, तो मैंने उनको बोला तब्बू अगर होगी तो अच्छा रहेगा पिक्चर में, तो मैं और आरमोन साहब तब्बू को जाके मिले और हमने उनको नरेट किया और तब्बू को बहुत अच्छा लगा सब्जेक्ट आइडिया, और उसके बाद ये पिक्चर मुकम्मल हुई। मुझे लगा कि एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा चांस था, अगर ये पिक्चर नहीं चलती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। और जब मैं चांदनी बार बना था 1999-2000 में, तो जब म्यूजिक इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पीक पे थी और बिना गाने के तो पिक्चर ही नहीं बनती थी, और आइटम गाना तो एकदम पीक पे था वो टाइम पे। तो लेकिन मैंने मेरे प्रोड्यूसर को कन्विंस किया कि मैं बोला इसमें मैं कोई गाना नहीं रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस पिक्चर से गाना आने से पिक्चर का नरेशन जो है इसका बहुत ही कमजोर पड़ेगा। और मुझे लगा कि 6 महीने जो बार में रिसर्च किए तो मैंने हमेशा फिल्मी गाने सुने थे, तो इतना जहन में था मेरा कि मुझे लगा कि रियलिस्टिक गाना होने में ही बेटर होगी, तो इस पिक्चर की जो मोल्डिंग है वो भी रियलिस्टिक लगेगी। तो इसलिए हमने कोई गाना या कोई आइटम सॉन्ग, अगर चांदनी बार मेरे ख्याल से ऐसी जगह थी जिसके अंदर आप 5 आइटम गाना भी डालते तो कम पड़ता, हर लड़की के आइटम गाने भी डांस कर रही, लेकिन मैंने रियलिस्टिक गाना रखा जो पिक्चर के पुराने जो गाने होते हैं जानबूझ के रखा, और एक जर्नी दिखाई थी 1985 से 2000 तक, तो मैंने उस हिसाब से ईयर वाइज ईयर मैंने देखा कि गाने चेंज भी होते हैं, एम्बियंस चेंज होता है, सेट को रेनोवेट किया गया, तो हमने वही डिसीजन लिया। और मैं इस बारे में मेरे प्रोड्यूसर को भी सहयोग दूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस बारे में।
2: ये तो थी फिल्म चांदनी बार की बातें, सिर्फ यही नहीं बल्कि मधुर भंडारकर की फिल्म पेज 3 भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी गई। आपको भी अच्छी लगी थी ना ये फिल्म?

इस फिल्म पेज थ्री को बहुत ही रीजनेबल बजट में नए कलाकारों को लेकर बहुत ही कम समय में मधुर भंडारकर ने बना लिया। इससे जुड़ी कुछ बातें भी उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि मधुर भंडारकर की एक और फिल्म थी आन, इसे भी डायरेक्ट उन्होंने ही किया था, लेकिन फिल्म के निर्माता फिरोज नडियाडवाला से उनके कुछ मतभेद होने के कारण उन्होंने तकरीबन कंप्लीशन पर ही ये फिल्म छोड़ दी, इसीलिए क्रेडिट्स में उनका नाम नहीं है। बहरहाल आइए सुनते हैं फिल्म आन का गाना।

0: हाँ तो मधुर जी अब पलटाइए पेज थ्री।
1: पेज थ्री एक ऐसी फिल्म थी कि लोगों ने लगा कि ये किस तरह की फिल्म है और पता नहीं लोग इसे पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पेज थ्री टाइटल ही बहुत ही अलग टाइटल था और पिक्चर में कोई फेस वैल्यू नहीं था। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर, हमारे टीम ने पूछा उसको, स्क्रीन प्ले डायलॉग में इसको ढहा भरा से और इस तरह से उसको हमने प्रेजेंट किया, तो उस बात की खुशी हुई कि पिक्चर चली बोल के। वो पेज थ्री का आइडिया आया था जब मैं कहीं पार्टीज में गया, जैसे पेज थ्री पार्टीज कहते हैं, और कहीं अलग अलग मुझे लगा कि अलग अलग प्रकार के लोग एक पार्टी में आते, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड से हो, फिल्म वर्ल्ड से, एड वर्ल्ड से हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियंस हो, तो एक छत के नीचे आते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर एक फिल्म बननी चाहिए। जब मैं ऑब्जर्व करता था, मैं एक अच्छा ऑब्जर्वर हूँ जैसे लोग कहते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर फिल्म बन सकती है। तो मुझे पहले लगा कि एक ओवरनाइट सब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें रात को पार्टी चालू होती सवेरे खत्म होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि इतने कैरेक्टर्स एक रात में मैं नहीं दिखा पाऊंगा, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया था पिक्चर, कि ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे, कुछ सोशलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे। मुझे फिर एक लगा कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो अच्छा रहेगा, तो इसलिए एक जर्नलिस्ट ऐसी रखी जो नई है बीट पे और नई तरह से काम शुरू किया है, तो ज्यादा मंझी हुई नहीं है वो, तो उस तरह से उसकी जर्नी हमने दिखाई है। खास घटना तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ऐसे पेज थ्री में इंसिडेंट्स मैंने देखे पार्टी में कि किस तरह से सुपरफिशियल लोग, किस तरह से एक प्लास्टिक वर्ल्ड हम कहते हैं जैसे डिपिक्ट कहते हैं, कि वो आते हैं वहां पे, माने चेहरे के पीछे हर इंसान की कहानी होती है, हर इंसान का एक जज्बात होता है
2: जी।
1: तो मुझे लगा कि ये पिक्चर की स्टोरी अगर बताई जाए तो बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट था ये
2: जी।
1: लेकिन मुझे लगा कि रिस्क लेके लोगों ने, मुझे कहा चलो भाई तुम फिल्म बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कम से कम टाइटल तो चेंज करो, ये पेज थ्री समझ में किसको आएगा। लोग कहीं लोगों ने कहा कि मर्डर मिस्ट्री है, कोई फ्लैट नंबर है, क्या है ये
2: जी।
1: समझ में नहीं आ रहा पिक्चर, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कि मैं उस टाइटल से सीमित था कि पेज थ्री होना चाहिए। मैं, मेरे ख्याल से कोई भी एक पिक्चर चलती वो क्रेडिट पूरा डायरेक्टर को लेना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से पूरे टीम ने मेहनत की है, प्रोड्यूसर ने मेहनत की है, मेरे राइटरों ने मेहनत की है, म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की, राजू सिंह बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर बहुत अच्छा उसने किया, उसने मेहनत की, तो सब लोग ने की मेहनत।

दोस्तों, मधुर भंडारकर की बातों को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि उन्होंने फिल्मों में जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, जो भी उठाए हैं, जो समस्याएं दिखाई हैं, वो सब उनकी जिंदगी के आसपास घटने वाली चीजों को ही उन्होंने फिल्मों में उतारा है। उन्होंने कहीं कहा है कि मैं समस्याओं को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। पेज 3 उन्होंने बनाई सन 2005 में, कॉर्पोरेट बनाई 2006 में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर, ट्रैफिक सिग्नल बनाई सन 2007 में, बहुत ही खूबसूरत फिल्म 2008 में, फैशन वर्ल्ड को लेकर उन्होंने एक रियलिस्टिक फिल्म दिखाने की कोशिश की, और फिर जेल की जिंदगी पर बनी सन 2009 में जेल। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक कोशिश करते हैं मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों के जरिए समाज को ये दिखाने की कि उसके आसपास, उसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी देख।

सामाजिक सरोकारों को देखकर, जानकर, महसूस करके उसे रुपहले पर्दे पर प्रस्तुत करने में माहिर मधुर भंडारकर की दो फिल्मों का जिक्र यहाँ जरूरी करना हो जाता है। एक तो दिल तो बच्चा है जी, इसी कड़ी में एक और फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं,

0: जब हम बात मधुर भंडारकर की कर रहे हैं तो ये जिक्र भी जरूरी है, यानी कहना चाहिए कि लीक से हटकर एक अलग सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने वाले इस निर्देशक की हीरोइन के बाद कौन सी फिल्म आई तो तुरंत नाम याद आता है, कैलेंडर गर्ल्स। इस प्रतिभावान निर्देशक को भारत सरकार ने भी सराहा, उनकी प्रतिभा को नवाजा पद्मश्री देकर सन 2016 में। तो दोस्तों, ये था फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम, रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा।

दोस्तों, ये आपने सुना विपिन सचदेवा की आवाज में फिल्म सनम बेवफा से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा कुमार सानू और रूप कुमार राठौर की आवाज में।

दोस्तों ये आप सुन रहे थे फिल्म नाजायज से लिया गया ये खूबसूरत सा गीत, आवाजें थी कुमार शानू और रूप कुमार राठौर की। अब भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म माचिस से।

सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब लीजिए पेश है कार्यक्रम एक फिल्म से। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं 1970 में आई सुपरहिट फिल्म खिलौना से लिए गए कुछ चुनिंदा गाने।

दोस्तों, ये आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये प्यारा संगीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

0: क्या है चित चोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चित चोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का दिन
0: Oh yes, September 8th
1: Oh, very late
0: Darling, wait

0: तू है बुलबुल
1: सच है बिल्कुल यू आर वंडरफुल
0: लग जा गले ए लग जा गले दुनिया जले छम छम छम छम छम छम छम ए गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है रोज

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह, भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: दोस्तों ये आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में गाया ये प्यारा सा गीत। अब भाई सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से। और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए थे 1970 में आई सुपरहिट फिल्म खिलौना से लिए गए कुछ चुनिंदा गाने। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनियाभर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nina Orakel. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, "India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal." Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977 985 131 6807, +977 970 910 7500, and +977 981 032 6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in six districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharaj Ganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh said the National Disaster Response